Hey,

Did it,

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे समित कुमार मलिक का राग गुनकली में ध्रुपद गायन। स्वरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः है 6 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली।

0: ही हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Keralam over victory in assembly elections. Addressing the party workers at the BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said the day heralds a new dawn for the nation.
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
2: The Prime Minister said that the BJP-NDA governments are in power in more than 20 states of the country. History has been created on 2 fronts in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal for the first time, while debutante Tamilaga Vethri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, in other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected their sitting governments, whereas Kerala has voted for a new dispensation. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than a 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule, while the TMC trailed far behind, managing to win 80 leading in one seat in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Congress and Aam Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPIM clinched 1.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर आधारित चिंतन।

एक बार बाल गंगाधर तिलक जी अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। वकालत पास करने पर उनके सभी मित्र उनसे पूछ रहे थे कि वे अब आगे चलकर क्या करेंगे। एक मित्र बोला, तिलक भाई, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए भी कुछ सोचा है क्या? अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, मित्र अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई। सभी व्यक्ति अपने अपने कामों में लग गए। समय बीतता चला गया। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और तनख्वाह थी मात्र 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ समय पहले उनका मन जानना चाहता कि वे वकालत पास करने के बाद क्या करेंगे। मित्र से ना रहा गया, वह अपना काम धाम छोड़कर तिलक के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, अरे तिलक, यह क्या किया तुमने? तिलक बोले, क्यों क्या किया मैंने? मित्र बोले, भला वकालत की डिग्री लेकर भी कोई अध्यापक बनता है? अरे क्या आपको शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम? आज अध्यापक वर्ग समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम में बहुत योग्यता है, सरकारी अधिकारी बनो, नामी वकील बनो। अरे अगर इन सब में भी मन नहीं है तो व्यापार ही कर लो। मित्र की बात सुनकर तिलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र मैंने जो पेशा चुना है ना, यह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगरपालिका कर देगी और फिर तुम जैसे मित्र कर देंगे, भला मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति पर नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को हैं। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को रामचरितमानस सुनवाने का। आज आप इसमें सुनेंगे बाल कांड का भाग 46।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है। इसी कारण

0: इसी के साथ रामचरितमानस यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायक रूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000+ मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60+ तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठभारत

0: स्वस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य विंशत्यधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरी इत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरी इत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीय मण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालूकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गए। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली।

0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at the BJP headquarters in Delhi last evening, after the poll results, Prime Minister Modi stated that BJP-NDA governments are in power in more than 20 states now. He said BJP's mantra is citizen is God and the party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party. He emphasized that the people are clearly seeing that where there is BJP, there is good governance and development.
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
2: Highlighting the record voter turnout, the Prime Minister congratulated the Election Commission of India, its officials, polling personnel and security forces for the smooth conduct of the elections. History has been created on two fronts in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than a two-third majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule, while the TMC trailed far behind, managing to win 80, leading in one seat in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Congress and Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each, CPIM clinched 1 seat. Chief Minister Mamata Banerjee lost in the prestigious Bhavanipur seat to BJP's Subhendu Adhikari by more than 15,000 votes. Adhikari also won the Nandigram seat. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Kadagam, TVK, has created history emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its

प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत करा दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें आप सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी गीत। 8:45 का वक्त रहेगा स्वर गंगा का, जिसमें आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका और 9:30 का वक्त रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 7:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि एक और खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। और कहते हैं ना, उस खूबसूरत दिन को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। और अगर आपकी नींद अभी भी नहीं उठी है, नहीं खुली है, तो कोई बात नहीं, फोन उठाइए, हमारा शो सुनिए, नींद खुद भाग जाएगी। कैसे हैं आप सब? किसी का अलार्म आज भी धोखा दे गया क्या? या फिर वो क्लासिक डायलॉग कि बस 5 मिनट, 5 मिनट और ना जाने वो 5 मिनट जो है वो 50 मिनट में कब बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं, हर सुबह एक नई शुरुआत है, और आज की सुबह तो खास है क्योंकि आप आज हमारे साथ हैं।

जी हाँ, कोई तुम सा नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है और हमारे शो जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि हम लेकर आते हैं खूबसूरत गीत आप सभी श्रोताओं के लिए और खूबसूरत सी बातें। तो चलिए, आज का एक मोटिवेशनल जो थॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट ज़रूर होता है। तो आज उस छोटी सी खुशी को ढूंढिए, चाहे वो एक कप गर्म चाय हो या फिर मम्मी की डांट में छुपा हुआ प्यार, या फिर दोस्तों की बेकार सी बातें जो दिल को खुश कर देती है। और हाँ, आज आपका मूड अगर थोड़ा ऑफ है तो आईने में खुद को देखिए और बोलिए, भाई तू बहुत शानदार है यार, मूड को ऑफ ना कर। देखना मूड खुद ब खुद कैसे सेट हो जाता है।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:42 और पूरे 50 सेकेंड्स।

जी हाँ दोस्तों, हवा के झोंकों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश नोटबुक जैसा होता है, जिसमें हम जो चाहे लिख सकते हैं, खुशियाँ, अपने खुशियाँ, अपने गोल्स, या फिर आज से पढ़ाई शुरू करनी है वाली कहानी, या फिर कोई बुरी आदत छोड़नी है वाली कहानी। लेकिन सच में हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की टेंशन को बाय बोलने का और आज को हेलो कहने का। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं आप, ये सोचकर अपने दिन की शुरुआत करें।

जी हाँ, आप सभी के घर से निकलने का भी वक्त हो चुका होगा। जितना आप सोचते हैं ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा जो है ना, वो दिन की शुरुआत आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। कभी कभी लगता है सब कुछ मुश्किल है, जब पढ़ाई, काम, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ, पर यकीन मानिए आप हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हैं। और हाँ, अगर आपका मूड आज थोड़ा सा लो है तो खुद पर ज्यादा सख्त मत बनिएगा, थोड़ा खुद को समझिए, क्योंकि दोस्त हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। चलिए अब अपने मूड को थोड़ा सा और हल्का करते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ, हमारे जो जिया का दाम है वो भी आप सबका हो गया है, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और हमारा यहाँ से जाने के लिए इशारा कर रहा है कि आप अब यहाँ से फौरन रुखसत लीजिए और इस कार्यक्रम को अलविदा कीजिए। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को खूब खूब खूब अमेजिंग बनाते रहिए। और इस वादे के साथ और इस आशा के साथ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इस वादे के साथ कि अब से दोबारा आपसे जब भी मुलाकात होगी, जल्द ही होगी, और ऐसे ही खूबसूरत गीत और ऐसी ही खूबसूरत बातों के साथ जल्द हाजिर होंगी मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, इस क्योंकि यहाँ से प्रसारित होते हैं बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल, और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जन नायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि

0: कि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदीशाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क़यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि CPIM एक सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को

0: सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
0: आसाम में हुक्मरा बीजेपी के जेरे कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल ने दो दो सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर क्यादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरा एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को एक सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
2: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तई तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर

0: दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिजाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुस से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेज पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, ज़राअत, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी ताकि पानी की फराहमी के निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। कल सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग के दौरान जनाब नायडू ने गाड़ियों के इंदराज के अमल को आसान बनाने के लिए इकदामात को भी मंजूरी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाली रियासतों के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात के नतायज से मुतल्लिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में शहसुर्खी है, बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत, आसाम में भी वापसी। अखबार प्रताप की सुर्खी है, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में इकतदार के किले ढह गए। अखबारात ने नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम के कारकुनों से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल की जीत के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान FTA मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई ज़रूरी, अखबारात ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में BJP नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी NDA ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के ज़ेर क़यादत UDF फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिली है। TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने BJP की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग राग अल्हैया बिलावल। विलंबित रचना 3 ताल एवं द्रुत 3 ताल में निबद्ध है।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा यहीं संपन्न होता है। इसके अंतर्गत अभी आप आनंद उठा रहे थे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग अलहिया बिलावल का। विलंबित रचना तीन ताल एवं द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मार्च महीने में ही हम लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के अन्य भागों में भी इसका अनुभव किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह से कमल किशोर बड़ाई की ये बातचीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कमल किशोर बड़ाइक का नमस्कार। साथियों, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दशकों से या सदियों से होता चला आ रहा है और यह दीर्घकालिक बदलाव भी है, जिसका मुख्य कारण हो सकता है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, गैस, तेल, इनके जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये मानवीय गतिविधियां तापमान वृद्धि, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि और सूखा बाढ़ जैसी चरम घटनाओं के कारण यानी कि अति ज्यादा घटनाओं के कारण हो रही है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान प्रसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह जी को। डॉक्टर विवेक सिंह जी, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद।
0: डॉक्टर विवेक सिंह जी, जब भी कुछ बात होती है, जब भी कहीं गर्मी होती है, जब भी कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं या फिर ग्लेशियर पिघलने की बात होती है, तो हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो सकते हैं?
1: ये बताना चाहूंगा कि मौसम और जो क्लाइमेट है उनमें फर्क क्या होता है। मौसम आप किसी भी एक नियत स्थान की जो डेली के टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो वेदर पैटर्न चेंजेस होते हैं, उनको हम लोग मौसम बोलते हैं। और क्लाइमेट जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किसी भी जगह की पिछले लगभग 30 साल की जो जैसी मौसम की घटनाएं थी उनका जो एवरेज निकालते हैं हम लोग उनके वहां का क्लाइमेट बोलते हैं
0: जी।
1: तो अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह का तापमान, जो औसत पिछले 30 साल का तापमान था, उसमें से अब चेंजेस घट रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज।
0: जगह जगह पर कुछ अलग हो सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कई कारणों से होता है। एक तो कई प्राकृतिक कारण भी होते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, मानव जनित जो कारण है उसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जैसे मानव बहुत ही ज्यादा वनों की कटाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा जीवाश्म ईंधन का गाड़ियां चलती हैं, ये जो मानव जनित कारण है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कई बार, और ये पोर्शन ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन का, और प्राकृतिक कारणों से कम होता है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज।
0: जहां तक जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है, गलता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी गैसें होती
1: हैं? देखिए, जो उसमें कई हानिकारक गैसेस निकलती हैं, तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। तो ये गैसें जब भी हमारे तापमान में उत्सर्जित होती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैस नामक एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि जो पृथ्वी के सतह से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक जो ट्रोपोस्फियर, हम लोग पृथ्वी का एक मंडल होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ये गैसेज उसमें ट्रैप हो जाती हैं। तो ट्रैप होने की वजह से जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन रहेगा, सनलाइट हम अर्थ पे गिरती है और वापस कुछ पोर्शन चली जाती है, सनलाइट वापस कई बार नहीं जा पाती है, इन गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से तापमान बढ़ने लगता है, इसी प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
0: तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा बढ़ते रहता है, तो उसी प्रकार से क्या अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, उनका भी प्रभाव हमारे पास यानी कि हमारे पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है?
1: हाँ, कह सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट का तो डायरेक्ट जो प्रभाव होता है तो ओजोन परत के डिपेंड करता है कि जब भी हमारा अगर वो ओजोन जो लेयर है अगर वो डिप्लीट रहेगी तो अल्ट्रा वायलेट सूर्य की

0: हैं वो पृथ्वी पर ज़्यादा आएंगी और वो विभिन्न प्रकार की रोगों को उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे खासतौर पर स्किन कैंसर। तो जब हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित है तो उससे क्या होता है कि कई बार ओजोन की जो परत है उसमें भी काफ़ी मतलब गिरावट आती है, उसकी क्षय होना स्टार्ट हो जाते हैं।
1: जी
0: तो जो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है या जो अर्थ सर्फेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है सन के लिए, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उनके आने के चांसेज और प्रायिकता ज़्यादा रहती है, और जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी और समस्याएं भी हो सकती
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर विवेक सिंह जी, अभी आपने कहा कि एयर पोल्यूशन, और मुझे लगता है कि आप एयर पोल्यूशन से आप ज्यादा करीब से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके विषय में आर्टिकल्स आप लिखते भी हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे जलवायु परिवर्तन में कितने हद तक प्रभावी होते हैं?
0: देखिए, एयर पोल्यूशन का जलवायु परिवर्तन में बहुत ही ज्यादा रोल है। एयर पोल्यूशन बेसिकली होता है क्या कि जब भी हवा में हमारे जो माइन्यूट पार्टिकल हैं, जिनको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 बोलते हैं, जो मेन पार्टिकुलेट मैटर हैं, जब भी हवा में उपस्थित हो जाते हैं उसकी वजह से फिर वहां का तापमान बढ़ेगा और कई श्वास संबंधी बीमारियां रहती हैं। ये जो मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित जो PM 2.5 PM 10 हो गया, जो मुख्यतः स्टबल बर्निंग से होती हैं,
1: धुएं वगैरह
0: गाड़ियों के
1: से
0: धुएं से होती हैं, तो ये किसी भी जगह का वातावरण अगर गर्म करेंगे वहां पे मुख्यतः वहां पे पक्का बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां का जलवायु परिवर्तन रहेगा। तो इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य को नहीं डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, ये उस जगह के क्लाइमेट चेंज को भी डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। अतः
1: जी
0: हमको एयर पोल्यूशन को भी बहुत ही अच्छे से स्टडी करके और जो फ्यूचर के पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट को उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए। हाँ
1: जी डॉक्टर विवेक जी, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जब भी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो धुएं की बात होती है, और धुएं से अगर हम आगे निकलते हैं, शहरों की बात करते हैं, या फिर रोड में चलते हुए हम देखते हैं कि उसमें धूल उड़ते हैं, तो क्या ये भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन सिर्फ
1: धुएं से
0: धुएं से होता है या गाड़ियों से होता है, बट एयर पोल्यूशन कई बार प्राकृतिक कारणों से होता है। जैसे राजस्थान के बारे में बात करें और जो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया इधर साइड में और गुजरात के कुछ रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उधर गल्फ कंट्रीज से कई बार चलने वाली ये देखा गया जो हवाएं रहती हैं वो अपने साथ धूल लेके आते, तो इन धूल के कणों की वजह से भी कई बार एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और इन धूल के कणों से होने से वातावरण में कई बार बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी और जितनी हमारी उड़ाने वो भी डिले रहता है। जो धूल के कण है ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए कि प्राकृतिक कारण है एयर पोल्यूशन का।
1: अभी आपने जिक्र किया कि जो तटीय इलाके हैं या फिर जो राजस्थान इलाके हैं, जो डेजर्ट के इलाके हैं, उन सब एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ये एयर पोल्यूशन भी हो सकता है?
0: हाँ
1: जी
0: तो बिल्कुल सही करें, क्योंकि जैसे बोल रहे कि धूल के कण साइज में रिलेटिवली बड़े होते हैं, इससे PM 2.5 PM 10
1: जी जी
0: से ये कई बार ऊष्मा को अवशोषित कर लेते, वहां का तापमान ना तो जल्दी पहली बात तो गर्म नहीं होगा, और गर्म हो जाएगा तो जल्दी से
1: ठंडा
0: कूल
1: नहीं।
0: नहीं रहेगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक कारण ये भी रहता है कि धूल के कण, जिसकी वजह से वहां तापमान जो है, अगर आप इन जनरल देखें एवरेज लें तो चूरू मुझे लगता है पूरे भारत का सबसे गर्म क्षेत्र रहता है,
1: जी
0: लगभग 50 48
1: 50 पहुंच
0: 50
1: जाता है।
0: रहता है,
1: जी
0: हमेशा न्यूज में आता रहता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसका एक कारण वही है, क्योंकि वहां पे भी गर्मी खूब अच्छी पड़ती है, उधर से डस्ट के जो पार्टिकल्स वो भी आते रहते
1: जी
0: हैं, मिल के सारे प्रभाव एक दूसरे को संपूरित करते हैं।
1: जी जी जैसे कि अभी आपने शुरुआत में ये कहा कि स्टबर्न है, या फिर हम लोगों के मन में, लोगों के आम पब्लिक के मन में तो यही रहता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो धुएं की बात होती है, और बहुत आगे बढ़ जाए तो वो धूल की बात होती है। लेकिन कई जगह देखें, शहरों में या फिर कई जगह जो औद्योगिक जो कल कारखाने हैं, उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत प्रभावी होता है।
0: बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई उद्योग स्थापित होंगे तो वो अपने साथ वहां के जो जमीनी स्तर पे परिवर्तन लाएगा, वहां के जो जो जलीय स्तर पे भी परिवर्तन लाएगा, और वहां के जो वायु के पर्यावरण के उस पर भी परिवर्तन लाएगा। तो जब भी ये देखा गया है इन जनरल कि जहां पे भी औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ है उन उन सब जगहों पे एयर पोल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। पास्ट में अगर आप बात करें तो लंदन स्मॉग के नाम से एक फिनोमेना हुई थी 1954 में, कई दिनों तक तो सनलाइट दिखी नहीं, 10 10 दिन तक, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन वो
1: जी
0: तो ये सब कहीं ना कहीं इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ही तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ बिना किसी प्लानिंग के, और कह लीजिए कि मनुष्य एक हमेशा कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है।
1: प्रकृति के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ हो
0: छेड़
1: गई, वनों की कटाई ज्यादा हो गई,
0: हाँ
1: या फिर वहां पर जो औद्योगिक जो
0: इकाइयां से
1: कल
0: हाँ
1: कारखाने हैं वो ज्यादा उस बस गए हैं, हो गए हैं, जिसकी वजह से ये
0: हाँ
1: पोल्यूशन।
0: बिल्कुल, क्योंकि धरती की हमारी माता की एक क्षमता है, वो हमारी धरती माता उद्योगों को ऐसा नहीं कि वो विरोध करती, लेकिन हर चीज एक सीमित
1: जी
0: लेवल तक रहेगा, तो हमारी प्रकृति इतनी अच्छी है कि वो हमारे सारे चीजों का टेक केयर करती है।
1: जी वैसे कहा जाता है, हम देख भी रहे हैं कि आजकल सूखा ज्यादा पड़ने लगा है, या फिर कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने लगी है, यानी कि जलस्तर कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है, तो ग्लेशियस के पिघलने से जलस्तर में क्या बढ़ोतरी हो रही है?
0: हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स जो कई लाखों सालों से नहीं पिघल रहे थे, अगर साइंस की बात करें तो रिसेंट स्टडीज दिखा रही कि वो अगले 10 20 सालों में उनका और मतलब प्रेडिक्शन जो है पिघलने का है। तो जैसे ही वो पिघलेंगे तो उससे एक नुकसान क्या रहेगा, जो तटीय क्षेत्र में जैसे सपोज भारत में हो गया मुंबई या उसके जो भी तमिलनाडु क्षेत्र में रीजन है, ये इनके जलमग्न होने के प्रायिकता जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक ग्लोबल वाटर कन्वेयर बेल्ट चलता है, जो वहां से जो वाटर पिघलेगा तो कहीं ना कहीं की वजह से वो जल का स्तर बढ़ेगा। और रही बात जमीनी स्तर के जल में कमी की, तो वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध खनन हुआ है, जैसे कई सिटीज में, जैसे आप अगर प्रायतः देखते होंगे कि जो चेन्नई में जो ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है,
1: वैसे दिल्ली में भी उसी प्रकार की हालत हो गई।
0: हाँ, आप ये समझिए कि एक चक्रीय प्रक्रम है। तो क्लाइमेट चेंज एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत चलता है, इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अगर एयर पोल्यूटेड रहता है तो कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एयर जो है वाटर में मिक्स रहेगा। वाटर पोल्यूट करेगा तो कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूटेड रहेगा, सॉइल पोल्यूटेड रहेगा तो हमारा खाना पोल्यूटेड रहेगा, फिर मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर जनघनत्व तो बिगड़ेगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन,
1: यानी कि सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। जी, और वैसे जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शरीर पर यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: क्लाइमेट चेंज में अभी रिसेंट की जो स्टडीज हैं ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का सिर्फ श्वसन संबंधी इस पर नहीं प्रभाव पड़ता है, अगर एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात करें। अभी ये देखा जा रहा है कि मलेरिया जैसे डिजीजेज भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ गई है। ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब जब ये आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था कि क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य में मलेरिया जैसे रोगों में वृद्धि हो रही हो। तो क्लाइमेट चेंज से और एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे अभी श्वसन संबंधी तो बीमारियां ही, इसके अलावा जैसे कि जो शहरों का धुआं है, इससे ये देखा गया आमतौर पर कि इससे कैंसर के फेफड़ों के कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका जो यूवी रेज अगर आ रही है वो आपके अगर स्किन में डायरेक्टली पहुंच जा रही है हानिकारक वाली यूवी रेज, तो उससे स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाह्य रूप से भी वो कर रही है, मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और अंदर भी ढेर सारे नए नए रोगों को और नए नए वायरसेस को, या ये कह लीजिए मतलब नए नए टाइप के रोगों को भी जनरेट कर रही है।
1: जी, तो वन्य जीवन पर, जीव जंतुओं पर तो पड़ ही रहा है, फसलों पर, वन्य जीवन पर, पेड़ पौधों पर किस प्रकार से ये हानिकारक साबित हो रहा है?
0: देखिए, अब पेड़ पौधों से जलवायु परिवर्तन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक पेड़ है, जैसे उसको हमको पता है कि ये नियत ताप पर ही ये पेड़ उगेगा, या कोई कृषि है जो नियत ताप पर उगेगी, अब वहां पे अगर मान लीजिए हीट वेव किसी साल हो गया तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। ये देखा है कि हाल के समय में ओले वगैरह की जो आवृत्ति वो ज्यादा बढ़ गई, पहले भी ओले पड़ते थे लेकिन इनकी तीव्रता और आवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। वो पड़ते थे, कभी कभार पड़ते थे और इतनी तीव्र नहीं होते थे। ये सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, एयर पोल्यूशन का असर पानी पर भी पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्री जीव हैं उन पर भी असर जरूर होता है।
0: बिल्कुल सही, आपने एक्वा कल्चर है, जो हमारे जो मरीन लाइफ है, जो प्रकृति ने बैक्टीरिया और क्लोरोफिल और जो पूरा एक सिस्टम है एक्वाटिक लाइफ रहता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो मरीन कोरल रीफ्स हो गया या जो अंदर के जीव जंतु हैं उस पे भी पड़ रहा है, और कई जीव जंतु उसकी वजह से मर जा रहे हैं कई बार।
1: यानी कि जो मानवीय गतिविधियां हैं उनसे तो होता ही होता है, उसके अलावा जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनसे भी ये सब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं।
0: क्योंकि प्रकृति जो गतिविधियां करती है वो कंट्रोल वे में करती है
1: जी।
0: वो उसका कह लीजिए कि वो क्लीनिंग मैकेनिज्म है। मेरा मानना है कि वो प्रकृति अपने हिसाब से वो बैलेंस करती है, वो मानव के हित में रहती है। समस्या वहां पर आती है जहां पे मनुष्य का लालच जो सीमा से परे हो जाता है और वो प्रकृति के साथ सीमा के परे जो है खिलवाड़ करता है, उसकी वजह से ज्यादा ये जलवायु परिवर्तन।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति के अगेंस्ट में उलट जो भी काम कर रहे हैं मानव जाति कर रही है उससे तो एयर पोल्यूशन होगा ही, और जो प्राकृतिक जो संतुलन है
0: वो बिगड़ेगा।
1: ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसी कोई योजनाएं बन रही है?
0: जो शहरी क्षेत्रों की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनकैप हो गया, उस तरह के कई मानक जो रहती है भारत सरकार लेती है कि आपको जैसे ग्रेप लग जाता है कई बार दिल्ली जैसे शहरों में। और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने का हमारी सरकार ने सोच रखा है, प्लान कर रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जिससे कि हमारे तापमान में संतुलन बना रहे और जो जलवायु परिवर्तन है कंट्रोल वे में रहे।
1: डॉक्टर विवेक सिंह जी, अपने श्रोताओं को आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप प्रकृति के साथ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। जी हाँ, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनते हैं आप।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाज़र हाँ मैं इंद्रप्रीत कौर। अज के प्रोग्राम विच असी सुनांगे कविता पाठ ते कविता पाठ करनगे सुखविंदर कौर। इस तो इलावा असी सुनांगे गीत। सो आओ हुण प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां ते गल करदे हां विश्व दमा दिवस बारे। विश्व दमा दिवस हर साल मई दे पहले मंगलवार नूं मनाया जांदा है। इस साल ए दिवस 5 मई यानी अज मनाया जा रहा है तां जो लोकां विच इस बीमारी नूं लैके जागरूकता पैदा कीती जा सके। इस दिवस दा आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा वल्लों कीता जांदा है जो कि विश्व सेहत संगठन दी एक सहयोगी संस्था है। इस दिवस दा आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा वल्लों पहली वारी 1993 विच कीता गया सी। इसे संस्था वल्लों दुनिया भर विच दमे प्रति जागरूकता पैदा करन लई इस दिवस नूं आयोजित कीता जांदा है। इस संस्था का उद्देश स्थानक अते राष्ट्रीय गाइडलाइन निर्मातावां नाल संबंध नूं वधाना अते मजबूत करना है। इह संस्था मरीजां दी सुरक्षा ते उच्च तरजीह दे नाल सेहत बारे चिंतावां नूं सांझा करके वातावरण की स्थिरता लई खास सिफारशां नूं यकीनी बनाने लई भी वचनबद्ध है। इह संस्था विश्व पद्धर ते दमे वाले लोगों के जीवन नूं बेहतर बनाने लई काम कर रही है अते दमे की देखभाल दे सारे पहलुआं मरीजां अते वातावरण लई सुधार लई बहुपक्षी सहयोग बहुत जरूरी है। पर दमे दी बीमारी आखर है की? दमे तो पीड़ित मनुख दी साह नाली विच सोजश आ जांदी है जिस कारण साह लैण विच मुश्किल हुंदी है। साह लैण वेले घरघराट दी आवाज भी आंदी है। कई बार खंघ अते बलगम दी समस्या भी हो जांदी है। किसी भी कारण जेकर साह दी नाली विच सोजश आ जांदी है तां इस नाल दमे दी शुरुआत हो सकदी है। धूड़ हवा प्रदूषण अते मौसम विच तब्दीली अक्सर मरीजां दी बेआरामी विच वाधा करदी है। कईआं नूं सर्दियां विच धूड़ अते मिट्टी तो संक्रमण दा वधेरे खतरा हुंदा है। जे इस दे कारणां दी गल करिए तां खून दी जांच करके समस्या दे कारणां दा पता लगाया जांदा है। सो सानूं कई गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है जिवें कि तुहाडे आले दुआले दी हवा साफ होनी चाहीदी है, धूड़ अते प्रदूषण तो बचना चाहीदा है। जेकर तुसीं इनहेलर दी वरतों कर रहे हो तां इस दी वरतों जारी रखो। जेकर मरीज़ पहलां ही कारण जानदा है तां उस नूं वाधू सावधानियां वरतणियां चाहीदियां हन। दो गल्लां हमेशा ध्यान विच रखो, पहला साह दी समस्या नूं होर ना वधाओ अते दूजा साह दी नाली दी सोजश दे कारकां तों दूर रहो। जेकर दमे दा सही ढंग नाल इलाज कीता जाए तां मरीज आम जीवन बतीत कर सकदा है। सो सानूं सारे नूं चाहीदा है कि असीं खुद भी जागरूक होईए ते दूजिआं नूं भी जागरूक करिए। अज विश्व दमा दिवस दे नाल नाल भारत दे 7वें राष्ट्रपति स्वर्गवासी ज्ञानी जैल सिंह दी जन्म वरेगंढ भी है। ज्ञानी जैल सिंह एक प्रमुख आजादी घुलाटिए अते 1982 तो 1987 तक राष्ट्रपति दे अहुदे ते रहण वाले पहले सिख सन। ਉਹ 5 ਮਈ 1916 ਨੂੰ ਸੰਧਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਕਤਾ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल गावेत्री कजगम TVK ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा NDA सरकारें सत्ता में हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरिकेल। History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state, for the first time, debutant Tamilaga Vetri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC 15-year rule. Out of the 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Karagam, TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the NDA has regained power, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi last evening after poll results, the Prime Minister said that BJP NDA governments are in power in more than 20 states. He said BJP's mantra is citizen is God and party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party.
4: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, भारत का संविधान भी जीता है।
3: In Bihar, 12 people lost their lives in separate incidents of storm, rain and lightning yesterday. 5 deaths were reported from East Champaran district, 4 from Aurangabad and 3 from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. He has directed that an ex gratia amount of 4 lakh rupees each be provided to the next of kin of the deceased. Vietnam President Tho Lam is arriving at Gaya in Bihar today on a 3-day state visit to India. He is being accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government along with a strong business delegation. He will arrive in New Delhi later in the day. A large fire broke out at the Fujairah Oil Industry Zone yesterday after what authorities described as a drone attack originating from Iran. It is the first such strike to cause significant damage on UAE soil since a ceasefire took hold last month. Civil defense teams were deployed immediately to contain the blaze, with 3 Indian nationals reported to have sustained moderate injuries and been taken to

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

बहुत ही प्यारा गीत। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और दिल थाम कर बैठे बिल्कुल, आपके मैसेजेस लेने वाले हैं हम लोग, और साथ में प्यारे प्यारे गीत हैं। और ये जो शो है यहाँ पे चलती भी तो आप ही की मर्ज़ी है ना, आपके मेल्स लिए जाते हैं, आपकी पसंद के नगमे सुनाए जाते हैं। तो फिर देर नहीं करते और शुरू करते हैं यादों और तरानों का ये खूबसूरत सफ़र। जी हाँ, आपके मैसेजेस के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मैसेजेस में, ये आया है मैसेज हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और इनके साथ कालका से जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और अगला जो मैसेज है वो हमें आया है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश लेते हैं, ये हमें आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से है मांगेराम सत्तौड़, ऋतु सिंह ये लिखते हैं नमस्कार और आपकी पसंद का कोई गीत सुनवा दीजिए और हमारा ईमेल ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्त आपको भी पसंद आएगा, ऐसा ही गीत सुनवाएंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत अच्छी पसंद है तो उनके पसंद के ही गीत सुनवाएंगे और आपको भी नमस्कार। अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है सदर बाज़ार कुरावली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। और हमारे साथ जुड़े हैं पटेल नगर मलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और गुड्डू, इन्होंने भी बहुत प्यारे गीत की फरमाइश की। और अगला संदेश ले लेते ही आया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रणीता सिद्धांत, लाडला टुक टुक ग्वानकर और इनके साथ आकार हाइट्स बहादुरा, नागपुर से जुड़े हैं शैलेश गवानकर, श्रीमती वैशाली, एकांश, सुमित और कुमारी ध्वनि। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

ये था गीत अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माँ आपकी फरमाइश। आपके बहुत से मैसेजेस आ चुके हैं जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं, और साथ में हम नए श्रोता हैं जिन्हें भी मन कर रहा होगा कि हमारे साथ जुड़े और मैसेजेस भेजें, तो उनके लिए हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, ipradio.delhi@gmail.com। तो हमें और भी श्रोताओं का इंतज़ार रहेगा ताकि हम उनके भी मैसेजेस पढ़ सकें। चलिए और मैसेजेस आएंगे बिल्कुल, और जो आ रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ये संदेश हमें आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद जिला जालना मराठवाड़ा महाराष्ट्र से। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित व्याल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख का। और साथ में लिखते हैं एसएमएस, राजे जाधव देशमुख व्याल परिवार की ओर से हम ये मैसेज भेज रहे हैं। शुक्रिया दोस्त। और अगला संदेश ले लेते हैं, आया है झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया। ये लिखते हैं कोई भी सदाबहार गीत सुनवा दीजिए। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से। ये है बिमला अनेजा और सतीश अनेजा का संदेश। और अगला जो संदेश हमें आया है गांव नथाना पंजाब से है हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। और ये संदेश हमें आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से है स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। और अगला जो संदेश हमें आया है ये उत्तम नगर दिल्ली से।

हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और हमारे साथ जुड़े हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और ये हमें संदेश आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, सूरज शब्द सिंह राहुल का। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से। इनके साथ जुड़े हैं हमारे साथ राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये लिख रहे हैं किसी भी प्यारे गीत में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्त आपकी ही जो दोस्त हैं श्रोता है उनकी की पसंद के गीत, और आप अगर लिखते हैं तो आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से, ये है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू जी का संदेश। और ये भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। चलिए आप सबके पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत निकाह फिल्म का, सलमा आगा की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा गीत, तो ये निकाह फिल्म से। और मैं जब इस गीत को सुन रही थी तो मैं इसमें खो गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि कब ये गीत खत्म होने को आ रहा है। वाकई ही मैं हमारे श्रोताओं की पसंद ही ऐसी है। और बहुत से संदेश अब भी बाकी हैं तो उन्हें ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से। ये है एड नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद, और इन्होंने लिखा है कि सलाम आदाब, कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। तो दोस्त प्यारे प्यारे गीत हैं वो आप भेजते हैं, हम उन्हीं को सुनवाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज और बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत। और हमारे साथ जुड़े हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जलंधर पंजाब से। और ये संदेश हमें आया है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा का कुवात बिहार से। और इनके साथ जुड़े हैं शेख जफर हसन और नरगिस जफर। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का। और भी बहुत सारे संदेश हैं पर गीत भी तो होने चाहिए, नहीं तो कार्यक्रम अधूरा है। और तो आप सबकी पसंद पर अगला गीत सुनते हैं।

बहुत ही प्यारा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म स्वीकार किया मैंने से। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो चलिए मैसेजेस ले लेते हैं। ये हमें संदेश आया है छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी, सदफ़ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले का। इनके साथ हैं कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से संदेश है। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम में बेहतरीन नगमे सुनवा रही हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कार्यक्रम। शुक्रिया दोस्त। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का। इनके साथ हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंबल। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से, मांगेराम सतौड़, रितु सिंह का। ये लिख रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और इन्हें गीत भी पसंद आ रहे हैं, और लिख रहे हैं जितनी तारीफ़ की उतनी कम है। तो दोस्तों कार्यक्रम तो आप ही से बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है, ये संदेश दोबारा रिपीट होते हैं तो हमें आगे ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार हम एक सबके ही संदेश लेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए कोई नहीं, अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें प्रिंस डोंगरा परी, इंद्र मोहन डोंगरे और मंजुलता, और इनके दादा दादी जी का है संदेश, शिवानी शिवनी मध्य प्रदेश से। और अगला संदेश हमें आया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र लिख रहे हैं, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है ये संदेश, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। और अगला जो संदेश वो हमें आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक का। इनके साथ कैथल हरियाणा से जुड़े हैं मधु नायक जी। और अगला संदेश हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राउंड दूल्हा पर उत्तर प्रदेश से है, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी और लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का संदेश। और आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

ये था फिल्म घर से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये फरमाइश आप ही की थी दोस्तों। तो चलिए और भी संदेश ले लेते हैं, बहुत सी फरमाइशें अभी भी बाकी हैं। तो ये अगला जो संदेश हमें आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से है, सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू डब्बू और राजू मिगलानी, इनके साथ है बबीता मिगलानी जी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है, ये हैं हमारे साथ जुड़े हैं जी हाँ, ये संदेश दोबारा है तो हम अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल का, ये हैं फतरोड़ा से लिख रहे हैं, हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो संदेश है वो है कोपसी चंद राजू अग्रवाल चौधरी वास से। और अगला जो संदेश आया है बुल्ढाना बड़शिंगी महाराष्ट्र से है अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और ये संदेश हमें आया टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। और ये बहुत बड़ा संदेश हमें आया है, लिख रहे हैं कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे मतलब बहन शोभा शर्मा जी को नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, शोभा जी मेरा मेल भी ज़रूर शामिल करें। तो दोस्त हमने आपका मेल भी शामिल किया है, ऐसी बात नहीं है। और लिख रहे हैं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये अब हमें मैसेज आया है मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कुठारिया, रमाकांत कोठारिया, कमलेश कोठारिया, इनके पुत्र वधू निशा कोठारिया, प्रज्ञा कोठारिया, प्रतिमा कोठारिया, वेद बाबू कोठारिया और समस्त कोठारिया परिवार की ओर से इन्होंने ये संदेश भेजा है। और लिख रहे हैं कि संदेश शामिल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्त आप हमसे जुड़े इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मतलब हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप ना हो तो कार्यक्रम ये अधूरा है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नयाब और लड्डू का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत कर्ज फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ भी आप सुन रहे थे कर्ज़ फिल्म का ये गीत। और वक्त का पता ही नहीं चलता जब आप सारे आप जैसे प्यारे दोस्तों का साथ हो, और कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त भी आ चुका है। पर अभी एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं और बहुत ही प्यारे गीत भी आपको सुनवाएंगे। उसके बाद आपके ही पसंद का मैंने देख लिया किसी की, तो वो सुनवाते हैं। पर चलिए मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज आया है, मैं आर्य नगर कोहका बिलाई से हैं, उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल का, इनके साथ दमदमा ग्राम सुखरी कला से जुड़े हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। और ये संदेश आया है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का। और गांव हीरावाली फालजिका पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, ये लिख रहे हैं प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए जी। बिल्कुल आपकी पसंद का ही गीत होगा। और बहुत से मैसेजेस हैं परंतु अब हमारा जो समय है वो बस इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और मैसेजेस लें। तो अब मुझे यानी शुभा शर्मा को दीजिए इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार, पर जाइएगा नहीं दोस्त, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में है, तो इसे ज़रूर सुनिएगा। और मुझे यानी शुभा को जी हाँ इजाज़त मांग चुकी हूँ। नमस्कार, तो बहुत ही प्यारा गीत सुनते हैं चिंचोर फिल्म से यशोदास की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकषगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77

इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:30 और ठीक 19 सेकेंड। आप प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। इसी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उज्ज्वल नागर से राग शुद्ध सारंग। तबले पर संगत की है हसीन खान ने, हारमोनियम पर ललित सिसोदिया ने। तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में आप सुन रहे थे उज्जवल नागर से राग शुद्ध सारंग। तबले पर संगत कर रहे थे हसीन खान, हारमोनियम पर ललित सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। बारह बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। पहले समाचार हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुन सकेंगे समाचार अंग्रेजी में। तो फिर आइए समाचार सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग

0: भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूब कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah

0: घर आंगन।
1: घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। दोस्तों जैसे आपका हमारा रिश्ता जुड़ा है प्रेम से, उसी तरह यूं ही प्रेम से चलता रहे और आप हमें भेजते रहें अपने ढेर सारे मैसेजेस और हम आपका पूरा ख्याल रख सकें, यानी आपकी पसंद के कार्यक्रम सुनवा सकें और आपके पसंद के गीत पेश कर सकें। दोस्तों प्रेम की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर रहता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा प्यार वही होता है जो सभी हालातों में साथ हो, यानी दुख और सुख दोनों में। कहते हैं कि प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान पर निर्भर करता है, पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है।

0: दोस्तों, आज है विश्व अस्थमा दिवस। इस वर्ष की थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी एक तत्काल आवश्यकता। इस बात पर जोर देना है कि अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों को सांस के माध्यम से ली जाने वाली दवाएं मिल सकें जो इस बीमारी को नियंत्रित करने और हमलों का इलाज करने के लिए आवश्यक हैं। इस दिन का उद्देश्य है अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके प्रबंधन में सुधार करना और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देना। आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम, अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर डॉक्टर प्रियंका पांडे से रश्मि कुकरेती की बातचीत।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो कि जब पोल्यूशन होता है, जब प्रदूषण होता है तो बहुत बढ़ जाती है और अगर बढ़ती उम्र हो और ये समस्या घेर ले तो बहुत ही जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं और यदि सांस ना आए तो फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो अस्थमा रोग है, उसको किस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, ये सारी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज गोल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका पांडे। डॉक्टर प्रियंका पांडे, आपका गोल्ड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, रेडियो सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारे रोगियों को रोज ही परामर्श देती हैं, कितने केसेस आते हैं जिनको अस्थमा की समस्या रहती है?
2: अस्थमा के मरीज तो बहुत मिल ही रहे हैं, साथ ही खांसी जुकाम, मैं कहूंगी ज्यादा है खांसी जुकाम के मरीज।
1: अच्छा,
2: तो वो ज्यादा मिलते हैं अगर उनका ढंग से उपचार ना करें तो। अगर वो एलर्जिक हैं या उनमें कोई और डिजीज है तो उन्हें अस्थमा के लक्षण है या उन्हें पहले से अस्थमा है तो उनके लक्षण बढ़ने की संभावना भी अभी होती है।
1: यानी कि अगर खांसी जुकाम हो रहा है और मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता।
2: हाँ, तो है, तो जरूरी ही है।

0: तो अस्थमा एलर्जिक है कि अधिकतर मतलब 60-70% लोगों में एलर्जी की वजह से अस्थमा मिलता
1: एलर्जी
0: है,
1: की वजह से
0: लेकिन कुछ
1: होता है।
0: लोगों में विदाउट इसके भी अस्थमा मिल सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस समय सीजनल वेरिएशन जब भी होगा तो अस्थमा के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कब आप ये तय करती हैं कि ये अस्थमा का रोग हो गया है? यानी कि एलर्जीज तो भी आजकल बहुत ही हर किसी व्यक्ति को कुछ ना किसी चीज़ से एलर्जी होती ही है, तो वो कौन सी स्टेज होती है कि जब आप कहते हैं कि ये अस्थमा हो गया है अब?
0: देखिए, अस्थमा क्या है? अस्थमा जो है हमारी श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है।
1: जी।
0: तो अस्थमा में बेसिकली क्या है कि जो जो एयरवेज हैं जिनके थ्रू एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उनमें या तो सूजन आ जाए या फिर वो जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाए, जिसकी वजह से एयरवेज जो है वो जितने अच्छे से एयर को पास करते हैं वो ना कर पाए और सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाए, तो इस स्टेज को हम कहेंगे अस्थमा। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी होते हैं जैसे लंग कैपेसिटी, जिसे हम नाप सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इससे हम पूरी तरह पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा है या नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब आपके साथ पास मरीज आता है तो किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है दमा रोग का?
0: देखिए, दमा रोग का, देखिए अगर वो उसे अस्थमा का अटैक है तो उसके लिए तो फिर देखिए दवाइयाँ ही आपको देनी पड़ेंगी। तो
1: जी
0: इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आप उनको देंगे तो उनका जो अटैक है वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी प्रिवेंशन है जो सबसे बड़ा चीज़ है। इसके जितने भी प्रिवेंटिव कारण हैं, पहले तो ये है कि अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा है तो ये कारण हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उस व्यक्ति को एलर्जी कर रही है। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक है हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है। कई बार हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो नॉर्मल चीज़ है, जो मतलब जो हार्मफुल नहीं होती है उसको भी डेंजरस मानता है। इसकी वजह से वो उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करके सूजन और ये सब जकड़ाहट पैदा करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर एलर्जी हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है। उसके अलावा मान लीजिए खांसी जुकाम है, दूसरा कारण ये हो सकता है, या फिर मान लो दर्द की दवाई खा रहा है, कई बार उसके साइड इफेक्ट से भी
1: अच्छा
0: अस्थमा के अटैक आ सकता है।
1: अच्छा
0: कई
1: अच्छा
0: बार स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो वो सब कारण से भी दूर रहें। और उसके अलावा लाइफ स्टाइल,
1: यानी कि सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं है, और भी कोई कारण हो
0: हाँ
1: सकते
0: हाँ
1: हैं जो उसको ट्रिगर कर सकते
0: हाँ जो
1: हैं,
0: ट्रिगर कर सकते हैं,
1: तो
0: देखिए
1: वो
0: बदल,
1: पहचानना ज़रूरी है।
0: हाँ कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है।
1: तो अब एलर्जी हो गई हमें और ये समस्या पैदा हो ही गई, तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है, और खाने पीने में किस प्रकार का ध्यान मरीजों को रखना चाहिए?
0: देखिए, खाने पीने में तो मैं कहूँगी खाना हल्का खाना चाहिए, एक
1: अच्छा
0: गर्म खाना खाएं। इसमें कफ, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो इसमें कफ और वात का हम इन्वॉल्वमेंट मानते हैं कि म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर रहा है, सूजन आ रही है, इसलिए इस वजह से भी म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो कफ को भी ना बढ़ाए और वात को भी ना बढ़ाए। तो खाना जो है हल्का हो, मतलब तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, बहुत मीठी चीज़ें नहीं खानी है। खाना ऐसा खाएं जिससे पेट वगैरह अच्छे से साफ हो। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने से भी इवन लंग्स की कैपेसिटी में भी आता
1: फर्क
0: है,
1: पड़
0: फ़र्क पड़
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है।
1: जी,
0: तो इन सब चीज़ों का स्पेशली ख्याल रखना है।
1: मतलब खाने पीने में जो आप कह रही हैं कि सादा खाना होना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: सादा खाना खाना। रात को जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऑफिस से जाते हैं, 8-9 बजे खाया और उसके बाद आधा पौन घंटे बाद ही लेट गए, तो खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें,
1: जी
0: जिससे खाने का डाइजेशन अच्छा हो, खाना पचे अच्छा, पेट अच्छे साफ हो और कहीं ना कहीं वातानुलोम हो। हमारे यहाँ वातानुलोम चिकित्सा कहते हैं, पेट साफ होगा, हमारा जो जितने भी मतलब बॉडी वात के काम है वो सही से होंगे, तो अस्थमा का अटैक होने की संभावना भी सबसे कम
1: डॉक्टर
0: होगी।
1: साहब, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपको सांस की समस्या है तो दही का प्रयोग ना करें, कुछ कहते हैं सफ़ेद चीज़ें ना खाएं, कुछ कहते हैं चावल ना खाओ भाई, इससे सांस की समस्या हो सकती है, ये बातें कहाँ तक सच हैं?
0: देखिए, सफ़ेद चीज़ें तो मैं नहीं खाऊंगी, दही और चावल की जहाँ तक बात है, दही और चावल ना कफ वर्धक होता है,
1: जी
0: ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। हर किसी को नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जो थोड़ा सा कफ प्रकृति है उनको प्रॉब्लम करेगा। हमारे यहाँ प्रकृति के अकॉर्डिंग चिकित्सा होती है, तो जो कफ प्रकृति व्यक्ति हैं उनको ये करेगा, दही और चावल से प्रॉब्लम होगी
1: रात को ही दही चावल ना खाएं, दिन में खा सकते
0: उनके लिए।
1: हैं?
0: तो देखिए, दिन में भी प्रॉब्लम करेगी जो कफ प्रकृति है।
1: तो यानी कि अगर खांसी जुकाम की समस्या हो रही है और इस प्रकार की सांस की समस्या है तो दही चावल थोड़ा सा कम करके खाएं?
0: हाँ, बल्कि चावल तो एक बार ले ले, देखिए उसका भी संस्कार हम कर सकते हैं। जैसे चावल है तो अगर आप उसे पकाएं तो उसमें थोड़ा सा लौंग और

0: दालचीनी डाल के पकाएं, तो जिससे
1: जी
0: उसमें कुछ गर्माहट आए। और दही को देखिए थिक तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसे पतला करें। और उसमें थोड़ा सा काला नमक है, जीरे का पाउडर डाल के
1: काली मिर्च
0: तब
1: हो
0: खा
1: गई।
0: सकते हैं, वो भी दिन में। मतलब थिक दही तो नहीं खाना चाहिए
1: अच्छा,
0: अस्थमा के पेशेंट को।
1: और रात को भी नहीं खाना चाहिए? हम
0: हाँ, रात को तो बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं
0: रात
1: खाना
0: को
1: चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, और किस प्रकार का उनको ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सांस की समस्या है, अब खाना तो है ही, लेकिन किस प्रकार से क्या क्या खाएं हम लोग?
0: देखिए, हल्का जो भी भोजन हो, मतलब और स्पेशली मैंने कहा कि रात को तो बिल्कुल ही हल्का भोजन लें, जैसे बिल्कुल हल्की सब्जियां, जैसे लौकी है, तुरई, टिंडा, जो सिंपल है, मतलब भारी चीज़ें, आप छोले, राजमा, उड़द की दाल, ये सब रात को बिल्कुल नहीं।
1: दूध वगैरह पीना उचित रहेगा रात को
0: दूध
1: सोने
0: ले
1: से
0: सकते
1: पहले?
0: हैं लेकिन हल्दी डाल के,
1: हल्दी डाल के,
0: हल्दी डाल के, लेकिन हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हल्दी डाला दूध अच्छा रहेगा।
1: तो इनको दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर साहब आप कैसे देते हैं? और अगर किसी को अटैक पड़ जाए तो उसका भी इलाज आयुर्वेद में होता है,
0: देखिए,
1: अस्थमा
0: बिल्कुल
1: का,
0: ही
1: अटैक
0: एक्यूट
1: का?
0: स्टेज में तो मैं नहीं कहूँगी कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, सीवियर अटैक में नहीं देते हैं हम, लेकिन अभी उसे परेशानी शुरू ही हुई है, तब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने से वो,
1: फायदा होता
0: हाँ,
1: है।
0: फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगी डिजीज़। तो एक्यूट स्टेज में बिल्कुल ही सीवियर अटैक है तो उसमें हम नहीं देते, लेकिन शुरुआत में ही पेशेंट आ जाए तो उसमें उसका प्रोग्रेशन नहीं होता डिजीज़ का आगे।
1: डॉक्टर साहब, अगर भाप वगैरह की जो कहते हैं भाप लीजिए वगैरह, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है?
0: हाँ, नहीं, भाप, जैसे अगर अस्थमा के ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अगर जिसको कफ बनना हो तो उसको सबसे पहले, जो सरसों का तेल है,
1: जी
0: इसमें थोड़ा गर्म करें, इसमें सेंधा नमक डालें, उससे चेस्ट की मालिश करें, चेस्ट की भी
1: अच्छा
0: और बैक की भी।
1: अच्छा
0: उसके बाद उसे थोड़ी सिकाई करनी चाहिए, उससे जो है कफ क्या है पिघलता है और जो एयरवेज हैं वो खुलते हैं
1: खुल जाते
0: और
1: हैं।
0: अस्थमा प्रोग्रेस नहीं होता है आगे। तो रोज ये सिकाई वगैरह करें, और इसके अलावा दवाइयाँ भी हैं वो भी
1: आपने
0: साथ
1: कहा
0: में।
1: डॉक्टर साहब कि श्वसन नली खुल जाती है सिकाई वगैरह
0: हाँ
1: करने
0: हाँ
1: से, डॉक्टर साहब क्या और भी कोई तरीके हैं जो कि सूजन वगैरह कम करने में काम आती है? जैसे हमें पता है कि हमारा काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत, अगर बहुत कम स्तर का अगर तकलीफ है तो काम तो चलता है, लेकिन सूजन अभी है मान लीजिए, तो कुछ और भी तरीके हैं कि खाने पीने में कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह कम हो?
0: हाँ, देखिए, इसके लिए दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं कहूँगी दवाइयाँ हमेशा चिकित्सीय परामर्श से ही लें।
1: जी जी जी
0: इसके अलावा तो देखिए, घर में क्या ले सकते हैं, तो हल्दी का दूध लें, जिससे प्रिवेंशन, मैं प्रिवेंशन एक्सपेक्ट में कह रही हूँ, थोड़ा सौंठ होती है घर में, काली मिर्च होती है और पिपली होती है, इन सबको ना लगभग तीनों को मिला के आधा चम्मच के करीब शहद के साथ चाटें, इससे
1: अच्छा
0: भी जो कफ पिघलने में और एयरवेज क्लियर होने में बहुत सहायता मिलती है।
1: बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि अगर वाकई ये समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है या लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो खुद का इलाज खुद ना करें
0: हाँ
1: और डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
0: हाँ
1: अगर आयुर्वेद की भी शरण में जाते हैं तो जो शुरुआत में ही वो रोग को जरूर
0: हाँ
1: पकड़
0: हाँ
1: लेगा और वो भी चिकित्सक के परामर्श के अलावा कोई दवाई ना
0: नहा
1: लेवे।
0: ना ले।
1: डॉक्टर साहब, बहुत लोग तरह तरह के जो हम कहेंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग शुरू कर देते हैं।
0: आपकी इम्यूनिटी ही सब कुछ है, तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन मैं कहूंगी पूरी प्रकृति के अकॉर्डिंग, हर कोई हर चीज नहीं खा सकता है, तो प्रकृति के अकॉर्डिंग खाए जा सकते हैं फिर भी, लेकिन गिलोय है और आंवला है, विटामिन सी से भरपूर है, ये सारी चीजें लगभग सभी को सूट करती हैं।
1: तो अगर घर में भी जैसे आंवला तो उबाल कर एक आंवला हम लोग ले
0: हाँ,
1: सकते हैं,
0: ले सकते हैं।
1: तो हम जो रोजमर्रा के जो हमारे खाने हैं उसमें भी ये ध्यान रखें कि गला वगैरह ठीक रहे, खाने का ताज़ा रहे और उसका तापमान भी ठंडा ना हो
0: ठंडा
1: जैसे।
0: ना, हाँ, वो
1: जी
0: खाना तो गर्म, देखिए
1: हाँ
0: डाइजेशन भी अच्छा रहता है उससे,
1: हाँ
0: और जहाँ आपका डाइजेशन अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छा
1: और
0: वर्क
1: भरपूर
0: करती है।
1: नींद लें जो
0: हाँ, वो
1: है
0: तो
1: ना,
0: खैर
1: वो
0: जरूरी
1: भी
0: है ही।
1: बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी दिनचर्या अगर ठीक रहेगी तो मुझे लगता है काफ़ी हद
0: हाँ
1: तक इस रोग पर हम काबू पा
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: प्राणायाम में ध्यान दें, इससे जो है लंग कैपेसिटी बढ़ती है, सूजन जो है एयरवेज की वो कम होती है, तो प्राणायाम
1: बहुत
0: पे
1: ज़रूरी
0: बहुत
1: है ना?
0: जरूरी है।
1: ये तो हम कहेंगे कि एक तरह से ये दिनचर्या का इसको रूप
0: हाँ,
1: दें कि जैसा कि डॉक्टर प्रियंका पांडे कह रही हैं कि योग और प्राणायाम में
0: प्राणायाम,
1: ज़रूर कुछ समय
0: वॉकिंग,
1: दें।
0: रनिंग, मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखें, क्योंकि बॉडी के साथ साथ आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी मदद करेंगे।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका पांडे आपने, और मुझे लगता है कि अगर हम एक संतुलित भोजन लें, भरपूर नींद लें और जैसा कि आपने कहा योग को भी अपने जीवन में स्वीकारें, अंगीकार करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग के प्रचार प्रसार

अभी आप सुन रहे थे बातचीत अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर डॉक्टर प्रियंका पांडे से बात कर रही थी रश्मि कुकरेती। और आज है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिवस। 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले की संधवान में जन्मे श्री ज्ञानी जैल सिंह का जीवन महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान और जनता की सेवा के प्रति समर्पण था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह अपनी विनम्रता और

गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाती थीं। भारतीय राजनीति में उनके योगदान और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा हमें सबको मिलती रहेगी।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत, फिल्म है सवेरे वाली गाड़ी।

गर्मियों का मौसम भी लोगों को पसंद आ सकता है, क्यों? अब आपको बताते हैं। और कुछ लोगों को इसको पसंद करना बात आपको चौंकाने वाली ज़रूर लग सकती है, पर जब आप जान जाएंगे इसकी खूबियां तो शायद आप भी पसंद करने लगेंगे इसे। इस मौसम के दिन लंबे होते हैं जिसमें समय की कमी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अपने मनपसंद काम करने, खेलने, दोस्तों से मिलने जुलने और घूमने के लिए जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। और शरीर के लिए पानी ज़रूरी होता है, तो ये केवल सौंदर्य विशेषज्ञ नहीं बल्कि फिजिशियन भी मानते हैं। योग सेंटर जाकर योग करने का जिनके पास टाइम नहीं होता, इसके लिए मौसम बहुत ही अच्छा है। वे घर पर ही रहकर सूरज की गर्मी को महसूस करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर पेय पदार्थ के लिए बेहतरीन मौसम है ये गर्मी। जी भर के चाहे जितना पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और जूस पीजिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शरीर में जितना पानी जा सके उतना अच्छा है। तो इस मौसम की खास बात यह है कि मानव शरीर को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी इसी मौसम में मिलता है। और विटामिन डी से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को भी तेज़ करता है। सूरज की किरणें हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर डालती हैं, इससे जो है सेरोटोनिन फील गुड फैक्टर रसायन मिलता है, जिससे अच्छी नींद आती है और शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। शरीर का पसीना बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है, इससे शरीर के बहुत सारे खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। किसी और मौसम में ये नहीं हो सकता, लेकिन गर्मी

ये बिना कोशिश के हो जाता है। तो जाना आपने कि कितनी सारी खूबियां हैं और आपको भी गर्मी का मौसम पसंद आ सकता है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गीत फिल्म है फासले।

तारीफ करने की, यानी प्रशंसा थेरेपी भी खुशी देती है। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, ऐसा कोई नहीं जो तारीफ सुनकर खुश ना हो। बल्कि चलिए इस बहाने किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इससे ये प्रतीत होता है कि आपके जीवन में उसकी कितनी अहमियत है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की तारीफ करे तो दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दूसरे के काम की तारीफ करना भी कला है। आपका काम काबिले तारीफ, या अगर आप ये किसी से कहते हैं कि उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। किसी की होशियारी और उसके तेज़ दिमाग को देखकर आप ये बात कर सकते हैं। तारीफ का मतलब है दूसरों की खासियतों को उसके सामने या दूसरों के सामने कहना या उन्हें खास महसूस कराना। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है कि हम सभी दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं। तारीफ के दो बोल रिश्तों को भी मधुर बनाते हैं। चाहे वे आपका साथी हो, परिवार हो, ऑफिस हो या रिश्तेदार, सभी की समय समय पर प्रशंसा कीजिए। इससे उनको खुशी का एहसास तो होगा ही और रिश्ते संवरने में भी मदद मिलेगी। और इसीलिए प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल कर करें।

लेकिन वहाँ की आधुनिकता उनके वातावरण पर निर्भर करती है। तो दिखावे के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना या पहनने का तरीका सिर्फ बाहरी दिखावा होता है, असली तस्वीर तो आपके मन में छिपी होती है। अच्छी सोच के साथ बेहद खूबसूरत बना सकते हैं आपके कपड़े, और हाँ, उसे ऐसे ही स्वीकार करें जैसा कि आप फिर किसी को देख कर करते हैं, यानी बदलाव आपको खुद नजर आएगा, क्योंकि विचार बदलेंगे तो नज़रिया भी बदल जाएगा।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हम यूं ही सुनते रहिए। इसी वादे के साथ आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम

0: सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के आज के सफर की साथी हूँ मैं, यानी मनीषा बोस। तो मेरे सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिल्मी सफर के इस दौर में लिए चलूंगी आपको, जब सिल्वर स्क्रीन का रोमांस सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में भी उतर जाया करता था। जी हाँ, बात 1972 की उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही कानों में किशोर दा की आवाज गूंज उठती है। तो लीजिए, एक ही फिल्म से के पहले गीत से शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को मेरे यानी मनीषा के साथ।

जी हाँ, राजेश खन्ना के स्टारडम, आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज से सजे ऐसे गीत जो आज भी दिलों की धड़कनें बढ़ाने की ताकत रखते हैं, है ना दोस्तों? साथियों, मेरे जीवन साथी 1972 में रिलीज एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा रही, जिसमें निर्देशन था रविकांत नगाइज का, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थी खुद रविकांत नगाइज की, और एक अनकॉमन कॉमन क्रेडिट के रूप में उन्होंने इस काम को किया था, और मुख्य भूमिकाओं में रहे राजेश खन्ना, तनुजा और हेलन। फिल्म ऐसे समय में आई जब राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन चुके थे दोस्तों। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि फैंस उनके फोटो लिए हुए साथ में घूमा कर

भेजते थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन मिश्रित रहा, लेकिन फिल्म का संगीत इतना बड़ा हिट हुआ कि फिल्म ने समय के साथ कल्ट स्टेटस भी हासिल कर लिया। आज इस बात की पहचान सबसे ज्यादा फिल्म के एवरग्रीन साउंडट्रैक्स ही बताते हैं।

मेरे जीवन साथी फिल्म की कहानी प्रकाश उर्फ राजेश खन्ना की है दोस्तों। एक कलाकार जिसके जीवन में प्यार है, संघर्ष है और किस्मत के ऐसे मोड़ हैं जो उसे भावनात्मक और शारीरिक दोनों परीक्षाओं से गुजारते हुए आगे ले जाते हैं। अभिनेत्री तनुजा, जो उस दौर की सबसे नेचुरल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, वो भी इस फिल्म में डॉक्टर ज्योति के रूप में नजर आई हैं, जो आधुनिकता और संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय कही जा सकती हैं। एक प्रतिभाशाली कलाकार प्रकाश इस फिल्म की कहानी में है, जो आत्मसम्मान के साथ अपने सपने जीना चाहता है। वहीं ज्योति यानी कि तनुजा विदेश से लौटी डॉक्टर, जो समझदार हैं, संवेदनशील हैं और एक ऐसी महिला के रूप में हैं जो सबकी भावनाओं को समझती हैं। प्रेम, दुर्घटना, त्याग और पुनर्जन्म, 70s की मसाला फिल्म का क्लासिक ताना बाना है ये फिल्म। प्रकाश के किरदार में राजेश खन्ना ने अपने ट्रेडमार्क से और उस चार्म के साथ वल्नरेबिलिटी भी दिखाई और यही उनकी खासियत भी थी कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो अभिनय में दर्द को खूबसूरती से जीते थे। तो आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत।

जी हाँ, दीवाना करके इस फिल्म ने रख दिया था सभी फिल्मी प्रेमियों को। और 1972 की ये फिल्म मेरे जीवन साथी उस समय की अपने गीतों की बड़ी ही सुपरहिट फिल्म रही। और साथियों, आप हमारे साथ हैं एक ही फिल्म से के इस सफ़र में मनीषा के साथ। आपके खत का, आपके संदेशों का इंतज़ार है हमें ipradiodelhi@gmail.com पर। हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हें गीत सुनते हुए पता ही चल गया था कि कौन सी फिल्म आज उन्हें सुनाई देने वाली है, किस गीत के साथ वो आज इस सफर में मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ऐसे श्रोता साथियों की बहुत सारी लिस्ट है, मैं उनके नाम आपके सामने रखना चाहती हूँ। बालोद छत्तीसगढ़ डोंडी लोहारा से हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं संदीप मक्कार हैं, और ये हैं पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से। इनके साथ मन्नत मक्कड़ हैं, भारत मक्कार हैं और कमल साहनी जी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे कार्यक्रम को इस तरीके से खुशनुमा बनाते हैं साथियों कि हमें आपकी खुशी को देखकर बहुत खुशी होती है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, उनके साथ अशोक कुमार सहगल भी जुड़े हुए हैं। और इसी तरह हमारे साथ हैं साथी हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र छिपा जी भोपालगढ़ राजस्थान से, उनके साथ कपिल छिपा पूजा परिहार जुड़े हुए हैं। इन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और इसके गीत भी इन्हें बहुत पसंद है। ऐसे ही फिल्मों के एक प्रेमी साथी हमारे साथ हैं अजीत भावसार जी, और ये फिल्म उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने पूरी डिटेल लिख के दे दी है फिल्म से जुड़ी हुई। और मुकेश बट्टा जी जुड़े हुए हैं जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं, कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लगता है और हमेशा की तरह वो बहुत ध्यान से कार्यक्रम सुनते हैं। राजकुमार डोंडी जी हैं गांव फरासी जिला हिसार से, उनके साथ प्रमोद कुमार डूडी भी जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा हैं, उन्हें भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और छोटी बलिया से फिल्म नगरी मुंबई से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सफद आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसवेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया, मंतशा आशु अहमद फूलवाले और पूरे फूलवाले रोड रेडियो परिवार वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। और झग्गर राम साहू जुड़े हुए हैं नागर

जी हाँ, अभी हमने सुना फिल्म अनमोल घड़ी नूरजहां की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा। और देखते ही देखते हमारे पास ढेर सारे संदेश आ गए। क्या बात है, मन कर रहा है आज सभी को हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब दे दूं। मगर कहते हैं ना, फास्टेस्ट मेल, जैसे हम गेम खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर का, ऐसे मैंने फास्टेस्ट मेल मैसेज जिसने पहले दिया उसका नाम बताना तो बनता है। वो है हमारे आज के फेवरेट श्रोता सुदर्शन मुखी जी, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रसिद्ध संगीतकार जिनकी पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज से जादू बिखेरते रहने के बावजूद 67 फिल्मों में ही उन्होंने संगीत दिया। लेकिन कहते हैं ना, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं नौशाद अली साहब। बेशक फिल्म संगीत देने की गिनती उतनी ना हो, मगर कहते हैं ना, इनकी कौशल, इनके संगीत की जो कौशल थी, इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है, जो हर दिल पर राज कर जाती है। और ये उनमें से एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे हमारे श्रोता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सुनते हैं ये अगला नगमा इनकी प्यारे से गीत के साथ।

जी, नौशाद जी का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली जी के घर हुआ। 17 साल की उम्र में ही वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई कूच गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां और उस्ताद झंडे खां और पंडित खेमचंद्र प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की सोहबत नसीब हुई। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज सिंह जी ने हमें मैसेज किया है और राजेश वर्मा जी ने भी हमें मैसेज किया और सुदर्शन मुखी जी ने तो हमें मैसेज करके सही जवाब दिया। राजकुमार दूदी जी ने भी हमें, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी ने, और इसी तरीके से शमशाद बेगम जी हिंगोली महाराष्ट्र से, शाह जी, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं हमारा अगला ये नगमा।

जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आपकी सुन रहे हैं एक ही कलाकार, और हम कलाकार लेकर आए हैं नौशाद साहब जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हमेशा की तरह परिकल्पना करवाती है आपकी दोस्त और होस्ट रैना दवर। दोस्तों, नौशाद जी को पहली बार स्वतंत्र रूप से 1940 में प्रेमनगर में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1944 में प्रदर्शित हुई रत्न से, जिसमें जोहरा बाई अनबोल वाली अमीर बाई कर्नाटकी, करण दीवान और श्याम के गए गीत बहुत लोकप्रिय हुए, और बस यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का एक ऐसा सफर जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और हमें इसी तरह से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, जो हम खुश नसीब हैं कि आप सब हमें मैसेज कर रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। चिरमय कुरासिया कालरी से इंद्रभान, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे, और उसी तरीके से हमें जसबीर सिंह जी ने भी मैसेज किया है, अरोड़ा जी ने, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने भी हमें मैसेज किया है, इशक मोहम्मद जी ने भी हमें मैसेज किया है, और आफरीन कौसर, खतीजा बेगम और नीलोफर फातिमा, पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। और अब हम बता रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो एक सॉन्ग तो बनता है।

जी हाँ, हम भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखो हमारे श्रोता भी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि सभी हमें मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, और हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है वो भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें हीरामणि वर्मा जी भेज रहे हैं, भाटापारा से मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चिरमणि कुरासिया कालरी से, इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ, राम सरोहर, सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालेंद्र लहरे ने भी हमें मैसेज किया है। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश जी, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघा गुप्ता जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और इस तरीके से लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप और गुरनूर सिंह और गुरनाल सिंह और अविराज सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा और पूजा परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही कलाकार आज चर्चा इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं नौशाद जी की, तो अंदाज आन, मदर इंडिया, अनमोल घड़ी, बेजो बावरा, मुगले आजम, दिल लगी, धर्म कांटा, पाकिजा साज और आवाज, गंगा जमुना, राम और श्याम, मेरे महबूब और ना जाने ऐसी कई खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने अपने संगीत का जादू ऐसा बिखेरा कि लोग आज भी झूमने पर ना मजबूर हो जाते हैं।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा

ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि नौशाद साहब न केवल एक संगीतकार थे बल्कि एक उनमें एक शायर भी बसता था और उनका दीवान आठवां सुर नाम से प्रकाशित हुआ। उनका लखनऊ से बेहद लगाव था, इससे उनकी खुद की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। पंक्तियां हैं, रंग नया है लेकिन घर ये

पुराना है, ये कोचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है।

और हमारे पास बहुत सारे मैसेज, मेरठ से दर्शन और कविता गौड़ जी का हमें मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप मक्कर जी ने हमें पंजाब से, जलंधर से मैसेज किया है।

0: चुके, ना जाने तुम कब आओगे।
1: स्वर्ण सिंह जी पंजाबी नावलकर और धर्मेंद्र छिप्पा, प्रकाश वर्मा जी ने हमें मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी, और उसी तरीके से संदीप मक्कर जी, मन्नत वही गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार होडी, प्रमोद कुमार जी, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन शांतिनगर से, और संदीप मक्कर जी का फिर, और ऋषि कपूर, संजय साहू पोटिया कलादुर्ग से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और हमारा समय अब कह रहा है कि अलविदा लेना पड़ेगा। तो 5 मई आज के दिन सन 2006 को इन दुनिया को अलविदा कह गए नौशाद साहब को हमारा शत शत नमन। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बने। घटनास्थल पर घटनाएं पीड़ित की वीडियो ना बनाकर बेहतर रहेगा कि उसकी मदद करें, एक अच्छा काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। तो जाते जाते रैना तबर को दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम किस्सों और गीतों के साथ। सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समय हो हमारे अगले कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड NCERT कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से

0: प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का, लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
1: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है। 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैदराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली, जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
0: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है, इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहूं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
0: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
1: तो श्रोताओं, लगा कुछ अंदाजा?
0: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं, आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
1: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
0: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
1: जी,
0: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
1: जी,
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी,
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी,
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: जी,
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक टेकपाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
4: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
3: पता है क्यों?
4: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
4: अरे ये तो खेल है।
3: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
4: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
4: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी

0: अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन

0: एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
1: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हो।
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।

0: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
1: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
4: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। ये आकाशवाणी का न्यूज।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज़। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली और इसके गिर्दोनवाह में मुनक़िद होने वाले सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, शेरी नशिस्तों और मुशायरों से मुतालिक आप सुनेंगे हमारी खास रिपोर्ट। नीज अदबी शख्सियात को मिलने वाली एजाजात, किताबों की रस्म इजरा और दीगर अदबी व इल्मी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात से भी आप फैज़याब होंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं किताबों की रस्म इजरा की। समीन, गुज़श्ते दिनों गालिब अकेडमी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में डॉक्टर अना दहलवी के एजाज़ में एक बावक़ार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें उनके आठवीं शेरी मजमुआ तलाश की रस्म इजरा मेहमान खसूसी साजिद अहमद के हाथों अंजाम दी गई। इस मौके पर एक कुल हिंद मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। मुशायरे की निज़ामत मारूफ शायर व सहाफ़ी मोइन शादाब ने अंजाम दी। सुहैल सिद्दीकी ने अपने सदारती कलाम में अदब की अहमियत, तख्लीकी इजहार और नई नस्ल के अदबी रुझानात पर रोशनी डाली। इस मौके पर असलम चिश्ती ने सिपासनामा पेश करते हुए मेहमानान, शुराका और मावनीन का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा मुशायरे का आगा

सामीन, गुज़श्ता दिनों नई दिल्ली के मरकज़ जमात इस्लामी हिंद में उन्दुलुस के मारूफ आलिम व मुसन्निफ़ अल्लामा काजी अयाज़ की शोहरे आफाक किताब अशरफ़ा बतारीफ़ हुकूकुल मुस्तफ़ा के अंग्रेज़ी तर्जमे की रस्म इजरा अमल में आई। इस किताब का तर्जमा डॉक्टर वक़ार अनवर ने किया है। तकरीब में इल्म व अदब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस किताब के मुतअद्दिद एडिशन इस्तांबुल, काहिरा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से शाये हो चुके हैं। इसकी कई शरहें लिखी जा चुकी हैं और उर्दू में भी मुतअद्दिद तराजिम मौजूद हैं। डॉक्टर वक़ार अनवर माहिर माशियात हैं और इस्लामियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों जबानों में उनकी तसनीफ़ात शाये हो चुकी हैं। उन्होंने इस अहम किताब को अंग्रेज़ी का जामा पहनाया है। रस्म इजरा के मौके पर मुतरजिम किताब वारिस हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद रज़ियुल इस्लाम नदवी भी मौजूद थे।

सामीन, गुज़श्ता दिनों जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के शोबे उर्दू में उर्दू और इत्तिलाआती टेक्नोलॉजी के मौजू पर एक अहम इल्मी लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू से वाबस्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डॉक्टर परवेज़ अहमद ने उर्दू के फ़रोग, मशीनी तर्जमा, लिसानियात और जदीद इत्तिलाआती टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में ज़बान व अदब के तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो जदीद तकाज़ों को समझें और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने तलबा को दरपेश तालीमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की और रहनुमाई फ्राहम की। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके उन्होंने तसल्ली बख्श जवाबात दिए।

सामईन गुज़्त दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे कुतुबखाना व इत्तिलाआती साइंस का 80वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मिजोरम के गवर्नर जनरल वी के सिंह थे, जबकि सदारत वाइस चांसलर योगेश सिंह ने की। जनरल वी के सिंह ने अपने खिताब में कहा कि कुतुब खानों में ऐसी मालूमात दस्तियाब होती हैं जो कहीं और आसानी से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यूरोप में अवामी कुतुब खानों को बहुत अहमियत दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ इस रिवायत में कमी आई है, जिसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तकरीब की सदारत करते हुए वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने कुतुब खानों के अंदाज को ज़रूर तब्दील किया है, मगर किताबों की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तरक्की के लिए मुताले की आदत को बरकरार रखना नागुजीर है। तकरीब में यूनिवर्सिटी के आला अफसरान, माहिरीन तालीम, सरकारी शख्सियात और बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज़। तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय है अब हमारे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजेरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु में TVK राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक CN अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित TVK विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य देखभाल पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा तथा जापान में स्वास्थ्य देखभाल नीति प्रभार के मंत्री किमी उनोदा ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि ये बैठक सहयोग को और सुदृढ़ करने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी को मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉ S. जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetre Kadagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as the leader in the legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. In Kerala, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of a government. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as a central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi have been appointed as a central co-observer in the state. Union Minister J.P. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as a central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for Central Observers. The Bihar State Cabinet, under the leadership of Chief Minister Samrat Chaudhary, is set to undergo

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 4:10:20 हो रहे हैं। अब समय है खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचना का। इस दिशा में पहला जो नाम है वो है श्रीमती पूनम देवी, पत्नी चंद्रप्रकाश, निवासी ग्राम असदपुर घेड़, थाना डिबाई, जनपद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार ग्राम असदपुर घेड़, थाना डिबाई, जनपद बुलंदशहर में 16 मार्च 2026 के दिन देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 28 वर्ष है। इनकी ऊंचाई 5 फीट है। शरीर की बनावट मजबूत बदन है। चेहरे का रंग गेहुआ है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर भी है जिस पर सूचित किया जा सकता है। कृपया नंबर नोट करें, 9634168426। नंबर पुनः सुने, 9634168426। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना डिबई बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है अब्रार पुत्र आसिफ, निवासी फैसलाबाद, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर का। इन्हें अंतिम बार ग्राम गिरधरपुर नवाडा कस्बा और थाना गुलावटी में 23 मार्च 2026 को देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनका रंग सांवला और इनकी ऊंचाई 5 फीट है। उम्र इनकी 16 वर्ष है और इनका चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर है जिस पर सूचना दी जा सकती है। नंबर नोट कीजिए, 9818132950। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9818132950। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप कोतवाली नगर बुलंदशहर थाने में सूचना दे सकते हैं। गुमशुदगी में अगला जो नाम है वो है विकास का, जो पुत्र बिन्नाम सिंह हैं, निवासी ग्राम कन्हैरा, थाना अहमदगढ़, जनपद बुलंदशहर के ये रहने वाले हैं। इन्हें आखिर बार 2 अप्रैल 2026 को ग्राम कन्हैरा, थाना अहमदगढ़, बुलंदशहर, जनपद बुलंदशहर में देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 19 वर्ष है। इनकी जो लंबाई है वो 162 सेंटीमीटर है। शरीर की बनावट बदन गहरा है। चेहरे का रंग गेहुआ है। इनके बारे में बताया गया है कि ये घर से बिना कुछ बताए घूमने के नाम पर कहीं चले गए हैं और तब से वापस नहीं आए हैं, किंतु इनकी मानसिक स्थिति कुछ कमजोर है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना प्रभारी निरीक्षक अहमदगढ़ बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। अगली सूचना है सतीश पुत्र नाहर सिंह, निवासी चंद्रलोक कॉलोनी, गली नंबर 2, कस्बा, थाना खुर्जानगर, जनपद बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन्हें आखिर बार कस्बा खुर्जानगर में 10 मार्च 2026 को देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी उम्र 65 वर्ष है।
इनकी लंबाई 167 सेंटीमीटर है। शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा लंबा है और रंग गेहुआ है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर एक मोबाइल नंबर है जिस पर आप सूचित कर सकते हैं। कृपया नंबर नोट कीजिए 7839854755। नंबर पुनः सुनिए 7839854755। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर कोतवाली खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर में सूचना दी जा सकती है। अगला जो नाम है वो है अंजलि का, जो डॉटर ऑफ सुभाष हैं। ये ग्राम लड़ाना की रहने वाली हैं और आखिर बार इन्हें वहीं पर 25 मार्च 2026 को देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी आयु 20 वर्ष है और इनकी ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। शरीर की बनावट सामान्य है और रंग इनका गेहुआ है। ये ग्राम लड़ाना खानपुर जनपद बुलंदशहर की रहने वाली हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। गुमशुदगी में दर्ज अगला नाम है शाहरुख खा, जो पुत्र तरकीन है, निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना खुर्जा देहात बुलंदशहर के ये रहने वाले हैं। इन्हें आखिर बार कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा में देखा गया था 17 मार्च 2026।

0: कांग्रेस को शाम 5 बजे। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण आप नोट कर सकते हैं। इनकी उम्र 23 वर्ष है, लिंग पुरुष है, कद इनका 5'4" है, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरे का रंग काला है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। अगला नाम है गुमशुदगी का श्रीमती गीता का। ये 22 मार्च 2026 से लापता हैं, ग्राम कनौना से ये लापता हैं। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। उम्र इनकी 22 वर्ष है, इनका कद 5'4" है, शरीर की बनावट इनकी सामान्य है। और इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना खानपुर बुलंदशहर में सूचना प्रेषित कर सकते हैं। खोए पाए व्यक्तियों में ये अंतिम सूचना है मीनाक्षी की और कोमल की, जो डॉटर ऑफ अनेक हैं, निवासी शिवपुरी खुर्जा के ये रहने वाले हैं। इन्हें आखिर बार 22 मार्च 2026 को खुर्जा में ही देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। मीनाक्षी की उम्र 15 वर्ष है और कोमल की उम्र 16 वर्ष है। इनकी ऊंचाई, मीनाक्षी की ऊंचाई 5'3" है और कोमल की ऊंचाई 5'2" है। इनका शरीर की जो बनावट है वो इकहरा जिस्म है और रंग दोनों का गोरा है। इनके बारे में शिकायत दर्ज करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी किसी विक्की नाम के व्यक्ति के साथ और कोमल किसी अर्जुन नाम के व्यक्ति के साथ कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। इसी के साथ खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचना का क्रम यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with
2: the Central University of Rajasthan has invited online applications for various non-teaching and contractual posts, including senior technical assistant, lower division clerk, multitasking staff, library attendant, medical officer female, nursing officer female, junior engineer electrical and law officer. The age limit ranges from 30 to 40 years depending on the post, with application fee of 750 rupees for SC/ST and PWBD candidates. The last date for online submission is 8th May 2026. Hard copy submission is 13th May 2026. Detailed information is available on the official website. Kindly visit www.curaj.ac.in. I repeat the website, it is www.curaj.ac.in. The Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited has invited applications for backlog reserve posts with a disability category. The posts include Assistant Manager Milk Plant in Group B Level 6 and Plant Operator Milk Plant in Group C Level 4. Eligibility ranging from relevant science or dairy qualifications to ITI with experience in plant operation. The last date for submission of applications is 15th May 2026. The details detailed vacancy information and application format is available at www.andamannicobar.gov.in, or you could also go on to https://aniidco.and.nic.in. The National Biodiversity Authority, NBA Chennai, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has invited applications on deputation basis for one post each of Accounts Officer Level 10 and Private Secretary to Member Secretary Level 7. Eligible officers from central or state governments with prescribed experience in accounts, administration and computer knowledge may apply. The last date for receipt of applications is 11/5/2026. For details, kindly visit the website at www.nbaindia.org. I repeat, www.nbaindia.org. Office of the Director General Assam Rifles, Shillong, invites applications under the Compassionate Ground Appointment Scheme 2026 for eligible dependent family members of personnel killed in action, died in service, medically discharged or missing. The last date to apply is 11th May 2026. Recruitment rally is tentatively scheduled between July to August 2026 at Lokra, Assam, or with updates on www.assamrifles.gov.in. I repeat the website, that is at www.assamrifles.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए लीड कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन NHSRC। एक रिक्ति उपलब्ध है, आयु 55 वर्ष अथवा उससे कम होनी चाहिए, वेतन 1,30,000 रुपए प्रति माह से 1,70,000 रुपए प्रति माह के मध्य रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए देखिए नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर की वेबसाइट www.nhsrcindia.org तथा www.mohfw.gov.in। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर कंसल्टेंट सर्विलांस M&E एंड रिसर्च के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु सीमा 45 वर्ष है, जबकि वेतन 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए प्रति माह के बीच रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दो पद जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं, तथा उप पुलिस अधीक्षक तीन पद ये भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। योग्यता और अन्य शर्तों के लिए देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की वेबसाइट www.nia.gov.in। उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलांग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यहाँ निदेशक के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 17 में आता है और ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे

0: जाने हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mohfw.gov.in। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस रिक्ति के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर है। पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र, अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विज्ञान नगर विशाखापत्तनम आमंत्रित कर रहा है इन विभागों के लिए आवेदन। मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कुल 10 पद। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन DCCP कुल 10 पद तथा डिजिटल फोटोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, डीजल और मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग 22 पद। कुल 42 पद उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की वेबसाइट अथवा मेल कर सकते हैं इस पते पर admin2.department.nstl@gov.in। विभाग की वेबसाइट है www.nats.education.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। लीजिए पेश है न्यूज मैगजीन परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या हैं उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों की भी देंगे जानकारी और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नज़र। कार्यक्रम में के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय।
5: हेलो विशाल। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी ऑफ कोर्स इज माय को-होस्ट विशाल। वेल लिसनर्स, ही इज नोन फॉर हिज ग्राउंडेड अप्रोच, फिजिकल प्रोविस एंड ब्रिंगिंग अ मॉडर्न इंटेंसिटी टू द कैरेक्टर ऑफ सुपरमैन इन द फिल्म मैन ऑफ स्टील, the 2018 movie. Yes, we are talking about Henry Cavill, who played Superman in the DC Extended Universe. Today, we celebrate his birthday. We will talk about him in some detail later in our program. But first, we start with the news headlines first.
4: जी अभिषेक, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान।
5: US एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक्स इन गल्फ एज़ टू साइड्स रेसल कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़।
4: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों की

0: बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान.
1: Political activities begin for government formation in Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly polls results.
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर.
1: And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Chennai Super Kings in Delhi this evening.

0: Yes, today marks an important global observance, World Hand Hygiene Day 2026.
1: जी, और इस साल की थीम है एक्शन सेव्स लाइव्स, हाथों की सफाई जैसा एक छोटा काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और लोगों की जान बचा सकता है.
0: Absolutely, and this campaign led by the World Health Organization highlights how proper hand hygiene helps prevent infections, especially in healthcare settings.
1: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम को लोगों के ध्यान के केंद्र में रखने तथा सुधार के समर्थन में संस्थानों और समुदायों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया था.
0: And in 2026, as the campaign marks 18 years, its theme, Action Saves Lives, gives the observance renewed relevance. Awareness alone is no longer enough.
1: स्वच्छ हाथ, सफाई व्यवस्था, साफ सफाई का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और संक्रमण रोकने के मजबूत सिस्टम अस्पतालों और स्कूलों से लेकर घरों, काम करने की जगहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की जगहों और सामुदायिक स्थलों तक हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए.
0: एंड दैट्स वेयर द मैसेज बिकम्स अर्जेंट. डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स, विजिटर्स, एवरीवन प्लेस अ रोल. क्लीन हैंड्स आरंट जस्ट अ हैबिट, दे आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: जी, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने. और ये सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खाने से पहले, शौचालय के बाद या खांसने छींकने के बाद हाथ धोने से कीटाणुओं को उसी समय खत्म किया जा सकता है.
0: एंड हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू लिसनर्स, डू यू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स?
1: जी बिल्कुल, इसमें बहुत कम समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना हमें अपने पसंदीदा गाने का कोरस दो बार गुनगुनाने में लगता है.
0: नाइस टिप देयर विशाल. एंड डोंट फॉरगेट, यूज सोप एंड वाटर व्हेनेवर पॉसिबल. इफ नॉट, एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर वर्क्स टू.
1: यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाथों की सही सफाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने में भी मदद करती है.
0: राइट, दैट्स व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिसिंस. Preventing infections in the first place means fewer antibiotics are needed.
1: भारत ने ऐसी पहलों के जरिए एक मजबूत नींव रखती है जो साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ती हैं. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने इसे खुले में शौच यानी कि ओपन डिफेकेशन से आगे बढ़ाकर एक व्यापक स्वच्छता एजेंडा की ओर बढ़ाया है, जिसमें कचरा मुक्त शहर, टिकाऊ स्वच्छता, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी शामिल है.
0: एंड फॉर सिटीजंस, द एक्शन एजेंडा बिगिंस विद सिंपल बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस. वॉशिंग हैंड्स विद सोप एट क्रिटिकल मोमेंट्स, बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर कॉफिंग और स्नीजिंग, आफ्टर हैंडलिंग वेस्ट एंड बिफोर कैरिंग फॉर द सिक रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एवरीडे हैबिट्स. फूड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन हाउस होल्ड सर्फेसेस, responsible waste disposal and menstrual hygiene must also be understood as part of the same wellness framework. Hygiene is not a one-day campaign, it's a daily discipline.
1: अभिषेक, बहुत पते की बात आपने कही कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन में शामिल होना चाहिए हाथों की सफाई. संस्थानों पर इस मामले में ज्यादा जिम्मेदारी और आ जाती है. स्कूलों को साफ शौचालय, हाथ धोने की सुविधाएं और साफ सफाई की शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. अस्पतालों को संक्रमण की रोकथाम को एक ऐसा मानक बनाना चाहिए जिस पर कोई भी समझौता न किया जा सके. कार्यस्थलों को साफ वॉशरूम उपलब्ध कराने चाहिए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए. बाजारों में मिलने वाली खाने पीने के सामान तैयार करते समय साफ सफाई के जरूरी मानकों का पालन आवश्यक है. स्थानीय निकायों को सार्वजनिक साफ सफाई पर नागरिकों के भरोसे को बनाए रखना चाहूँगा. बदले में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन एक जिम्मेदारी की भावना के साथ, और स्वच्छता से जुड़ी कमियों की जानकारी रचनात्मक तरीके से लोगों को दी जानी चाहिए.
0: सो इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेफली सेड दैट क्लीन हैंड्स मे सीम सिंपल, but they remain one of the most powerful shields in healthcare.

0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले चल रहे हैं हिमालय की वादियों में। अभिषेक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने इस वर्ष 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट जी आइए सुनते हैं।
1: हिमाचल सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को रासायनिक खाद के बजाय देसी गाय के गोबर, गोमूत्र तथा स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करना है। प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक किसान व बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। ये पद्धति राज्य की 99% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। कृषि व बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 94% लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि व बागवानी पर निर्भर है। ये क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देता है। राज्य में किसानों को बेहतर व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन हिम ब्रांड के तहत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
2: The much-awaited direct regular Vande Bharat train service between Jammu and Kashmir commenced on May 2nd, 2 days after its formal flagging off by the Union Railways Minister Ashwini Vaishnav from Jammu Railway Station. And earlier, Railways Minister Ashwini Vaishnav, Union Minister Dr. Jitendra Singh, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah flagged off the extended Srinagar-Katra Vande Bharat Express from Jammu Tawi Railway Station on April 30. The train, which earlier ran between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra, is now operating up to Jammu Tawi. We have more from a correspondent.
3: The Vande Bharat train service launched on June 6 last year after the inauguration of the Jammu-Srinagar rail line by the Prime Minister Narendra Modi has now been upgraded from 8 to 20 coaches. Earlier, around 500 passengers could travel. Now, nearly 1,400 people can travel between the two capital cities of Jammu and Kashmir, Delhi. The service has been extended from Katra to Jammu to meet rising demand. The first commercial run of the Vande Bharat Express between Jammu and Srinagar on Saturday recorded an encouraging passenger response with around 70% occupancy and widespread satisfaction among travelers. Around 3,925 passengers travelled on the train on its inaugural day, while the number crossed 5,000 on the second day of operations. Train number 26401 carried nearly 940 passengers from Jammu to Srinagar, while another service on the same route transported close to 1,000 passengers. On the return leg, over 1,990 passengers travelled from Srinagar to Jammu, marking a strong turnout on the inaugural day. The passengers are paying ₹730 excluding catering charges for the journey. The service reduced travel time between the two cities as compared to road journeys along the often unpredictable Jammu-Srinagar National Highway. The semi-high-speed train covers the distance between Jammu and Srinagar in about 4 hours and 45 minutes, offering a faster and more convenient alternate to road travel. The rail route is emerging as an affordable and comfortable travel option as airfares between the two cities range from ₹4,000 to ₹6,000. Positive response is being seen as a boost to railway connectivity on Jammu-Srinagar route, with the service offering a cheaper and convenient alternative to air travel. The specially designed all-weather trains are equipped with advanced electronics suited for height, altitude and extreme weather conditions, including temperatures up to minus 10 degrees. The rail link has opened new avenues for transporting goods such as cement, automobiles, food grains, cars and fruits, giving a major boost to trade and business. Passengers, including tourists, need not worry as robust security security measures are in place and the system will be strengthened further. A 1+20 guard system led by an inspector with RPF commandos are ensuring security along the route. Around 3,000 CCTV cameras are monitoring the track and guard rooms established along the route. Besides, drone surveillance and peripheral guarding have been deployed across all the stations. The launch of Vande Bharat Express train will further enhance connectivity between Jammu and Srinagar. The development is also expected to benefit the pilgrims of Shri Amarnath Ji starting on July 3. The rail link will provide major relief in case of highway disruptions. When the Jammu-Srinagar National Highway gets blocked, the train service will be a great source of help and immense benefit for the commuters, people across the country, as well as civil secretariat employees. Part of the Jammu-Srinagar-Baramulla rail link, the service is being seen as a major milestone in integrating the Kashmir Valley with the national rail network. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from Akashvani Jammu.
0: गोवा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर काम करना शुरू किया है। वर्ष 2037 तक के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है जो आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करेगा। अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता।
4: गोवा के जनजाति कल्याण विभाग ने एसटी समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से विजन डॉक्यूमेंट 2037 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना जनजाति अनुसंधान केंद्र, राज्य के जनजाति कल्याण विभाग और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से तैयार की जा रही है। इस संबंध में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए मडगांव के रविन्द्र भवन में एक बैठक आयोजित की गई। जनजाति कल्याण के लिए 2220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श जारी है। इस डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विधाएं, खेल, भूमि अधिकार, संस्कृति और साहित्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए 100 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और 15 मई तक प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करना है। इसके अलावा जिन पंचायत क्षेत्रों में जनजाति आबादी 35% से अधिक है वहां जनजाति सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: Farmers in Barak Valley now got a new digital tool to help them grow better crops. We have more from a Silchar correspondent.
5: Assam University Silchar teacher created a mobile app called Krishi Bikash Barak Valley for the farmers. This new app gives farmers instant expert advice right on their phones. Dr. Shomnath Mukhopadhyay of the Assam University has built the platform with help from the central government. It is easy to use because it can speak to the farmers in their own local languages. The app helps bridge the gap for rural communities by offering tips on specific crops and soil health, live weather updates for the Barak River area and tools to find and fix pest problems quickly. Project leader Dr. Shomnath Mukhopadhyay says the app works great even on cheap phones or with slow internet. Since it can use as voice commands, even farmers who struggle with reading can use it easily. Anyone can download the Krishi Bikash app from the Google Play Store. Experts believe this will lead to better harvests and higher profits for farmers across the region. Shashwati Bhattacharji, Akashvani Silchar.
0: बात खेलों की दुनिया की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया था और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने ज़रूरी जीत के लिए जो लक्ष्य था वो 18 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया और उसके अभी केवल 4 विकेट ही खोए गए थे।
2: Yes, and in some business news, benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. And for more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
6: आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था।

0: ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजा मंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई।
1: सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था।

0: 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
1: 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे।
2: हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं।
0: 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
1: हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे।
0: नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
1: जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
0: हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे।
3: इंडियन रिपब्लिकन आर्मी
0: मनोरंजन सेन ने

0: 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था।
1: 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।
0: हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया।
1: रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई।
0: 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई।
2: और आज ही जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। एक प्रतिभावान छात्रा थी प्रीतिलता वादेदार, ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर इन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ले ली थी। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
3: Yes, and Adele was born on this day, 1988. She is an English singer, songwriter, and actress. Regarded as a British cultural icon, she is known for her mezzo-soprano vocals and sentimental songwriting. Her accolades include 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards, an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and a Golden Globe Award. In 2012, Adele released Skyfall, a soundtrack single for the James Bond film Skyfall, which won her the Academy Award for Best Original Song. Let's listen to it.

और आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार नौशाद अली की। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या से कहीं आगे होती है। और ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी फिल्मों उन्होंने दी और इनका जो संगीत दिया वो हिट भी हुआ और कालजयी भी बना। और इन्हीं की एक फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था, दर्द, और उसी का ये सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: Yes, and Henry Cavill was born on this day in 1983. He's a British actor. He gained wide recognition for portraying Superman in the DC Extended Universe, beginning with the film Man of Steel 2013, and reprising the role in Batman vs. Superman Dawn of Justice and Justice League, in addition to a cameo appearance in Black Adam and The Flash. Let's listen in to a dialogue from the movie Man of Steel.
1: You will help them accomplish wonders. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun cow. In time, you will help them accomplish wonders.
2: आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, गायक और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का। टी सीरीज की स्थापना इन्होंने की थी, एक म्यूज़िक कंपनी थी, और गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शामिल है जिन्होंने काफ़ी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इन्होंने टी सीरीज़ कैसेट्स के माध्यम से देवी देवताओं के भजन और गीत जनता के बीच प्रस्तुत किए। गुलशन कुमार ने टी सीरीज़ के जरिए संगीत को लोगों के घर घर पहुँचाने का काम किया, और यही इनका सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है।

0: और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो श्रोताओं दीजिए इजाजत विशाल शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेते के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मनादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमशिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और उनके अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक फिसल कर 24,033 पर आ गया। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly polls results. Following the BJP's sweeping victory in West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamaraga Vetrikarigam, or TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur, near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. In Kerala, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of a government. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Manji has been appointed as the central co-observer in this state. Union Minister J.P. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as the central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. The Bihar State Cabinet under the leadership of Chief Minister Samrat Chaudhary is set to undergo a significant expansion on 7th of May. State BJP President Sanjay Saravgi said that the swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, JDU President Nitish Kumar and other senior leaders of the NDA. Mr. Saravgi added that Gandhi Maidan has been chosen as the venue for the ceremony. Preparations for the event are already underway. Public entry to Gandhi Maidan has been restricted and security arrangements have been tightened in view of the high-profile gathering. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that development

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। तो लोक संगीत पर आधारित है हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी। तो लोक रंजनी में आज हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनाएंगे एक लोकगीत कृष्ण भजन पर, और उसके कलाकार आज के हमारे कौन हैं,
1: तू ही राम और उनके साथी
0: आइए।
2: सढ़िया

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तुही राम और साथियों से ये लोकगीत और कृष्ण भजन। और अब आपको सुनवाते हैं एक रागिनी कलाकार हैं, तुही राम और साथी।

0: अच्छा मर जाऊंगो, मैं घर को जाऊं अभी बगद के,
1: फिर नहाऊंगो।
0: बहुत जोर से मारियो सेठ,
1: बहुत ज्यादा जोर।
0: ओहो गजब कर दियो। लड़की की खुल गई आँख जी सुन।

0: तात चले दाई छोड़
1: नगर को
0: सुमरन कर पन में
1: स्वर को
0: भाई लेके भैया संग चल दाई।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तुही राम और साथियों से ये रागिनी, और अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको लेखराज से।

0: श्रोता, इसी के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर, संयोजक थे शिवनंदन लाल।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
1: अमीषा पटेल।
0: और अमीषा, आज खास क्या है वो सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम बता देते हैं। हर बार की तरह, रोज की तरह शुरुआत तो आईपीएल से ही होगी, क्योंकि आईपीएल के जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ कल के मुकाबले में हुई शानदार रन चेज, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कल था मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और इसके अलावा आज शाम होने वाले मुकाबले के बारे में भी जानकारी देंगे, जो CSK और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। उसके बाद बात करेंगे एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप की, जो उज़्बेकिस्तान में आयोजित हुई है, और ये 1 मई से 6 मई 16 मई के बीच खेली जाएगी। और एक्सपर्ट कितने खुश हैं अपने बॉक्सर्स के प्रदर्शन से, वो भी आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा शूटिंग की बात करेंगे, ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो कजाकिस्तान में आयोजित की गई है, 2 से 11 मई के बीच 125 टारगेट्स के बाद भारतीय शूटर्स की रैंकिंग की बात करेंगे। और निराशाजनक खबर ये है कि हमारे शूटर्स जो है क्वालिफिकेशन से चूक गए हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो शंघाई में आयोजित किया गया है 5 से 10 मई के बीच, उसके क्वालिफिकेशन जो कंपाउंड आर्चरी है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स लंदन में आयोजित हैं, जो 28 अप्रैल से 10 मई के बीच वहाँ खेले जा रहे हैं, उसके बारे में भी जो टीम्स हमारी आज खेलेंगी उसके बारे में, किसके साथ खेलेंगी वो भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा AFC अंडर 17 विमेन एशियन कप का मुकाबला कार्यक्रम के दौरान ही चल रहा होगा, जो भारत और जापान के बीच खेला जा रहा है, उस पर भी लाइव अपडेट आपको आज के इस कार्यक्रम में दी जाएगी।

0: 457। बात कर रहे हैं कल खेले गए मुकाबले की, जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला था। और ये 47वां मैच था और मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य मात्र 18.4 ओवर में पूरा कर लिया, जो कि आईपीएल में उनका सबसे सफल रन चेज है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक समय 250 के पार जाने की स्थिति में थी, और लेकिन मध्य ओवरों में उनकी पारी लड़खड़ा गई, जिससे वह अंतिम ओवरों में तेजी से रन नहीं बना सके। फिर भी उन्होंने 228 रन बनाने में सफलता पाई, जो T20 में एक सुरक्षित स्कोर माना जाता है। हालांकि आईपीएल के सीजन में सबसे बड़े रन चेज को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी और उनका यह डर सही साबित हुआ, और मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य को 8 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए तो रयान रिकल्टन ने 83 रन बनाए, और उनके मध्य पहले विकेट के लिए बनाई गई 143 रनों की शानदार साझेदारी की मदद मुंबई इंडियंस के आईपीएल के 47वें मैच में जीत में बदल गई। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 विकेट से हार गए और रोहित शर्मा अपने वही पुराने अंदाज में नजर आए और उसी अंदाज में बैटिंग करते नजर आए, चौके छक्के लगाते नजर आए, और उनके साथ पार्टनरशिप थी रयान रिकेल्टन की। क्या कहते हैं रयान अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में और इस रनचेज के बारे में, आइए सुनते हैं।
1: It's never over. Mumbai Indians is full of class players. Class always does return. The cream does rise. Yeah, really enjoyable opening with Roe. He's obviously had a bit of time off. So, you know, as a player, you know, if you have time off to find your groove as quickly as he did is obviously something very impressive. He knows this game incredibly well. And see him roll back the years with a lot of those shots over extra cover, and his pickups was, yeah, really nice to stand at the other end. I think we complement each other quite nicely. We dovetail quite well. Yeah, always enjoy batting out here with him, and hopefully we can have many more fruitful returns. You know, we're chasing a big score. You kind of have to get going. But I think the beauty of it is that you can work your game around. Sometimes I go aerial, he goes on the ground through his, you know, his natural flair through extra cover and the ability to hit the offside, where it's

0: it's classy watching him bat. I really enjoy, you know, spending time out there in the middle, and what a place to play, to bat in the top. In the first six at the Wankhede, when the wicket's been generally quite good this year, I wouldn't want to be anywhere else. So yeah, really happy with our returns, and hopefully, like I said, we can keep going. So as a team, we always want to, you know, represent the franchise incredibly well, represent ourselves and our teammates well too. So it's never over. Mumbai Indians is full of class players. Class always does return, the cream does rise, and like I said, there's a lot of cream in this change room. So we're always trying to, you know, get better, try, you know, give ourselves half a chance if there is a chance to have, but just enjoy playing with each other, keep trying to get better, and keep, you know, representing the union, and make sure that we, you know, get a few more wins this season.
1: टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी के दम पर 228 रन बोर्ड पर लगाए और पूरन ने 21 गेंदों पर 63 रन बनाए, वहीं मार्श ने 44 रनों का योगदान दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जोड़ी ने इस लक्ष्य को पार कर लिया और नमन धीर ने 12 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए और विल जैक्स ने 4 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मुंबई ने 8 गेंदे और 6 विकेट रहते ये मैच जीत लिया और 22 गेंदों में मुंबई इंडियंस के रियान रिकल्टन ने अर्धशतक जड़ा, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, और 27 गेंदों में रोहित शर्मा ने 50 लगाया और ये रोहित शर्मा का 49वां अर्धशतक था। टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो लखनऊ ने अंतिम 3 ओवरों में सिर्फ एक बाउंड्री लगाई, यानी कि मात्र एक चौका अंतिम 3 ओवरों में, वरना एक समय ऐसा था जब 250 का स्कोर दिख रहा था, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर आजकल जो है बहुत चलन में है और प्रोजेक्टेड स्कोर पर नज़र रखते हैं, जिसको अनुमानित स्कोर भी कहते हैं, और उससे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीम अगर पावर प्ले में ऐसा अच्छा कर रही है तो आगे जाके उनका स्कोर अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा बुमराह की अगर बात करें तो मुंबई के जसप्रीत बुमराह एक बार फिर बिना विकेट के वापस लौटे हुए, सत्र के 10 मुकाबलों में यह 7वां ऐसा मैच था जिसमें वह खाली हाथ रहे। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में अभी 4 और मैच खेलने हैं और एमआई का अगला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 10 मई को है। इसके बाद टीम पंजाब किंग्स से 14 मई को और कोलकाता नाइट राइडर्स से 20 मई और राजस्थान रॉयल्स से 24 मई को भिड़ेगी। तो ये तो था कल खेले गए हुए मुकाबले का विस्तार से जानकारी और आज शाम होना है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच और दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर लगातार 3 हार झेलने के बाद जीत की तलाश में है और विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं अमीषा के पास। आइए सुनते हैं वो क्या बताती हैं।
2: जी बिल्कुल दीपिका जी, 5 बार की जो चैंपियन है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स, उनका 2026 का जो शुरुआत है वो काफ़ी मुश्किल रही है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में जो उनके मैचेस रहे हैं पिछले कुछ, वो काफ़ी अच्छे रहे थे। उन्होंने पिछले 6 मैचों में 4 जीत हासिल करके अपनी लय मजबूत कर ली है। मुंबई इंडियंस पर बड़ी जीत के बाद वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके घर के बाहर जाने वाले मैच में भिड़ेंगे। यह मुकाबला मंगलवार यानी आज 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। डीसी का जो ये प्रदर्शन है वह भी अब तक कुछ लयबद्ध नहीं रहा है, लेकिन वे राजस्थान पर रिकॉर्ड जीत हासिल करके आ रहे हैं। डीसी ने आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया, जिसमें केएल राहुल, पथुम निसंगा और मिचेल स्टार्क ने अहम भूमिका निभाई। लुंगी एंगिडी के डीसी की टीम में वापसी करने की उम्मीदें अभी भी जाहिर हैं, जिससे उनकी गेंदबाजी जो है और मजबूत हो सकती है। सीएसके के जो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उनकी फॉर्म अभी हाल फिलहाल में अच्छी नज़र आ रही है और उनकी जो बल्लेबाजी है वह भी धीरे धीरे लय में आने लगी है। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो आईपीएल में ये दोनों टीमें अब की 32 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, और जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 मैच जीते हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच जीते हैं। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम की जो पिच है वह बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। परंपरागत रूप से नई गेंद से इस पिच पर सीम मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ उछाल अच्छा है और गेंदबाजों को थोड़ा दिक्कतों का

0: सामना करना पड़ा है। गेंद बल्ले पर आसानी से आती है यहाँ पर, और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि इसी मैदान में पंजाब ने आईपीएल का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था, जो दर्शाता है कि यह विकेट बल्लेबाजी के लिए कितना मददगार है। और स्क्वायर जो बाउंड्री है वह भी छोटी है, और आउटफील्ड में गेंदें तेज आती हैं। दूसरी पारी में ओस की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे लक्ष्य का जो बचाव करना काफी मुश्किल हो सकता है।
1: और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि दोनों टीमों के लिए मैच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच जीतने वाली टीम सीधे टॉप 4 की रेस में मजबूत हो सकती है, यानी ये मैच प्लेऑफ की दिशा तय कर सकता है। और अगर दोनों टीमों की मोमेंटम्स की और टीम फॉर्म्स की अगर बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, लेकिन केएल राहुल शानदार फॉर्म में है। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और एंगिडी की वापसी से मजबूती आ गई है। और दिल्ली कैपिटल्स की ताकत की बात करें तो टॉप ऑर्डर बैटिंग और पेस अटैक काफ़ी अच्छा है। चेन्नई सुपर किंग्स धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रही है। ऋतुराज का

देंगे। और अब नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर बनी हुई है पंजाब की टीम, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं और 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 रद्द हुआ है और 13 अंक के साथ सबसे ऊपर है। 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है बेंगलुरु की टीम, ये भी 9 मैच खेल चुकी है और 6 मैच जीत चुकी है। हैदराबाद की टीम 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, 10 मैच खेल चुकी है, 6 जीत चुकी है। राजस्थान की टीम भी 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जो 10 मैच खेल चुकी है और 6 जीते हैं। गुजरात की टीम 10 मैच खेल चुकी है, 12 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है। और चेन्नई की टीम 9 मैच खेल चुकी है, 8 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। दिल्ली की टीम 9 मैच खेल चुकी है, 4 जीते हैं जिसमें से 8 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर हैं। और सबसे नीचे है कोलकाता, मुंबई और लखनऊ की टीमें।

0: और अब आईपीएल के बाद बात कर लेते हैं एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप की, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है 1 से 16 मई के बीच, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अमीशा के पास।
1: जी, तो अब हम चलते हैं ताशकंद में, जहां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रोमांचक आगाज हो चुका है। हमारे देश के बालक और बालिकाओं ने रिंग में अपना पूरा जोर लगाया है। तो एट प्रेजेंट जो रिंग का हाल कुछ इस तरह है, बालकों की अंडर 17 यानी अंडर 17 प्रतियोगिता में फ्लाई वेट 50 kg में यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। वहीं लाइट वेट 60 kg से एक और बड़ी खबर कारुंग एल्बर्टसन कॉम की तरफ से आई, जिन्होंने तजाकिस्तान के अली नाजरोव को 4-1 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं लाइट बैंटम वेट 52 kg की बात करें तो गोपाल रामेश्वर गणेशे ने तजाकिस्तान के नाजरोव दमीर को कड़ी टक्कर दी, और वह तीन दो के स्प्लिट डिसीजन से यह मुकाबला हार गए। वहीं फेदर वेट 57 kg में प्रशांत मिश्रा का मुकाबला चाइना के तैनजिंग लियू से था, जहां उन्होंने 5-0 से उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं बालकों के अंडर 15 मैच की बात करें तो वेट कैटेगरी 46 में इंडिया के मैतेई ओइना ने जबरदस्त शुरुआत की और किर्गिस्तान के अब्दुर अखमान को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। वहीं वेट कैटेगरी 49 kg के मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भारत के प्रशांत का सामना कजाकिस्तान के बगदौलत अखमित से था। प्रशांत ने बेहतरीन खेल दिखाया और 5-0 के स्कोर से जीत अपने नाम की। वहीं वेट कैटेगरी 58 kg की बात करें तो मोहम्मद यासिर ने किर्गिस्तान के अकबर जान के खिलाफ इतनी आक्रामक बॉक्सिंग करी कि जो रेफरी थे उन्होंने पहले ही राउंड में मैच रोक दिया और उनको विजेता घोषित कर दिया। वेट कैटेगरी 61 kg में लिलमनी सिंह का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अजीज बेग से था। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन तीसरे राउंड में रेफरी ने मैच रोककर उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को विजेता घोषित कर दिया। वहीं वेट कैटेगरी 70 kg इस मुकाबले की बात करें तो भारत के बालक मेहुल राणा का सामना कजाकिस्तान के अयान से था, जहां मेहुल को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। आज अंडर 15 कैटेगरी में भारत के लिए मैतेई ओइना, प्रशांत और मोहम्मद यासीर ने शानदार जीत दर्ज की है, और हमारे बालक और बालिकाओं के प्रदर्शन पर क्या बोलते हैं जाने माने कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी धर्मेंद्र यादव जी, आइए सुनते हैं।
2: काउंटिंग में हमारे शुरू से पहले भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, कोचेज जो है सब अपने जोर लगाए हुए हैं और सभी बॉक्सर ने बड़ी मेहनत करके गए हैं सारे। तो अभी तक तो रिजल्ट मैंने जब तक देखा लड़कियों को तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, काफी लड़कियां बहुत जीती हैं, काफी आगे तक जा चुके हैं, और लड़कों में थोड़े से लॉस हुए तो इक्के दुक्के सब होता है लॉस जीतना, क्योंकि सभी टीमें तैयारी करके आता है। रिजल्ट मतलब आगे होता है कि भाई ज्यादा और चैंपियनशिप वगैरह मतलब जैसे होता है जैसे तो चैंपियनशिप हमारी हो सकती है।
0: डे 3 के बॉयज के रिजल्ट्स पे अगर हम नजर डालते हैं तो मीती ओइना वो जीत चुके हैं, के अलावा प्रशांत हैं भारत के वो भी जीत चुके हैं 5-0 से। लुकाराम सिंह को राउंड 3 तक उन्होंने फाइट करी और लेकिन वो हार गए।
2: लड़कों के बारे में भी ठीक है, लेकिन लड़कियां हमारी ज्यादा अच्छा कर रही है, लड़कियों में जो रिजल्ट सीनियर में है चाहे यूथ में चाहे जूनियर में,

0: में ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमारे, वो ज्यादा बेटर करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि तैयारी है हम लोगों की, तो अभी बेस हमारे यहीं से है, यहीं से हमारे बच्चे जो है मतलब ये सब जूनियर में जाएंगे, फिर यूथ में आएंगे, यही बच्चे सीनियर में आते हैं। तो अभी आने वाली पौध जो है मतलब इंडिया को आने वाले टाइम में जो ओलंपिक एशियन गेम्स अच्छे रिजल्ट देंगे, और ये हमको जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि हमको अगर जो रिजल्ट अगर आते रहते हैं तो फिर खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता वाली बात है, जो देखते हैं बच्चे के भैया इन्होंने इन्होंने अच्छा किया हम क्यों नहीं करेंगे। अभी इंडिया में आप नेशनल देखिए बहुत टफ कंपटीशन है नेशनल्स में, नेशनल तो बहुत दूर की बात है, हरियाणा स्टेट में ही ऐसा है, जो हरियाणा स्टेट चैंपियन बनता है उनको ये होता है कि अभी अभी ये नेशनल चैंपियनशिप में मेडल की बात नहीं है, वो सीधा गोल्ड के लिए सोचते हैं अभी, क्योंकि कॉम्पिटिशन उनका खुद का अपना है। अदर स्टेट भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पार्टिसिपेट करता है बॉक्सिंग में, सारे स्टेट से दिल्ली से भी अदर और स्टेट से भी हरियाणा के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत अच्छा उनका रुतबा है और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क है उनको पता है। तो अभी जो रिजल्ट हमारे आगे आने वाले टाइम में यही जो बच्चे हैं इन्हीं बच्चों के थ्रू में जो सीनियर में रिजल्ट मिलेंगे इन्हीं के थ्रू मिलेंगे, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल इन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कई युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताते चले, अंडर 15 और अंडर 17 का जो अभियान आज से शुरू हुआ है उसमें अंडर 17 टीमों में लड़के और लड़कियों दोनों वर्ग में 13-13 मुक्केबाज हैं, और अंडर 15 में लड़के और लड़कियों के दोनों वर्ग में 15-15 मुक्केबाज हैं, और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इन मुक्केबाजों से। देखने वाली बात है कि कैसा प्रदर्शन रहता है और क्या नतीजे आते हैं।

और अब बात कर लेते हैं शूटिंग की, जहां स्कीट निशानेबाज फाइनल से चूक गए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी स्थित असानोव शूटिंग क्लब में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप शॉटगन में भारतीय स्कीट निशानेबाज पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनल में जगह बनाने से चूक गए हैं। ओलंपियन मेराज अहमद खान और रईजा ढिल्लो भारतीय खिलाड़ियों में सबसे बेहतर स्थान पर रहे। मेराज, जिन्होंने पहले दिन 75 में से 71 का स्कोर करते हुए 26वें स्थान से दूसरे दिन की शुरुआत की थी, ने अंतिम दो सीरीज में 23 और 25 का स्कोर किया और कुल 119 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन चरण का समापन 18वें स्थान पर किया। रैंकिंग अंक के लिए खेल रहे भवतेक सिंह गिल 119 के स्कोर के साथ मेराज के साथ एक स्थान नीचे 19वें स्थान पर हैं और ओलंपियन अनंतजीत सिंह नरुका ने चौथी सीरीज में परफेक्ट 25 का स्कोर किया और इसके बाद 23 का स्कोर बनाते हुए सीजन के अपने पहले वर्ल्ड कप का समापन 117 अंकों के साथ 38वें स्थान पर किया। प्रतियोगिता में तीसरे भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन गुरजोत सिंह खंगूरा ने अंतिम दो सीरीज में 22 और 23 का स्कोर करते हुए कुल 115 अंकों के साथ 54वां स्थान हासिल किया। अभय सिंह सेंखो, जो रैंकिंग अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ने चौथी और पांचवी सीरीज में 20 का स्कोर किया और कुल 113 अंकों के साथ 71वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में गनेमत सेंखो, जिन्होंने पहले शीर्ष 8 से एक स्थान नीचे रहते हुए दिन समाप्त किया था, अंतिम दो सीरीज में 22 और 20 ही बना सकी और कुल 112 अंकों के साथ 33वें स्थान पर खिसक गई। रईजा ढिल्लो ने 115 के स्कोर के साथ 17वें स्थान पर रहते हुए भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। परिनाज ढालीवाल ने अंतिम दो सीरीज में 24 और 22 का स्कोर करते हुए कुल 112 अंकों के साथ 32वां स्थान हासिल किया, जो गनेमत के एक स्थान ऊपर रहा। रैंकिंग अंक के लिए खेल रही वंशिका तिवारी और रश्मि राठौर ने 112 और 102 के स्कोर के साथ 29वें और 47वें स्थान पर समाप्त किया। इसी साल मोरक्को में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप में भी भारतीय स्कीट शूटर्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, तब भारतीय दल बिना किसी पदक लिए स्वदेश लौटा था। और 8 मई से शुरू हो रहे ट्रैप इवेंट्स में अब भारतीय शूटर्स से उम्मीदें होंगी। और इसके अलावा अल्माटी में व्यक्तिगत स्पर्धा में विजेता ISSF विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में इटली के रोम में आयोजित किया जाएगा। और 9 तारीख को वुमेन्स ट्रैप और मेंस ट्रैप के मुकाबले होंगे, तो वहीं 10 मई को ट्रैप मिक्स्ड टीम के मुकाबले खेले जाएंगे।

0: और अब आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज टू शंघाई जो में जो आयोजित किया गया है उसकी बात करते हैं, जो 5 से 10 मई के बीच आयोजित है और क्वालिफिकेशंस चल रहे हैं कंपाउंड आर्चरी की। और विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अमीषा के पास।
1: जी दीपिका जी, तो अब हम बात करते हैं शंघाई में होने वाले आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 के स्टेज टू की। तो आज का दिन भारत के लिए युवा शक्ति के नाम रहा। कंपाउंड इवेंट में क्वालिफिकेशन राउंड पूरे हो चुके हैं और हमारे तीरंदाजों ने शंघाई के मैदान पर शानदार निशाना साधा है। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के इंडिविजुअल और टीम के वर्ग की। यहाँ आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अनुभवी ज्योति सुरेखा वेनम की जगह आज अदिति गोपी चंद स्वामी ने मोर्चा संभाला। अदिति ने 720 में से 700 अंकों का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया और भारतीयों में नंबर एक पर रहीं। वहीं प्रगति ने 697 और ज्योति सुरेखा ने 695 अंक हासिल किए। नियम के मुताबिक टॉप थ्री स्कोरर ही टीम बनाते हैं, इसलिए अब महिला टीम में अदिति, प्रगति और ज्योति की तिकड़ी नजर आएगी। खास बात यह है कि स्टेज एक की गोल्ड मेडलिस्ट टीम में शामिल मधुरा जो है इस बार चौथे नंबर पर रहने के कारण टीम स्पर्धा से बाहर हो गई है। भारतीय महिला टीम को ओवरऑल 5वीं सीड मिली है। अब रुक करते हैं पुरुषों के कंपाउंड वर्ग की ओर। यहाँ भी जो युवाओं हैं उन्होंने अपना इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है कि उन्होंने अनुभव को पीछे छोड़ दिया है। ओजस प्रवीण देवतले जो हैं और साहिल जाधव जो हैं, दोनों ने ही 711 का जबरदस्त स्कोर किया। एक्स काउंट के आधार पर ओजस 7वें और साहिल 8वें स्थान पर रहे। इसके साथ कुशल दलाल ने 18वीं रैंक हासिल की। अनुभवी अभिषेक वर्मा इस बार टीम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब भारत की जो मेंस टीम है वह ओजस, साहिल और कुशल से मिलकर बनी है, जिसे वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरी वरीयत यानी कि तीसरी सीडिंग दी गई है। यह टीम मेडल की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं मिक्स्ड टीम इवेंट की बात करें तो भारत के लिए यहाँ मुकाबला थोड़ा कड़ा होने वाला है। भारत के दो टॉप स्कोरर्स ओजस देवतले और अदिति स्वामी की जोड़ी मैदान पर उतरेगी। क्वालिफिकेशन के संयुक्त स्कोर के आधार पर भारत को 6वीं रैंकिंग मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि शानदार क्वालिफिकेशन प्रदर्शन की वजह से हमारी मेंस और जो को तीसरी और जो विमेन्स टीम है उसको 5वीं वरीयत मिली है। इस ऊंची रैंकिंग के चलते दोनों टीमों को पहले राउंड में बाय मिला है, यानी अब हमारी भारतीय तिकड़ी सीधे दूसरे राउंड में निशाना साधेगी और मेडल की रेस में सीधा एक कदम आगे शुरुआत करेगी। तो श्रोताओं, कल यानी 6 मई को रिकर्व की क्वालिफिकेशन राउंड होंगे। यहाँ दीपिका कुमारी और धीरज बामदेवरा पर सबकी नजरें होंगी। और अभी तक के प्रदर्शन पर क्या बोलते हैं जाने माने कोच जीवन ज्योत सिंह तेजा जी, आइए सुनते हैं।
2: एशियन गेम्स से पहले ये 2-3 टूर्नामेंट जो हमें खेलने को मिलेंगे, जैसे वर्ल्ड कप 1, 2, 3। और वर्ल्ड कप 1 में हमारी वुमेन टीम ने गोल्ड लिया था और मिक्स टीम हमारी ब्रॉन्ज मेडल मैच हार चुकी थी। तो उसी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने मतलब एशियन गेम्स से पहले ट्राई करनी थी, तो वो ड्यूरिंग द कैंप्स हम कर रहे थे, तो उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अभी अगर वो चीज सक्सेस होगी, बच्चे अच्छा कर रहे हैं हमारे, पहले भी हम जैसे 2014 में, 18 में, 22 में बहुत अच्छे मेडल्स हमने देश को दिए हैं एशियन गेम्स में, ऐसे ही हम देश की सेवा करेंगे और आपकी दुआएं चाहिए।
0: बिल्कुल, आज तो कंपाउंड इंडिविजुअल क्वालिफाइंग और एलिमिनेशन राउंड है और कल खेला जाएगा कंपाउंड इंडिविजुअल टीम एलिमिनेशन, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार?
2: उसमें हमारी टीम जो पहले से बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने गोल्ड मेडल लिया और साथ में हमारे बॉयज का भी अच्छा प्रदर्शन रहा और मिक्स टीम में हमारा जो लॉस्ट हो गया, बट फिर भी काफी अच्छा मतलब शूटिंग थी, नो डाउट कि कभी ना कभी स्कोरिंग में हो जाता ऊपर नीचे, तो उसी जो कमियां थी वो यहाँ पे इसी वर्ल्ड कप में हम पूरी करेंगे, मतलब उसको कोशिश करेंगे पूरा, ताकि जो पिछली बार फोर्थ रह चुके थे उसको हम मेडल में तब्दील करें।
0: और अब बात कर लेते हैं ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स जो लंदन में आयोजित हैं 28 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच, और इसमें राउंड ऑफ 32 के मुकाबले आज देर रात होने हैं मेंस और वुमेन्स दोनों के।

0: मेंस के मुकाबलों में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला होना है, वही वुमेन्स का इंडिया और यूएसए के बीच देर रात मुकाबला होगा, और वुमेन्स मुकाबलों में जीतने वाली टीम का अगला मुकाबला यूक्रेन से होगा, और जो यूक्रेन है वो इंग्लैंड को 3-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। और अब फुटबॉल की तरफ चलते हैं। एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 में भारत का सफर अब तक कहीं ज़्यादा मुश्किल दौर में रहा है, और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त पहले हाफ का मैच हो चुका है। इस वक्त भारत और जापान का मुकाबला खेला जा रहा है जो पहले हाफ तक पहुंच गया है, और अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है, यानी कि दोनों का स्कोर 0-0 है। और भारत के अगर सफ़र की बात करें और पूरे एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप की बात करें तो ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हारने के बाद भारत अब ऐसी स्थिति में है जहां हर गोल का बहुत महत्व है, गोल का अंतर बहुत अहम है, और पहले मैच के दिन कुछ मैचों के दोहरे अंकों वाले स्कोर भी देखने को मिले, जिसमें जापान की लेबनान पर 13-0 की जीत भी शामिल है। AIFF की एक प्रेस रिलीज के अनुसार ग्रुप सी में DPR कोरिया ने चाइनी ताइपाई को 10-0 से हराया। इससे पहले आज ग्रुप बी के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना लेबनान से होगा। भारत के सामने अब दुनिया की सबसे ज़्यादा तकनीकी रूप से बेहतरीन टीमों में से एक टीम खड़ी है। अब तक खेले गए 9 अंडर 17 महिला एशियाई कप टूर्नामेंट में जापान 7 बार फाइनल में पहुंचा है और 4 बार खिताब जीता है, और अभी तक आधा समय बीत चुका है मैच का, एक भी गोल कोई भी टीम नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी भारतीय अंडर 17 टीम भी कम नहीं है किसी भी टीम से, क्योंकि उनका डिफेंस स्ट्रांग है अगर जापान की टेक्निक बहुत अच्छी है। भले ही जापान इस मैच में प्रबल दावेदार के तौर पर उतर रहा हो, लेकिन यंग टाइग्रेस की मुख्य कोच पामेला कॉन्टी ने कहा कि उनकी लड़कियां पूरी तरह से साफ सोच के साथ इस मुकाबले में उतरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के ज़्यादातर समय तक भारत का डिफेंस मजबूत बना रहा, लेकिन कुछ व्यक्तिगत गलतियों की वजह से टीम को नुकसान उठाना पड़ा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां टीम तुरंत काम करना चाहती है, और जापान की खेल शैली तो सभी जानते हैं, लगातार मूवमेंट और लगातार एकाग्रता, तकनीकी अनुशासन, ये सब जो है आज हमारी टीम को भी सीखना पड़ेगा। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और मेरी साथी अमीषा पटेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों के परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के

0: गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमियों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamiraga Vedri Karagam, or TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in Legislative Party meeting at the party headquarters in Panayur, near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. In Kerala, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of the new government. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as the central observer for the election of the leader of the Legislative Party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Manji has been appointed as the central co-observer in the state. Union Minister J.B. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the Legislative Party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as the central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. Prime Minister Narendra

0: संदीप पाठकः राजेन्द्र गुप्तः च अद्य राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलित्वा पंजाब राज्ये आप नेतृत्वे प्रशासनेन राज्यतंत्रस्य कथितस्य दुरुपयोगस्य विषये चिन्तां प्रकटितवन्तः। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् राघव चड्ढा इत्यनेन आप नेतृत्वे पंजाब सर्वकारः राज्यतंत्रस्य उपयोगेन राज्यसभायाः सदस्यान् लक्षीकरोति इति आरोपितवान्।
1: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: अत्रांतरे पंजाब राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान इत्येषः अपि आप दलस्य राज्यसभायाः सप्त सदस्यानां भाजपेति दले प्रवेश विषये चर्चार्थं राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलितवान्। उपवेशनानन्तरं श्रीमानः आप दलस्य सांसदानां विलयनम् असंवैधानिकम् इति उक्तवान्। भारत ऋतु विभागेन आगामि दिनद्वयोः मध्यप्रदेशे, विदर्भे, छत्तीसगढ़े च मेघवृष्ट्या विद्युत्पतनेन वायुवेगेन च सह लघुतः मध्यम वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंग इत्येतेषां च केषुचित् भागेषु अपि एतादृशेः स्थितेः संभावना विद्यते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् आतिथेय दिल्ली कैपिटल्स दलम् अद्य सायंकाले अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने क्रीडा आरभ्यते। अवधेयं गतरात्रौ वानखेड़े क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं षट् स्तोभैः पराजितम्। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिमबंग, तमिलनाडु, केरलं प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः, पश्चिमबंगालराज्यस्य केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डाः च असमराज्यस्य केन्द्रीयपर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः। बिहार राज्यस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारः मई मासस्य सप्तमे दिनांके भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज फोन इन कार्यक्रम और फोन इन का हमारा आज का विषय है,
1: ये आज का जो कार्यक्रम है किसान बहन भाइयों प्रायोजित कार्यक्रम है, इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: hell I do.
1: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
0: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: तो श्रोताओं, आज का हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम स्वागत है आपका बहुत बहुत। और आज का हमारा विषय है संतुलित उर्वरक, यानी कि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बनाएं। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, इस विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, गन्ना लगाना चाहते हैं या कुछ और उनकी समस्या है, तो वो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बिल्कुल। और हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विकास कुमार मलिक, प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। और हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर US तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा।
2: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर वही हैं श्रोताओं, 0112342108 2, और दूसरा हमारा नंबर है 0112342108 3। तो जिन भी श्रोताओं को कोई जानकारी चाहिए, हमारे विशेषज्ञों से बात

0: फ़ोन लें और जब तक हमारे किसान भाई इसमें फ़ोन करें तब तक आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि गन्ना एक हमारी ऐसी फसल है जो कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ हमारे जो गन्ना के मील हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना की फसल नहीं होगी तो मील कैसे चलेंगे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: और दूसरा, गन्ना का अगर हमारे किसान भाई उत्पादन करते हैं और उनका सही समय पर मील में नहीं जाता है तब भी उनको उसका दाम सही से नहीं मिल पाता है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन गन्ना फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें जो संतुलित उर्वरक हैं उनका भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, सबसे पहले तो आपको जानना चाहूँगा कि गन्ना फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन क्या होता है?
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं इसके विषय में सभी किसान भाइयों को, जो श्रोतागण हैं, उनको अवगत कराना चाहूँगा कि जो संतुलित शब्द है
0: जी,
1: ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। उर्वरक किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संतुलित शब्द का मतलब है कि उनको सही मात्रा में इस्तेमाल करना। अब इसका यदि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ संतुलित, लेकिन इसका विस्तार रूप क्या है कि संतुलित कब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ, फसल की आवश्यकता कितनी है उस उर्वरकों का आपको ज्ञात होना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण पे उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं है, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सही मात्रा, सही तत्व और सही समय और सही विधि। इन सब चीज़ों को यदि हम सम्मिलित करते हैं तब जाके हम कहते हैं कि हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं।
0: जी डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूँगा
2: जी। देखिए, संतुलित जो चाहे फर्टिलाइजर कंजप्शन हो, चाहे व्यक्ति को खाना हो, जैसे हमको संतुलित खाना चाहिए, हमें दाल भी, अनाज भी, दूध भी, घी भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, जैसे हमारे शरीर को चाहिए ऐसे ही हमारे प्लांट को भी 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और 17 पोषक तत्व उनको नहीं मिलेंगे तो वो वृद्धि नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगे। अब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कैसे पता चले कि भी अब हमारी मिट्टी में किस किन कौन से तत्वों की कमी है और हमारे फसल को किन किन तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है, किन किन की कम ज़रूरत है
0: जी?
2: तो ये मिट्टी टेस्ट करके तो हमें मिट्टी से पता चलेगी कि मिट्टी में क्या क्या है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है जो उसकी जो आएगी, आपकी रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा होगा कि आपके जो सॉइल में ये तत्वों की कमी है, तो आपको उन तत्वों को देना है। दूसरा, उसमें समाहित करना है, उसमें जोड़ना है आपको कि जो हमारी फसल है, जैसे गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल को कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, कितना जिंक चाहिए, कितना सल्फर चाहिए, कितना बोरोन चाहिए, कितना कॉपर चाहिए, सारी चीज़ों का आजकल केवल हम एनपीके के उपयोग से संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं कह सकते।
1: बहुत बढ़िया,
2: क्योंकि पिछले 50 सालों से जो हम अपनी मिट्टी में एक क्या दो चीज़ें बढ़ी हैं, एक तो पर यूनिट एरिया जो है, मानो एक एकड़ खेत में हमारी यील्ड बढ़ी है, यील्ड जितनी बढ़ेगी उतनी पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरा, एक साल में एक से ज़्यादा फसल ले जानी शुरू हुई है। आज से 50 साल पहले बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे केवल एक फसल एक साल में लेते थे, तो इसको कहते हैं हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ा दी और प्लस पर यूनिट एरिया में हमारी उपज भी बढ़ गई। इन दोनों ही जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो विकास के कार्य हुए, इन दोनों से हमारी मिट्टी से पोषक तत्वों को, जो खनन कहते हैं, जिसको अवशोषण कहते हैं, उनकी गति बहुत तेज हो गई है और वो जल्दी से उसमें ख़त्म होने लगे हैं, समाप्त होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। और ये हमारी आज की जो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना गवर्नमेंट ने चलाई, जिसमें लगभग 6 करोड़ फार्मर्स के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए साइकिल 1 में और साइकिल 2 में, उसकी जो अगर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम देखें तो उससे पता चलता है कि हमारी जो मृदाएँ हैं वो सारे तत्वों में लेके एन से लेके ऑर्गेनिक कार्बन से लेके फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर,

0: आयरन, कॉपर और ये बोरॉन, मॉलिब्डेनम, इनमें सब में लगातार कमी होती गई है। और किसान क्या करते हैं, देखिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है।
1: जी
0: किसान क्या सोचते हैं कि हमारी पत्ती पीली हो गई फसल की, पत्ती पीली मतलब यूरिया डालो। देखिए जबकि पत्ती पीली दो तत्वों की वजह से होती है, एक सल्फर की वजह से होती है और एक नाइट्रोजन की वजह से होती है। जो नाइट्रोजन में पीली पत्ती होती है वो पौधे के जड़ के तरफ वाली पत्ती पीली होती है, लेकिन जो ऊपर की पत्ती पीली होती है वो सल्फर की कमी के कारण पूरी होती है। तो जब तक हमें सही जानकारी नहीं होगी, अगर आप सल्फर की कमी है और आपने यूरिया डाल दिया, आप फसल के साथ, अपने खेत के साथ, अपने अपनी जेब के साथ आप
1: जी
0: अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है वो डालने, आपका पैसा बेकार गया। वो यूरिया जाके उसको बहुत मुलायम करेगा पौधे की वृद्धि करके, उसमें रोग और कीट लगेंगे। और जहाँ की उसमें सल्फर देना चाहिए था जिससे उसमें रेजिस्टेंस रोग और कीड़ों के प्रति आता, उसका बैलेंस वृद्धि होती, उसके गिरने की क्षमता कम होती, तो वो चीज़ें जो होती हैं, तो वो संतुलित उर्वरक उपयोग अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है। और इसके लिए एक पूर्ण जानकारी की ज़रूरत है, किसानों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है। नंबर एक, आपकी मिट्टी की जांच, कौन कौन सी कमी है। नंबर दो, आपकी फसल की रिक्वायरमेंट। और नंबर तीन, जो आप डालें उर्वरक उनकी एफिशिएंसी के अनुसार उसकी डोज को कैलकुलेट कर।
1: जी
0: जैसे
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर साहब ने 4 R बताई, मैं उसमें 2 R और ऐड करना चाहता हूँ अपने अनुभव के अनुसार।
1: जी जी बिल्कुल सर
0: 4 R जो ज़्यादा प्रचलित हैं वो है राइट फर्टिलाइजर, यानी राइट सोर्स होना चाहिए हमारे क्रॉप और मृदा को ध्यान में रख के, वो बिल्कुल सूटेबल और उचित सोर्स होना चाहिए। नंबर दो, उसकी जो मात्रा है वो सही होनी चाहिए, मिट्टी की कमी मिट्टी में और फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं। नंबर तीन, विधि जो है डालने की वो बिल्कुल उसके अनुकूल होनी चाहिए, फसल के, मृदा के, और जो हम तत्व डाल रहे हैं उसके अनुसार हमारी विधि होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग विधि होती है, फास्फोरस के लिए अलग होती है, उसी तरह से हर एक तत्व की डालने की जो विधि है वो अलग होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इनके डालने का
0: तीसरा,
1: टाइम भी अलग अलग
0: हाँ,
1: होता
0: अब तीसरा चौथा जो आ रहा है आर, वो है राइट टाइम।
1: है। जी
0: आपने पहले ही जंप मार दिया, तो उसमें जो चौथी आर है वो है राइट टाइम।
1: जी
0: टाइम दो तरीके से टाइम, एक तो क्रॉप ग्रोथ स्टेज वाइज टाइम, और एक दिन का भी टाइम होता है कि सुबह
1: जी
0: डालें या शाम को। तो ये हो गया। अब पांचवा आर सुन लीजिए,
1: जी
0: राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स।
1: जी
0: कॉम्बिनेशन, कोई कोई क्या करते हैं कि दो फर्टिलाइजर को एक साथ मिला देते हैं। अगर आपने DAP के साथ में जिंक सल्फेट मिला दिया, तो ना तो जिंक मिलेगा आपके पौधों को और ना ही फॉस्फेट मिलेगा। इसलिए राइट कॉम्बिनेशन की भी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर को मिला सकते हैं, किसको नहीं मिला सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: और
1: जानकारी और
0: अभी अभी छठी आर भी रही है, कोई
1: जी,
0: क्वेश्चन आ रहा है
1: अरे
0: क्या?
1: किसान
0: हाँ,
1: भाई का फोन ले लेते
0: उनका
1: हैं।
0: पहले लीजिए। ओके,
1: हेलो,
2: लाल जी, राम राम।
1: राम राम जी।
2: जिला हापुड़ गढ़गंगा नए वहां से बोल रहा हूँ, घनश्याम।
1: जी घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका?
2: डॉक्टर साहब को भी, संजना लाल को भी, सबको राम राम।
3: राम राम जी,
0: राम
3: राम
0: राम जी,
3: राम।
0: राम राम।
2: मेरा सवाल ये है कि थोड़ी सी गन्ने में पानी लगाया मैंने,
1: जी
2: तो उसमें जो है वो घास है, तो उसमें दवाई मार दे खुरपे से ले लेने।
0: खुरपे से ले लो तो बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है।
2: हाँ, ये विचार है मेरा।
0: ना ना, बहुत अच्छा, सुंदर विचार है, पर्यावरण के अनुकूल विचार है आपका, और बिल्कुल खुरपे से निकाल दीजिए उसको। हाँ
2: ठीक है जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, राम राम।
1: ठीक है, फोन करने के लिए आपका घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब
0: तो अब छठा आर है,
1: जी
0: छठे आर में होता है राइट वाटर मैनेजमेंट। देखिए फर्टिलाइजर और जो वाटर मैनेजमेंट का बहुत ही आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर इनका संबंध सही नहीं होगा तो फर्टिलाइजर भी आपका सही से, उसकी एफिशिएंसी आप नहीं ले पाओगे ना काम करोगे। तो ये 6 R जरूरी हैं, और ये केवल उसमें ही नहीं, केवल फर्टिलाइजर में नहीं, ये पेस्टिसाइड में भी बिल्कुल सही उतरती हैं 6 की 6। यार
1: जी डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से बताया। और डॉक्टर मलिक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप संतुलित उर्वरक की बात करते हैं, तो उनका अगर हम देखें हमारे उत्पादन पे, यानी गन्ने के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है?
3: जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सादिक किसान भाई यार जी।
1: हेलो।
4: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
4: नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार। कैसे?
3: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: की बात सुनी के दो
1: आप। हेलो हेलो, आप अपना नाम और पता बताएं।
4: मेरा नाम मोहर सिंह है जी, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ
1: जी। मोहर सिंह जी, क्या सवाल है आपका?
4: अभी डॉक्टर साहब ने बात करी के पीली पत्ती यूरिया की निशानी है और ऊपर की पत्ती उसकी क्या बताया,
0: सल्फर
4: के लिए,
1: सल्फर
4: सल्फर की। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी पहचान बताई। दूसरी एक बात और सर
1: जी,
4: के डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि दो फर्टिलाइजर एक साथ मिला के ना डाले, तो क्या हम यूरिया और डीएपी मिला के डाल सके, ना डाल सके खेत में?
0: देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और देखो, यूरिया क्या होता है, अगर यूरिया को डीएपी में मिलाओगे ना, यू पानी छोड़ देगा यूरिया।
4: अच्छा।
0: और आप बखेर नहीं पाओगे, थोड़ी सी बीच में ही वो एकदम पानी बन जाएगा उसका। और डीएपी की अमोनिया बन के उसका लॉस हो जाएगा। और उसकी भी, क्योंकि नाइट्रोजन है दोनों में, उसमें भी है 18% और 46% इसमें है, आपके नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, मत मिलाइए।
4: अच्छा।
0: और जो मैंने
1: अलग अलग डाल सकते हैं।
0: देखिए देखिए किसान भाई, हम एज ए वैज्ञानिक, हम आपको बखेरने की जो सलाह नहीं दे सकते। हम अपनी साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि से बंधे हुए हैं। हमारी वैज्ञानिक विधि ये है कि अगर यूरिया को जो पूरे पूरी फसल में लगाया जाता है, उसकी 1/3 मात्रा आप देंगे बुआई के समय। आप गन्ने के बारे में पूछ रहे हैं ना?
4: हाँ, गन्ने के बारे में भी और भी फसल है।
0: हाँ, औरों में भी मैं एक जनरली रूल बता देता हूँ। दूसरा जो फास्फोरस है, देखिए किसान भाई, फास्फोरस जो होता है वो कभी भी बखेर के डालना नहीं चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि किसान सारे बखेर के डालते हैं। हाँ, बखेर के डालने में नुकसान क्या है कि जो जो जो ये फास्फोरस है, ये मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, जहां पे भी पड़ जाएगा वहीं पड़ा रहेगा ये। और इसका उदाहरण आप ये देखोगे कि कुछ, अगर कुछ किसान भाई अगर धान में ना, खड़े धान में भी डीएपी डाल देते हैं ऊपर से।
4: हाँ, डालेंगे।
0: उसको देखोगे आप, वो ऐसे के ऐसे वहीं दाने पड़े रहते हैं और सफेद सफेद हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। किसान क्या कहता है, यार ये तो डीएपी नकली है। वो नकली नहीं है, उसकी नेचर है, पानी के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह फास्फोरस नहीं जाता है। जबकि नाइट्रोजन, अगर थोड़ी सी भी नमी होगी जमीन में, बहुत थोड़ी सी, वो सब जगह फैल जाएगा इक्वली यूनिफॉर्मली। इसी नेचर को जो मैंने राइट मेथड कही थी, आपने उस पर जो है क्वेश्चन किया है उससे संबंधित, राइट मेथड ये है फास्फोरस की, कि फास्फोरस हमेशा वहां डालना चाहिए जहां पे जड़ जाती हो पौधे की।
4: अच्छा।
0: जड़ जाती हैं बीज के नीचे, और इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े जब हल से बोते थे तो नीचे खाद डालते थे, ऊपर बीज डालते थे।
4: पहले खाद डाला जाए।
0: तो ये है, बहुत ही बढ़िया आपने कही। और जो मैंने दो खादों की बात करी, वो करी डीएपी और जिंक सल्फेट। ये अगर दोनों मिला दिए तो ना जिंक सल्फेट मिले आपकी फसल को और ना मिले फास्फोरस, क्योंकि दोनों मिलके एक जिंक फास्फेट बनाते हैं जो पत्थर होता है। अच्छा। और दोनों पत्थर मिलके दोनों पत्थर बन जाएंगे, कोई सा भी पौधे को नहीं मिलेगा।
4: कोई फायदा नहीं होगा।
0: ये है, ठीक है,
1: ठीक है।
4: डॉक्टर एक बात और बताओ, टाइम और बता दो। आपने टाइम के बारे में बताई कि दिन में, सुबह या कौन से टाइम उसी से।
0: हाँ देखिए, टाइम का यूरिया का बता देता हूँ कि यूरिया सबसे ज्यादा भागदौड़ करने वाला तत्व है, तो यूरिया को जो आप हमेशा शाम के समय डालें। हाँ, शाम के समय जब धूप ठंडी पड़ रही हो, जब बिल्कुल मुलायम हो रहा हो वातावरण, बिल्कुल गर्मी जा रही हो, तब उसको

0: डालें जिससे कि पूरी रात मिलेगी उसको, ठंडक मिलेगी। अगर उसे सुबह धूप में डाल देंगे उसकी सारी नाइट्रोजन बन के ऊपर उड़ जाएगी। ठीक
1: ठीक
0: है
1: है मोहर सिंह जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते श्री नंदन बाबू,
1: नमस्ते जी।
2: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से स्वागत करता हूँ
1: जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर सितारे।
2: जी। गन्ने के खेत में पानी बरसने से बहुत पानी लग गया, उसका क्या उपाय किया जाए?
1: अच्छा, गन्ने के खेत में पानी भर गया है।
2: जी अभी जो पानी बरसा है 2-3 दिन पहले।
1: जी,
0: पानी निकाल दो।
2: पानी निकलने का जरिया नहीं है सर जी, नीचे गड्ढा नहीं है।
0: गड्ढा नहीं है तो एक जो है, देखिए अगर निकास नहीं है पौधे में, उसमें खेत में आपके, तो एक बोरिंग कर सकते हैं आप, उसमें उसको खुला छोड़ दीजिए, सारा पानी नीचे चला जाएगा।
2: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: जी, थैंक यू।
1: ठीक है, फ़ोन करने के लिए डॉक्टर सितारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिहार के सितारे
1: जी डॉक्टर मलिक जी, जो हमारा सवाल था कि संतुलित उर्वरकों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि संतुलित उर्वरकों से किस प्रकार हम कोरिलेट करते हैं कि वो उत्पादन को प्रभावित करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में।
1: जी
3: क्योंकि संतुलित है इसका मतलब है कि वे उस पौधे की पूरी ग्रोथ, जैसे हम नाइट्रोजन से शुरू करें, यदि आप बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप उसे पौधे को देंगे तो वो पौधे की वृद्धि प्रॉपर पूरी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि करेगा। इसी प्रकार यदि हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस रूट जोन डेवलप करने के लिए होता है, जड़ों का विकास करने के लिए होता है, और वो जितना हमें फास्फोरस पौधे को आवश्यक है जो उसकी रिकमेंडेड डोज है। किसान भाई ऐसा
1: जी हेलो।
4: हेलो
1: हाँ नमस्कार जी,
4: जी, नमस्कार सर
1: अपना नाम और पता बताइए।
4: जी। सर ग्राम गौर जामा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
1: जी क्या सवाल है आपका?
4: सर सर से मेरा सवाल था जो पोषक तत्वों के बारे में बता रहे थे। मैंने ये सुना है कि गहरी जुताई अगर बार बार कराते हैं तो कार्बन की कमी हो जाती है, क्या ये सही है या फिर ये कोई मिथ है, जानना था।
0: ये देखो,
1: जी
0: इनका बहुत ही अच्छा प्रश्न है
1: जी
0: और आपकी जो बात है ना बहुत ही अच्छी है और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक है।
4: जी सर
0: देखिए, आप अगर नमक लें 1 चम्मच, उस नमक को 1 किलो आटे में मिलाओ, ठीक है? उसमें
4: हाँ
0: एक एक नमकीन जितना भी होगा उसको देखो चख के, और फिर 1 चम्मच नमक को 1 कुंटल आटे में मिलाओ, उसे
4: बिल्कुल,
0: कम हो जाएगा कि नहीं
4: वह तो स्वाद ही नहीं रहेगा फिर तो, उसमें कुछ भी
0: पता ही नहीं चलेगा।
4: होठ के मुंह में जीरा जो बोलते हैं ना वही होगा।
0: हाँ, तो उसमें क्या है कि आपने जो आपके ऊपर की 6 इंच की मिट्टी है, 6 इंच की मिट्टी में ज्यादातर फसल की वो रहती हैं जड़ें।
4: जी
0: गन्ने की बात करें, गन्ने की जड़ें गहरी जाती हैं, लेकिन वो जब जाएंगी गहरी, जब गहरी जुताई होगी। जब आप गहरी जुताई करते हैं, जो ऊपर का कार्बन है वो सारा नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
4: जी
0: रहता तो उतना ही है,
4: जी
0: रहता तो उतना ही है, लेकिन वो ज्यादा मिट्टी में मिल गया एक जगह पे कम मिट्टी हो जाती है, मतलब एक जगह पे कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। समझ में आ गई?
4: जी जी
0: तो जब भी गहरी जुताई करें तो खाद डालें खूब जम के, क्योंकि वैसे भी गहरी जुताई करोगे जड़ नीचे जाएंगी तो खाद भी तो होना चाहिए नीचे।
4: जी बिल्कुल। अच्छा सर एक जिज्ञासा और थी मेरी, जैसे जो जैविक खाद हम खरीदते हैं मतलब देसी खाद या केंचुआ खाद, तो हर चीज का रेट और दाम होता है, क्या इनके भी कुछ ऐसे रहते हैं डिसाइड कि इस भाव से मिलना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग प्रकार से मिलता है, तो कुछ ऐसा इनका भी रहता है सर
0: भाई
4: कोई?
0: देखिए, ऐसा है कि जो रेट फिक्स होता है, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो, एक गवर्नमेंट का तो रेट फिक्स रहता है जो अगर उनके आउटलेट है, और प्राइवेट में तो वो ये करते हैं उसका कि भाई मेरी अच्छा है तो मैं ज़्यादा पैसे लूंगा, मेरा कुछ वो है जिसका नहीं बिकता वो कम पैसे में। तो ये मार्केट ओपन है, ये कंट्रोल्ड मार्केट नहीं है। जैसे यूरिया सब जगह एक भाव में मिलेगा आपको, वो कंट्रोल है।
4: जी तो लगभग जैसे गवर्नमेंट दाम है तो 1 क्विंटल कैसा चलता केंचुआ खाद?
0: गवर्नमेंट, ये तो देखिए अलग अलग जो है आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगा, आप अपनी जगह पे पता कर लीजिए।
4: जी सर
1: ठीक है
4: धन्यवाद
1: विपिन जी, फ़ोन करने के लिए आपका
4: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है संतुलित उर्वरकों का?

0: जी
1: डॉक्टर साहब, एक किसान और हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो।
2: नमस्कार
1: हाँ जी नमस्कार जी।
2: जी, अशोक कुमार शर्मा गुठावली कोर्ट बुलंद शहर।
1: हाँ जी, अपना रेडियो सेट दूर कर लो या उसे धीमा
2: ठीक
1: कर
2: है
1: लो।
2: साहब, ठीक है जी, दूर कर दिया।
1: क्या सवाल है आपका अशोक कुमार जी?
2: सवाल मेरा ये है साहब, गन्ने में बुवाई के टाइम तो हम डीएपी नीचे डालते हैं,
1: जी
2: और गन्ना जब तैयार हो जाता है बड़ा, एक एक फुटका, 2 फुटका, 4 फुटका,
1: जी
2: तो उसके बाद भी डीएपी डालते हैं।
1: उसके बाद भी डीएपी डालते हो?
2: जी हाँ, यूरिया में मिलाकर के डालते हैं, तो उसका कितना बेनिफिट मिलता है डाई का, कितना नहीं मिलता।
0: देखिए
2: अच्छा,
0: ऐसा,
2: दूसरा सवाल,
0: हाँ
2: एक मिनट, दूसरा सवाल मेरा ये है, धान में किस तरह से डीएपी डालना है और किस तरह धान धान में।
0: ठीक है, हम दोनों सवालों का जवाब देते हैं आपका। पहले का
2: धन्यवाद जी।
0: गन्ने की बात बताते हैं। पहले
2: जी
0: अगर आपकी जो टोटल, जैसे 80 किलो आपको फास्फोरस देना पूरे गन्ने की फसल में,
1: जी आप बताइए, रेडियो पे सुन रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: और उसमें क्या किया आपने, जैसे आपने कहा कि आधा आपने दे दिया बुआई के समय गन्ने के सेट के नीचे, और दूसरी डोज आप देना चाहते हैं। तो देखिए, अगर दूसरी देना चाहते हैं तो जो मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने से पहले आप बीज खूड़ में डालिए और उसके बाद अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ा दीजिए, तो उसमें फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आपने मिट्टी चढ़ाने के बाद में फिर ऊपर से डीएपी डालते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, धान में डीएपी कैसे डालें? देखिए, प्रिंसिपल तो एक जैसा ही है कि जो आप जड़ों के नीचे होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि धान में उसकी वो करते हैं पडलिंग करते हैं जो आप गुड़ाई करते हो, तो उस समय फिर डीएपी जुताई करते समय या पडलिंग करते समय उसमें नीचे मिला दीजिए।
1: ठीक है अशोक कुमार जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे किसान जागरूक हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं।
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: लोग जो फ़ोन मिला पा रहे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं जो मिलाते हैं कार्यक्रम वो भी सुन रहे हैं।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम को और जारी रखते हैं कि अपना जो आप
0: महत्वपूर्ण
1: सवाल आपसे किया था वो
0: जी जी जी
1: उसका।
0: नहीं, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि एक तत्व की पूर्ति कोई भी दूसरा तत्व नहीं कर सकता है, और जो शरीर निर्माण के लिए सारे पोषक तत्व चाहिए, 17 के 17 पोषक तत्व, वे पौधे को अपने अलग अलग रूप से ही प्रदान करने होते हैं, उसी से ही उसके शरीर का पूर्ण निर्माण होता है, चाहे वो जड़ क्षेत्र का हो, चाहे तने का हो, चाहे पत्तियों का हो, तो संपूर्ण निर्माण के लिए, ताकि उसमें जो फ्रूट का साइज है, फल का साइज है, पत्ती का साइज है, जो भी जिस फसल में डिजायरेबल होता है, जैसे हम गन्ने की बात करें
1: जी
0: तो गन्ने में हमें मेन है केंद्र का, कि उसकी गन्ने की लंबाई अच्छी हो, गन्ने की मोटाई अच्छी हो, तो हर एक संदर्भ में उसका अलग अलग लाभ मिलता है। जैसे हम पोटास की बात करें, तो जो अभी मैंने बताया था फास्फोरस रूट जोन के लिए, जड़ों के लिए है, तो पोटास पौधे में रोगरोधी क्षमता पैदा करने के लिए, प्लस उसमें क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए, यदि हम अपने खेतों में पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारे खेतों में रोग आने की भी संभावना अधिक रहेगी। और दूसरा, जो पौधे की वांछित वृद्धि है, वांछित लंबाई है और वांछित क्वालिटी है, वो उसको प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए संतुलित उर्वरकों के साथ में जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए ही अप्लाई करना होगा, इसी से ही हमारी पूरी फसल, पूरी लंबाई, वांछित फल सहित वो हमें प्राप्त हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि संतुलित उर्वरकों का उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो
0: जी
1: किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो गन्ने में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। और अब बाद में मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ, किसान भाइयों।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
3: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर।

0: मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम का अगला भाग।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: किसान बहन भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। और हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं गन्ने में।
3: तो हमारे श्रोताओं को पता है कि हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये विषय उन लोगों के लिए है जो श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या थोड़ी सी देर कर दी है उन्होंने, पर कोई नहीं, उनको बता दें एक बार फिर संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं। और विषय से संबंधित हमारे साथ स्टूडियो में आज आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आप प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। और
2: जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड में। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर के फ़ोन कर सकते हैं 0111-2342-1082 और 2342-1083 इन दोनों नंबरों पर, और गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से कॉल करने वाले श्रोता इन नंबर के आगे 011 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है जरूर लगा ले। चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल, आइए चलते हैं उनके पास।
4: किसान भाइयों नमस्कार, एक बार पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है और डॉक्टर साहब आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है।
5: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
4: तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे गन्ना फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन की
5: जी,
4: और गन्ना ही नहीं कोई भी फसल है अगर हम लगाते हैं उसमें संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो उत्पादन मिलता है अच्छी क्वालिटी का मिलता है।
5: जी जी बिल्कुल।
4: लेकिन अगर उसे हम वैज्ञानिक तरीके से देखें
5: जी,
4: तो किस तरीके से जो अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो उसका अगर हम संतुलित उर्वरक प्रबंधन नहीं कर पाते हैं
5: जी,
4: तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है।
5: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम यहाँ पर संदर्भ गन्ने के साथ में जोड़ते हुए जी, चल रहे हैं। तो यदि हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई आम तौर पर नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हैं, तो उससे असंतुलन पौधे के अंदर डेवलप होता है, क्योंकि जो यूरिया है ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को अधिक करता है। किसान को लगता है कि उसके जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसके विपरीत प्रभाव क्या पड़ते हैं कि यदि वो उसमें यूरिया का अधिक प्रयोग करता है तो गन्ने की गिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा, वहाँ पर उसके कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, और एक तरीके का प्रभाव पौधे के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर का वनस्पतिक भाग बढ़ा रहा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन दे रहा है, वो सेल एलोंगेशन ऊपर के भाग में वनस्पतिक पार्ट को बढ़ा रहा है। उसी के पैरेलल यदि उसमें असंतुलन बना है तो रूट जोन उसका कमजोर रहेगा और ऊपरी भाग उसका ज़्यादा होगा, तो वो पौधा गिर जाएगा और उसकी वनस्पतिक वृद्धि भी फिर उसके बाद रुक जाएगी। और यदि बैलेंस फर्टिलाइजर है तो उसमें उस दशा में क्या होगा कि बैलेंस का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन से पौधे की ऊपरी वृद्धि बढ़ाई, फास्फोरस से आपने रूट जोन बढ़ाया, पोटास से आपने उसको ताकत दी, स्ट्रेंथनिंग दी, उसकी सेल्स में मजबूती दी, तो तब वो फिर तीनों प्रकार की चीज़ें उसको मिली है तो वो निश्चित तौर पर खड़ा भी रहेगा, वृद्धि भी ठीक करेगा और आपका पौधे में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहेगी। और हम केवल असंतुलन की बात करी हमने कि हमने नाइट्रोजन इस्तेमाल की, फास्फोरस और पोटास इस्तेमाल कम किए या उतनी मात्रा में नहीं किए, तो निश्चित तौर पर पौधे में गिरने की प्रवृत्ति, और क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे को अपटेक बढ़ाता है, पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कीट और बीमारियों का भी प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खेतों में तो रोगरोधी क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा, क्वालिटी डाउन जाएगी, केन की क्वालिटी। यदि आप अपने खेतों में पोटास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें दोनों तरीके से गन्ने का वजन भी कम प्राप्त होगा और दूसरा, शुगर इंडस्ट्री को रिकवरी भी प्राप्त कम होगी, क्योंकि उसमें

0: सब सॉलिड्स जो उसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। अब क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो वजन नहीं होगा, वजन नहीं होगा तो गन्ने का उत्पादन उस लेवल का, देखने में फोलियज अच्छा रहेगा लेकिन उत्पादन उस दृष्टि से उस वजनदार स्थिति में वहां नहीं मिल पाएगा। दूसरा
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हाँ
1: हेलो,
2: जी
1: हाँ जी नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से जी, शिवराम
1: हाँ, क्या नाम है?
2: सवाल
1: अच्छा शिवराम जी, क्या सवाल है आपका?
2: सर जी ये है जी, अब की बार ईख लगा रखी है जी थोड़ी सी गन्ना, वो
1: कितना लगा रखा है?
2: कोई कनाल में लगाया जी, शुरुआत करी है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है।
2: पिछली बार लगाया था जी, उसमें कीड़ा हो गया था जी ऊपर तने में,
0: जी
2: उस कीड़े का प्रकोप नहीं ज्यादा हो गया जी, वो काबू नहीं आया पिछले साल
0: जी जी जी बेसिकली
2: उसकी।
0: तने में ऊपर के हिस्से में जिसको हम अगोला बेधक या टॉप बोरर बोलते हैं, उसका प्रभाव पिछले 2-3 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अधिक देखने को मिल रहा है।
2: हाँ जी
0: और बार बार एक्चुअली क्या स्थितियां बन गई हैं कि हम एक ही प्रकार से हम उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, वो भी केवल केमिकल से, रासायनिक से
2: हाँ
0: ही हम
2: जी
0: उसका नियंत्रण। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके दोनों तीनों, क्योंकि अभी वर्तमान में आपने किस समय गन्ने की बुआई की थी?
2: ये बुआई करी थी जी, अब सरसों काट के। हाँ
0: सरसों काट के, मतलब मार्च के आसपास लगभग।
2: जी
0: अभी मेरा आपसे आग्रह है, अभी पहली पीढ़ी चल रही है, पहली पीढ़ी पूर्ण होने वाली है, उसकी दूसरी पीढ़ी की अब जब शुरुआत होगी तितली से, तो जो
2: हाँ जी
0: पहली पीढ़ी की सुंडी अभी यदि आपके कल्लों के अंदर हो, तो मेरा आपसे आग्रह है उन कल्लों को काट के खेत से बाहर निकाल दें।
2: अच्छा
0: उनसे
2: जी
0: उससे वो आपके उत्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है इस समय गन्ने में रूट जोन बन गई है, जड़ें बन गई है, और आपने मदर सूट हटाया है, तो वहां पर एक एपिकल पोर्शन पे एक एंजाइम इकट्ठा होता है जो पौधे की वृद्धि को बताता है, वो हट गया, तो उससे
2: अच्छा जी
0: जमीन में से ही 3-4 कल्ले 5 कल्ले निकल के आएंगे। आप बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में, मन मजबूत करते हुए ऐसे प्रभावित कल्लों को काट कर खेत से बाहर निकाल के नष्ट कर दे। पहला तो सबसे अच्छा उसका
1: उपाय।
0: नियंत्रण का उपाय
2: हाँ
0: मैकेनिकल
2: जी
0: यही है। दूसरा, इसके बाद हम केमिकल पे जाते हैं। अब क्योंकि आपका मार्च का बोया हुआ गन्ना है, उसमें टिलरिंग फेज अब मुझे लगता है अब जा शुरू हो गई होगी, वहाँ पे फुटाव की प्रवृत्ति उसमें आ गई होगी, कल्ले बनने शुरू हो गए होंगे,
2: हाँ जी हो रही है शुरुआत जी।
0: है ना? हाँ, तो उसमें आपके पास जब एक फिरोमोन ट्रैप और लगाने, जिसको हम किताबी भाषा में फिरोमोन ट्रैप बोलते हैं, तो एक प्लास्टिक का कीप आता है, उसमें नीचे पन्नी लगी होती है, उसके अंदर इस कीट की मादा की खुशबू होती है, ताकि नर अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाते हैं, तो
2: हाँ
0: उससे
2: जी
0: हमें पता लगेगा कि मेरे खेत में दूसरी पीढ़ी कब आ रही है। जब आपके खेत में दूसरी पीढ़ी आने की संभावना शुरू हो जाए, उसी समय नीचे CTPR, क्लोरेंटा निलिप्रोल बोलते हैं, उसकी ड्रेंचिंग कर दे, धार बना के डालनी है। एक और छोटा सा निवेदन है कि जब उसको डालें, 400 लीटर पानी में 150 ml दवाई का घोल बनाकर, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है
2: जी
0: पानी की मात्रा विशेष तौर से, और पावर स्प्रेयर से स्प्रे ना करें, जो 500 लीटर के टैंकर हमने बना रखे हैं, हम पूरे पौधे को तर करते हैं, यदि आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो निवेदन है कि पौधे के तने के पास धार बनाकर कुंड कुंड में उस दवाई को डाला जाए, यदि फोलियर
2: अच्छा
0: स्प्रे
2: जी
0: करेंगे तो उतना अच्छे परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं
2: नहीं
0: दिक्कत
2: मिलेगा जी
0: इसके लिए।
2: उससे जी। ठीक है जी
0: जी जी जी तो ये महत्वपूर्ण सावधानी आप रखेंगे, और निश्चित तौर पर आपको आगे उससे कठिनाई कम से कम होगी।
2: अच्छा जी ठीक
0: जी
1: है शिवराम जी,
2: है
1: फोन
2: धन्यवाद
1: करने के
2: जी।
1: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि संतुलित उर्वरकों के जो हमारे फसलों में डाले जाते हैं या गन्ने में जो लोग डालते हैं, तो
0: जी
1: उसका गुणवत्ता की भी बात आपने करी है,
0: जी जी
1: लेकिन इसका जो हमारे उत्पादन पर
0: जी
1: क्या प्रभाव पड़ता है?
0: उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होता है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी प्रभावित होता है और क्वांटिटी की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। हमें उतना अच्छा उत्पादन दोनों ही श्रेणी में नहीं मिल पाता। और दूसरा, हमारी जमीन का असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से पीएच में भी भारी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम केवल उर्वरक या संतुलित उर्वरकों का मतलब रासायनिक उर्वरकों से समझते हैं।
1: जी
0: इसके साथ मैं अभी आपसे जोड़ेंगे आगे।
1: जी जी

0: हेलो हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार जी।
1: लाल
0: जी तो बतिया जी, क्या सवाल है आज का?
1: साहब, सारी पंचायत को राम राम। और
2: राम
1: सवाल है, जो
2: राम जी। राम राम।
0: राम राम जी।
1: गन्ना अब पिछेटा बोया जा रहा है,

0: केजी प्रति बीघे या 40 केजी प्रति एकड़ की दर से अवश्य इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ 2 केजी प्रति बीघे की दर से माइक्रो न्यूट्रेंट का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे वेस्टर्न यूपी की अधिकतर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा 2 आग्रह आपसे और है। एक, आप यदि बेहद अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो कुछ जैविक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरफ भी हमें चलना होगा। आप इसके साथ साथ एनपीके कंसोर्टिया और जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं जैसे सागरिका, ऐसे तत्वों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक पैकेज बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन बेहद अच्छा होगा। और दूसरा, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या मूंग की खेती हम इसके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। यदि हम सह फसली करते हैं तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं मानता हूँ, यदि आप दूरी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप दूरी पर गन्ना लगाते हैं तो सह फसली में हमारी गन्ने की फसल पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम दूरी भी ना बढ़ाएं और हम उसमें सह फसली भी करें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव, यदि दलहनी फसलों को छोड़ दें तो अन्य फसलें उस पर प्रभाव डाल के जाती है। इसलिए यदि आपने साधारण बोया है तो उसमें मूंग आप लगा सकते हैं, और उससे भी अच्छा विकल्प उसका होगा कि आप मूंग लगाएं और केवल फलियों की तुड़ाई करके खेत से बाहर निकालें, और जो मूंग के संपूर्ण पौधा है वो बायोमास पूरा का पूरा जमीन में दोबारा से जुताई कर दें, तो हरी खाद का भी हमारा काम हो जाएगा और आपको मूंग का एडिशनल इनकम आपको प्राप्त होगी और बेहद अच्छी शुरुआत ही आपकी होगी।
1: जी त्रिवेदिया जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: हाँ नमस्कार जी,
2: मैं सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट भिवानी
1: जी।
2: सर, फसल चक्र कितने दिन का रखना चाहिए इसमें?
1: जी आप अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो या धीमा कर लो।
2: बंद है सर मेरे वाला तो।
1: जी बिल्कुल, इनका सवाल वाजिब है डॉक्टर साहब, कि फसल चक्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है उत्पादन में।
0: जी जी जी, और उसको हम किस प्रकार अपने इसमें सम्मिलित करें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब फसल चक्र की बात करते हैं तो ऐसा फसल चक्र बनाएं जिसमें हमारी दलहनी तिलहनी फसलों का भी समावेश हो। जो भी आप गेहूं धान, हम गन्ने के बाद यदि फसल चक्र में बात करते हैं हमारे किसान भाई साधारण तौर पर, तो वो गन्ना छोड़ते हैं तो गेहूं और धान पर चले जाते हैं, फिर गेहूं धान लगाने के बाद उसके बाद पुनः गन्ने पर आ जाते हैं। मेरा आग्रह आपसे है कि यदि आप गेहूं के बाद, ये सॉरी गन्ने के बाद अन्य फसल चक्र में आप दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का समावेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक 3 वर्षीय या 4 वर्षीय फसल चक्र बनाएं जिसमें आपकी दलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, तिलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, धान्य फसलें उसकी सेकेंडरी है, उसके बाद आप गन्ना ले लेंगे तो भी बेहद अच्छा उत्पादन उसमें होगा। हम समय और परिस्थितियों के अभाव के कारण ही हम गन्ने में सह फसली पर जाते हैं। जब हम फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं, उस दृष्टि से फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं जिस दृष्टि से अपनाना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर अब सुझाव दिया जाता है कि सह फसली करें, थोड़ा चौड़ी दूरी पर गन्ना लगाएं, उसके अंदर सह फसली करें, ताकि उसका बायोमास एक सह फसली के रूप में फसल चक्र की दृष्टि से ही वो हमारी जमीन को इनरिच करता रहे। इसीलिए गवर्नमेंट का भी और एक अर्जित अतिरिक्त इनकम के लिए किसानों को सुझाव दिया जाता है कि आप उसमें अन्य फसलें लगा लें। यदि आप अपने स्तर पे फसल चक्र बना रहे हैं तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उसमें दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें जोड़ते हुए ही उसका बनाने का प्रयास करें।
1: तो डॉक्टर साहब, वैसे जो फसल चक्र है
0: जी,
1: उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है?
0: बहुत अच्छा, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ये है कि जब जमीन में हम लगातार एक ही फसल ले रहे हैं तो उसकी जो जमीन से अपटेक करने की नेचर है, पोषक तत्वों को खींचने की नेचर है, वो एक प्रकार की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गन्ना उगाते हैं तो गन्ना यदि हमारी जमीन से सल्फर ज़्यादा खींचता है या आयरन ज़्यादा खींचता है, जब भी हम उसको गन्ना लगाएंगे तो वो उसको ज़्यादा ही जमीन से अपटेक करेगा
1: जी।
0: यदि हम उसमें फसल बदल दी, हमने अब की बार उड़द और मूंग उसके फसल चक्र में ले आए, तो ये दलहन वाली फसलें ऐसी है जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं और जो नाइट्रोजन, वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करने का काम करते हैं, ताकि वो जमीन में जब उनका पौधा भी अपना शरीर पूरा कर लेगा उसके बाद भी वे नोड्यूल जमीन के अंदर रहेंगे, जब वो रिलीज होगी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर, तो जो अगली फसल उसकी लगाई जाएगी तो उसका उसको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, ताकि वो न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर पौधे को होती रहे। इसीलिए फसल चक्र कहीं सिद्धांत

0: अंत होते हैं। रूट की डेप्थ के आधार पर भी हम फसल चक्र को आधार मानते हैं कि कुछ कम गहरी जड़ें वाली हम फसल लें, कुछ उथली जड़ें वाली लें, कुछ दलहनी फसल की लें, कुछ तिलहनी, ताकि सभी प्रकार की फसलों का समावेश उसमें करते हुए वास्तविक फसल चक्र का लाभ तभी मिल पाता है किसान भाइयों को।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया। सतीश कुमार जी को इसका जवाब मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश कुमार जी के बाद एक किसान भाई और लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब इनका भी सवाल ले लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: हेलो।
2: नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी।
2: मोहर सिंह बोल रहा हूँ सर, बुलंदशहर। सर, मूंग के बारे में बता रहे थे आप डॉक्टर साहब अभी तेवतिया जी को, तो उसकी पैदावार भी अच्छी मिले और खाद के लिए पौधा भी अच्छा मिले, तो क्या करें उसके बारे में?
0: अभी सबसे पहला तो आग्रह ये है, जब भी दलहनी फसल लगाएं, क्योंकि मानसून सीजन, बरसात का सीजन आता है, तो हम सुझाव देते हैं बेड प्लांटिंग करें। यदि
2: हाँ
0: आप
2: जी
0: बेड प्लांटिंग करते हैं, बेड के ऊपर करते हैं, तो दलहनी फसल में पानी का प्रकोप उस पर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दलहनी फसल की एक विशेषता है कि यदि इसमें जब
2: जी
0: फ्लावरिंग स्टेज आती है, फूल बनने की अवस्था आती है, यदि उस समय इसको पानी लगाया गया, हम गन्ने को
2: हाँ
0: सिंचाई
2: जी
0: करते हैं, और उस समय यदि इस पे पानी लगता है, तो ये फ्लावर ड्रॉपिंग करके फिर दोबारा से वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाती है। तो एक तो पहली सावधानी हमें ये रखनी है कि जब हम किसी भी दलहनी फसल की बुआई करें, इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, अभी आपने जो हमारे पहले किसान भाई थे, मैंने उन्हें भी यही सुझाव दिया है
2: हाँ,
0: कि
2: उनको बताइए, आपने तेवतिया जी बात कर रहे हैं
0: जी
2: आपसे।
0: जी जी कि चौड़ी दूरी पर लगाएं,
2: जी
0: ताकि वो जो ट्रेंच हमने बनाई, उसका जो प्लेटफार्म है ऊपर का, उस पर हम कोई भी सह फसली लेंगे, वो सब कामयाब होगी।
2: डॉक्टर
0: लेकिन
2: साहब, मैंने अलग लगा रखी है मूंग, बिल्कुल गन्ना वन्ना कुछ नहीं है उसके साथ में, अलग है
0: जी
2: बिल्कुल।
0: बहुत बढ़िया,
2: तो उसके बारे में बता दो
0: लगा
2: आप, थोड़ी
0: चुके हैं अभी,
2: पैदावार ये
0: आप
2: हो जाए।
0: लगा बेसल
2: चुके
0: में
2: हैं?
0: लगा
2: लगा
0: चुके
2: चुके
0: हैं?
2: लगा
0: हाँ
2: चुके
0: हाँ,
2: हैं
0: बुआई कर चुके, अब उसमें
2: हाँ।
0: अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें
2: जी
0: आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और मेन उसका होता है, उसमें येलो लीफ डिजीज आता है, मतलब पीला पत्ते उसके हो जाते हैं, तो
2: जी
0: उससे बचने के लिए आप वेक्टर, उसको एक मक्खी फैलाती है, तो उसे बीच बीच में आप उसका ध्यान रखें, यदि एक दो पौधा कहीं नज़र आता है, तो तुरंत उस पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इमीडा का आप इस्तेमाल करके उसको एक तो रोकने का प्रयास करें, और यदि प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ अच्छी लेना चाहते हैं, तो एक स्प्रे NPK का 19-19-19 या 20-20-20 का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इनी
2: एनपीके
0: NPK 19-19-19 या 20-20-20 आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो नो डाउट वो इनिशियल ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी। बाकी क्योंकि दलहनी फसलें हैं, वो खुद ही नाइट्रोजन को एटमोसफेयर से अपने एकत्रित करने की पावर उसमें रखती है।
1: ठीक
0: कुछ
1: है,
2: यूरिया बिल्कुल ना डाले ना, फिर यूरिया बिल्कुल ना डाले।
0: आवश्यकता नहीं होती वो, क्योंकि केवल इनिशियल स्टेज में बुआई के समय या पहली इरिगेशन के समय ही उसकी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए आवश्यकता होती है। वो आप बुआई कर चुके, आपकी फसल अब बढ़वार पर है, तो इस समय आप यदि उस पर फोलियर स्प्रे कर देंगे, तो वो मोर देन सफिशियंट होगा।
2: चलो ठीक है डॉक्टर
1: ठीक है,
2: जी,
1: मोहर सिंह
2: नमस्कार
1: जी,
2: जी, नमस्कार,
1: फ़ोन करने के
2: नमस्कार।
1: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी विस्तार से बात रही
0: जी
1: आपकी मूंग के बारे में,
0: जी जी
1: लेकिन हम पुनः गन्ने पे आते हैं। अगर
0: जी जी
1: गन्ने की फसल में, और वो भी संतुलित उर्वरकों की हम बात कर रहे हैं,
0: जी जी जी
1: तो अगर इसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें,
0: जी जी
1: तो वैज्ञानिक लोग क्या सलाह देते हैं?
0: बहुत बढ़िया। अब मैं इसी चीज़ को कंक्लूड करते हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहूँगा कि किन
1: जी
0: किन चीज़ों के आधार पर हम संतुलित उपाय करते हैं। पहला, जो मैं अभी पहले भी बता रहा था, कि सबसे पहले तो मृदा परीक्षण कराएं। सोयल टेस्टिंग में वास्तविक खेत के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, उसको हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, मतलब रासायनिक खाद के साथ में जैविक खादें और हरी खाद का भी इस्तेमाल किया जाए,
1: जी
0: केवल रासायनिक खादों पर ही आश्रित ना रहें। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा, उर्वरक देने का समय जो आप सेलेक्ट करें, वो सही समय आप चुनें, सही विधि चुने, क्योंकि विधि यदि आपने अच्छी नहीं चुनी, या विधि गलत तरीके से आपने, जैसे अभी तेवतिया जी थे, तो हम उसमें डिस्कस हो रहा था कि ब्रॉडकास्टिंग करें या लाइन में डालें, तो बेस्ट होता है कि आप लाइन में डालें, ब्रॉडकास्टिंग से उसको बचें।
1: यानी
0: और
1: कहने का मतलब डॉक्टर साहब, पहले हम ज़्यादातर जिक्र करते थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट
0: जी
1: के,
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: अब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट
0: न्यूट्रेंट मैनेजमेंट
1: मैनेजमेंट
0: पे,
1: के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, यही
1: जी
0: वास्तविकता है कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में रासायनिक, जैविक और आपका हरी खाद, जो जीवाश्म कार्बन बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनको सबको सम्मिलित करके इसमें लेकर चलना होगा
1: जी
0: हमें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ जैविक उर्वरकों का भी विशेष ध्यान है, विशेष योगदान रहता है, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, PSB है, आप उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको उसका लाभ मिलेगा। और यदि मैं गन्ने की बात करूँ, गन्ने की फसल में यदि विशेष प्रभाव की यदि हम बात करें, यदि हम संतुलित NPK से गन्ने में क्या प्रभाव मिलेगा, आपको गन्ने की लंबाई अच्छी मिलेगी, मोटाई अच्छी मिलेगी, संख्या अच्छी मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वजन के साथ साथ रिकवरी अच्छी मिलेगी यदि आपने बैलेंस फर्टिलाइजर और वो भी तीनों विधि से दिया। आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने सिस्टम में देखेंगे कुछ किसान भाई 100 क्विंटल से ज़्यादा का उत्पादन प्राप्त करते हैं 1 बीघा में, तो वो संतुलित उर्वरकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैविक और रासायनिक और आपके हरी खाद सबको मिलाकर।
1: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो आपके उत्पादन लागत भी कम होगी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
3: तो श्रोता, हमारा फोन इन कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
5: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
3: तो श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आपका गज़ल और कव्वाली के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं पंकज उदास साहब की आवाज़ में इस गज़ल के संग।

0: इसी के साथ गजल के इस कार्यक्रम से आपसे इजाजत चाहूंगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े निर्माताओं, डीलर्स और रिपेयरर्स के लिए लाइसेंस की वैधता अब आजीवन कर दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो माप तौल के नियमों को आसान और कारोबार के अनुकूल बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने बताया कि इस सुधार के अंतर्गत दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस देने से पहले स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्व घोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और भरोसे पर आधारित सिस्टम लाकर जमीनी स्तर पे कारोबारियों को राहत दे रही है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वो आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से पेश होने के लिए वरिष्ठ वकीलों को सहायक वकील एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि न्यायाधीश को मामले से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका है, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को अलग करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 8 मई तक के लिए टाल दी है। उन्होंने कहा कि पहले इन नेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि वे ना तो खुद अदालत में पेश होंगे और ना ही कोई वकील भेजेंगे। इसका कारण यह था कि न्यायाधीश ने पिछले महीने उनकी स्वयं को मामले से अलग करने की मांग को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश के बच्चे ऐसे वकील हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सूची में शामिल किया गया है और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए काम मिलता है, जिस मामले में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं। न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल किसी पक्ष के शक के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते। एमिकस क्यूरी यह व्यक्ति या संस्था होती है जो मामले का पक्षकार नहीं होती, लेकिन अदालत की मदद के लिए जानकारी या विशेषज्ञ राय देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राज्यतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
4: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो

0: बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर मोनिका पंत ने आज एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कालकाजी वार्ड में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। श्रीमती पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अग्रवाल धर्मशाला रोड के किनारे अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही हटा दिया गया। उन्होंने अनधिकृत स्ट्रीट वेंडिंग और सार्वजनिक स्थानों को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती पंत ने अतिक्रमण को और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने और किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज कहा कि दक्षिण दिल्ली के अनेक इलाकों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को मिली जमीन पर बनी कॉलोनियों को नियमित किया जाए। श्री बिधूड़ी ने इस संबंध में दिल्ली के उद्योग और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भेंट की। बैठक के दौरान श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के जौनपुर में सिंगापुर की मदद से बनने वाली वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेन ने 3 करोड़ यात्रा का आंकड़ा पार कर लिया है। NCRTC ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अपनी उत्कृष्ट यात्रा सेवा से नमो भारत ट्रेन ने यात्रियों के विश्वास को लगातार जीता है, जो यात्री संख्या में भारी वृद्धि के रूप में साफ दिखाई पड़ता है। NCRTC ने बताया कि तेज गति के साथ साथ नमो भारत में यात्रा के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,650 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
2: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना, और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
4: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में आज CR पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि ये जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। श्रीमती गुप्ता ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का विरोध किया था, बंगाल की माताओं बहनों ने उन्हें अपने वोट की ताकत से हराया है।
5: सही मायने में यह मानती हूँ कि जिस जिस नेता ने, जिस जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो DMK के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान अपमान किया, आज उसको जवाब

0: लेना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है, और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि इस जीत से बंगाल की विरासत और संस्कृति को आगे ले जाया जाएगा।
2: पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
1: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक झालमुड़ी कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि झालमुड़ी अब केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय का प्रतीक बन चुकी है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि ये जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जनभावनाओं के सम्मान और लोकल के लिए वोकल के संकल्प की विजय है।
3: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है, और इस विजय में हम सबका ऐसा मानना है कि झालमुड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल उत्पादों को बहुत प्रमोट करते हैं। जब वो बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें झालमुड़ी की दुकान दिखाई दी, और वहां जाकर के उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक बहुत छोटे से व्यक्ति से झालमुड़ी मांगी, और ममता बनर्जी ने इस झालमुड़ी का उपहास किया, और आज इसी झालमुड़ी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और कार्य आधारित धोखाधड़ी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे साइबर ठगों के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में मातृत्व और शिशु देखभाल संबंधी कानूनों पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
4: बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने की। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस परामर्श बैठक का उद्देश्य मातृत्व अधिकारों का समर्थन करने और सुरक्षित, समावेशी तथा उत्तरदायी शिशु देखभाल से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इसके साथ ही बैठक में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण उपायों पर भी चर्चा की गई। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के विवेक विहार में हुई अग्नि दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भलसवा डेयरी के मुकुंदपुर क्षेत्र में एक खुले नाले में गिरने से हुई बच्ची की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध पर रखे जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली

जबकि पांच पांच मुकाबलों में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेली जा रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के महिला वर्ग में कल राजस्थान की अंजलि शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग और 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ विमेंस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राजधानी में आज दिन के समय धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और सुबह तथा दोपहर के समय हल्की बारिश होने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। हेलो, सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज के गीत मालिका कार्यक्रम की इस रोलर कोस्टर राइड में हम करेंगे कुछ मजेदार सी बातें और साथ ही याद करेंगे फिल्मी दुनिया के उन दो नायाब सितारों को जो आज ही के दिन हमारे बीच से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में धड़कन बनकर धड़कता है। तो फिर देर किस बात की, बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी और सवार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड में मेरे यानी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश के संग। शुरू करें।

हाँ तो देखिए ना, वादे के मुताबिक हाजिर है हम आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। और दोस्तों, पता नहीं क्यों बस अभी अभी मेरे दिमाग में ना एक शेर की पंक्तियाँ, लाइंस आ गईं, आपको भी सुनवाऊंगी कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशुका रुतबा और खुदा। इसी के साथ मुझे दो लाइनें और याद आईं कि ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म में जब बनी कहता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, तब उसके लहजे में, आँखों में, जज्बे में एक जुनून होता है कुछ करने का, सबसे अलग, सबसे जुदा। लेकिन लेटर इन द सेम मूवी जब बनी को ये रियलाइज होता है कि एम्बिशन अलोन कैन नॉट सस्टेन योर लाइफ, जिंदगी में यू ऑल्सो रिक्वायर कंपेनियनशिप्स, यू ऑल्सो रिक्वायर फैमिली, फ्रेंडशिप्स, एंड येस यू रिक्वायर सम क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। तो देखिए ना एकदम से कैसे फिल्म का सीन ही चेंज हो जाता है। आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से ये गीत, और उसके बाद करेंगे हम और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें।

अच्छा, अगर आपको कोई ये बताए कि फिल्म सीता और गीता के लिए एक्ट्रेस हेमा मालिनी पहली चॉइस नहीं थी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उनकी जगह कौन लेगा? सोचिए जरा। हम बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता को डायरेक्टर रमेश सिप्पी सबसे पहले एक्ट्रेस मुमताज के साथ बनाना चाहते थे। वो मुमताज के पास इस मूवी का ऑफर लेकर गए भी, लेकिन कुछ रीजंस से वो ये फिल्म नहीं कर पाई और फिर ये फिल्म आ गिरी हेमा मालिनी जी की झोली में। सीता और गीता में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो खैर मनवाया ही, साथ ही इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। और ये फिल्म लेखक जोड़ी सलीम और जावेद की शुरुआती सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही दोस्तों इस जोड़ी का इंडस्ट्री में सिक्का जम गया और फिर इस जोड़ी ने हमें दी शोले जैसी फिल्में।

और देखिए ना साथियों, हम लोग चलते चलते आ पहुंचे हैं एक ऐसे लिरिसिस्ट के पास जिनका नाम शायद हम में से कुछ जानते हों और हो सकता है कुछ ना भी जानते हों, लेकिन इनके गाने तो लगभग हम सभी ने खूब सुने होंगे। इनके गाने हिंट दूँ आपको, जैसे आज दिन चढ़िया, हायो मेरिया दादिया रब्बा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रही हूँ शिव कुमार बटालवी साहब की। तो चलिए आज सुनवाते हैं आपको इन्हीं के लिखे एक ऐसे ही गाने की खूबसूरत सी कहानी। तो हुआ यूँ कि शिव कुमार बटालवी साहब पहुँचे हिमालय के बैजनाथ मेले में और वहाँ उन्हें मिली एक बहुत प्यारी सी लड़की मैना। जैसे पहली ही नज़र में वो अपना दिल हार बैठे, एकदम दीवाने से हो गए। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 10 दिनों तक तो उन दोनों की नज़रें मिलती रहीं, फूल खिलते रहे, लेकिन 11वें दिन जब मैना आई ही नहीं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते शिव कुमार बटालवी साहब ने एक गाना लिखा, या यूं कह सकते हैं कि एक इश्तहार लिखा, एडवर्टीजमेंट। ये गाना उन्होंने लिखा तो मैना को ढूंढते हुए था, क्योंकि मैना कहीं गुम हो गई थी। लेकिन ये गाना सुनने के बाद हम सभी के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया। सुनिए वही गाना जो उन्होंने लिखा था मैना के लिए।

0: और श्रोताओं, अब बात मसीह करे आज़म यानी महान संगीतकार नौशाद साहब की, लेकिन सबसे पहले उनका ये गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

फिल्म गंगा जमुना में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को साथियों के साथ। और दोस्तों, फिल्मी जगत में जब भी संगीत निर्देशन की बात होगी ना, तो नौशाद साहब का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें मसीकरे आज़म यानी कि महान संगीतकार, बॉलीवुड के तानसेन और द मुगले आज़म ऑफ म्यूज़िक के रूप में भी सम्मानित किया जाता रहा है। और इसका खास कारण ये है कि उन्होंने मुगले आज़म, बैजू बावरा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में शास्त्रीय रागों पर आधारित अमर संगीत दिया।

श्रोताओं, लखनऊ में जन्मे नौशाद साहब ने अपने देश के अलग अलग इलाकों की धुनों और शास्त्रीय संगीत को अपनी सरगम का साथी बनाया। फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार नौशाद साहब को 1981 में दादा साहब फाल्के और फिर 1992 में पद्म

से भी सम्मानित किया गया। फिल्म ताजमहल में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी संगीत दिया। 5 मई 2006 को संगीत की दुनिया का ये ध्रुव तारा हमें आखिरी सलाम कह गया, लेकिन उनका संगीत आज भी हम सभी के दिलों में सदा के लिए अमर है।

साथी श्रोताओं, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं फिल्म निर्देशक, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर और गीतकार गोविंद म्यूनिस साहब को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1929 में उन्नाव जिले के पासाखेड़ा गांव में जन्मे गोविंद म्यूनिस साहब की पढ़ाई कानपुर में हुई। 1953 में मुंबई, जो कि उस समय का बॉम्बे था, आने के बाद पहले सत्येन बोस साहब के असिस्टेंट के तौर पर और फिर डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी वे बोस साहब से जुड़े रहे। 1971 की फिल्म उपहार और राशि प्रोडक्शंस की कुछ और फिल्मों के लिए भी उन्होंने डायलॉग लिखे, जिसके बाद उन्हें 1982 में नदिया के पार से जुड़ने का भी मौका मिला।

और श्रोताओं, अब हम बढ़ चले हैं अपने कार्यक्रम गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड के अंतिम पड़ाव की ओर। जाते जाते आपको सुनवा रही हूँ एवरग्रीन सिंगर शान की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए अपनी साथी अपनी मितवा और आपकी अपनी दीप्ति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
2: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। AIADMK के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा

0: चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की, इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु

0: Prime Minister Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured three internationals. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retained its top position in ICC Men's T20 rankings. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमी कंडक्टर की मैनुफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीज़न के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फ़ी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। और क्रिकेट में भारत ने ICC मर्दों की T20 रैंकिंग में अपने पहले मकाम को बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कपास की पैदावारियत के मिशन कपास क्रांति को 5,660 करोड़ रुपए की रकम के साथ मंजूरी दी है, ताकि भारत के कपास के सेक्टर में राह पा जाने वाली रुकावटों, तरक्की में कमी और मेयार से मुतालिक तशवीश को दूर किया जा सके। नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि ये मिशन हुकूमत के 5F विजन से मुताबिकत रखता है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा पैदावार वाले मुतनव्वे बीजों को तैयार करना है जो बीमारियों और कीड़ों से मजाहिमत कर सकते हों। साथ ही इसके तहत फसल की पैदावार से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर इख्तियार करने पर जोर दिया जाएगा। इन कोशिशों पर रियासती सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और रियासती ज़रई यूनिवर्सिटियों के जरिए अमल किया जाएगा। मरकजी काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस स्कीम का मकसद क्रेडिट गारंटी तआवुन फराहम करना है, ताकि कारोबारी इदारे मगरबी एशिया के बहरान के सबब पैदा हो जाने वाली मुख्तसर मुद्दती नकद रकम की फराहमी की कमी को पूरा कर सकें। इस स्कीम के तहत MSME को 100% क्रेडिट गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि गैर MSMEs और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। काबीना ने 2026-27 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की एक मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है, जो 10.25% की बुनियादी रिकवरी शरह पर मबनी है। जनाब वैष्णो ने बताया कि इस फैसले से गन्ने के तकरीबन 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जबकि चीनी की मिलों और इससे मुतालिक दीगर सरगर्मियों से वाबस्ता तकरीबन 5 लाख कारकुनों को भी फायदा होगा। मरकजी काबीना ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 मजीद सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है, जिसमें मुल्क का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले प्रोजेक्ट शामिल है, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके साथ सेमीकंडक्टर की पैकिंग की सहूलत भी शामिल है। जनाब वैष्णो ने बताया कि मंजूर शुदा तजावीज़ के तहत तकरीबन 3,936 करोड़ रुपये की मजमू सरमायाकारी के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्टों से तवक्को है कि तकरीबन 2,230 तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट

0: दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए, उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मरकजी काबीना ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के तरमीमी बिल 2026 पेश करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा नगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद में 4 का इजाफा किया जा सके। इस तरमीम के बाद भारत के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मौसर और बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा, जिससे मुकदमात के जल्द फैसले और फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पुरअमन तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस ज़रूरत को उजागर किया कि आबनाए हरमुज से बिला रुकावट और महफूज जहाजों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में असम्बली इंतखाबात के नतज के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तो है कि काबीना के नए अरकान इस माह की 9 तारीख को हलफ लेंगे, जो गुरुदेव राबिंद्र टैगोर का यौम पैदाइश है। हलफबरदारी की तकरीब में उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शरीक होंगे। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने सी जोसेफ विजय की तमिलागा वेटरी कजगम टीवी के रियासत में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसने 108 सीटें जीती हैं। पहली मरतबा इंतखाबात में पार्टी की ज़बरदस्त जीत के बाद टीवीके के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली ने चेन्नई के करीब पनयूर में पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज पार्टी की मीटिंग में जनाब विजय को बाकायदा अपना लीडर मुंतखब किया। इधर सुबुकदोश होने वाले वजीर आला M.K. स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। केरलम में कांग्रेस की क़्यादत वाली UDF हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में गैर रस्मी बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अगरचे कांग्रेस कैंप में हुकूमत साजी से मुतालिक बाकायदा बातचीत जारी है, ताहम कानून साज पार्टी की बाजाबता मीटिंग की तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस की क्यादत वाला UDF, जिसने केरलम के 140 असम्बली हलकों में से 102 में शानदार जीत हासिल की है, कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए गवर्नर से मुलाकात करेगा। UDF के ज़राए के मुताबिक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग नई दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नुमाइंदों के आने के बाद ही मुनक़िद होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी M. पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की फैसला कुन जीत के एक दिन बाद नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सलाह मशवरा शुरू हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पुडुचेरी में BJP के रियासती सदर VP रामलिंगम की सदारत में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पर आज BJP के 9 मुंतखब शुदा मेंबरान असेंबली की एक मुशावरती मीटिंग हुई। मरकजी वजीर और BJP के इंतखाबी इंचार्ज डॉक्टर मनसुख मांडविया, रियासती इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और दीगर सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मन्नादीपेट से मुंतखब MLA A. नामसिवियम को असेंबली में BJP कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। मीटिंग में आने वाले दिनों में किए जाने वाले सियासी और इंतखाबी इकदाम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया, बिलखसूस मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत की तश्कील पर गौर व खौस किया गया। पुदुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालिया चुनाव नतीजों के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि ताकत के जरिए वोट लूटे गए और पूरे इंतखाबी अमल में धांधली की गई है। आज कोलकाता में नामो निगारों से गुफ्तगू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में उनकी पार्टी हारी नहीं है। उन्होंने चुनाव कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उसने भारत की जमहूरी तारीख में एक तारीख बाब रकम किया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, मौजूदा असेंबली की मुद्दत कार इस माह की 7 तारीख को ख़त्म हो रही है, इसके बाद कोई भी इस ऐवान का रुकन नहीं रहेगा। बीजेपी के रहनुमा बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जमहूरियत का मजाक उड़ाने और तातुल पैदा करने में कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में इस तरह की नामुनासिब सूरत हाल से निमटने के लिए दफात मौजूद हैं। ममता बनर्जी के इस इल्ज़ाम पर कि बीजेपी मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पार्टी के दफातर पर कब्जा कर रही है, जनाब नंदा ने कहा कि ये सरासर झूठ है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से भवानीपुर असेंबली हलके में वोटों की गिनती से मुतालिक बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया है। साउथ कोलकाता के ज़िला इंतखाबी अफसर की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक ये वजाहत की गई है कि गिनती का पूरा अमल कमीशन के उसूल ज़वाबित के तहत अंजाम दिया गया। DEO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा अमल आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ था और हर कार्रवाई कानून पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए अंजाम दी गई। इस इल्ज़ाम को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया गया कि गिनती के दौरान CCTV कैमरों को बंद कर दिया गया था और ओहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की कि कैमरे पूरे वक्त काम कर रहे थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़ियादत में बिहार की रियासती काबीना में 7 मई को ख़ातिर ख्वाह तौसी की जाएगी। रियासत के BJP सदर संजय सरावगी ने बताया कि हाल हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP सदर नितिन नबीन, JDU के सदर नीतीश कुमार और NDA के दीगर सीनियर लीडर हिस्सा लेंगे। जनाब सरावगी ने मज़ीद बताया कि तकरीब के लिए गांधी मैदान का इंतखाब किया गया है। हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां जारी हैं। हाई प्रोफाइल लीडरों की मौजूदगी के तनाजुर में गांधी मैदान में सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त किया गया है। वियतनाम के सदर टो लैम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत के खारजा ने कहा कि उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतहर्रिक बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वियतनाम के सदर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसत देने के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे कबल वियतनाम के सदर ने बिहार के बोधगया का दौरा किया और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वियतनामी मॉनेस्ट्री भी गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत और जमायका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सुतून है। डॉक्टर जयशंकर जमायका की वजीर खारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि ये बातचीत जामे और ठोस रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया गया और तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौक़ों की निशानदही की गई। रोमानिया के वज़ीर आज़म एले बोलोजान की हुकूमत आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के वोट में शिकस्त के बाद गिर गई है, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सेंसेक्स में आज 252 पॉइंट की कमी आई और ये 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 पॉइंट के कमी के साथ 24,033 पर बंद हुआ। भारत ने मर्दों की ICC T20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम T20 आलमी कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड 3री मरतबा ये खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के लिए 156 रन का निशाना दिया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Money Talk. Good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lake. India has clocked a record-breaking GST collection this year, consistently crossing the 1.7 lakh crore mark in recent months. Is this a sign of booming economy, better compliance, or simply inflation at play? To decode the story behind the numbers, we are joined in by CA Ranjit Kumar Agarwal, former president ICAI, and economic analyst and tax expert Yogendra Kapoor. Warm welcome, gentlemen.
3: Good evening.
4: Thank you. Good evening.
2: Mr. Agarwal, if you could tell us about India seeing the record GST collections, what are the top three drivers behind this surge?
3: In last decade or 12-13 years, the biggest two reform India could witness was one was GST and one was IBC. And the GST has made the informal economy to formal. That's why whatever strength in the Indian economy, in the cash economy, has started coming on the paper. And we can see the huge surge in this GST collection. Although GST has also become an economic barometer like Sensex or power consumption or retail freight or PMI or digital transaction like this. But if you see the last year, same month collection, it comes to 2,23,000 crore. And this month, it's a 2,43,000 crore. But between the last year, April to this April, the collection was below 2 lakh. In the month of April, May, June, July, August, it was 1.73, 85, 82. So it's not like that this month has given us such a huge surge because of some issue. Of course, there are some fundamental issue in this huge surge. But if you see the year-end compliance of the month of March, the annual settlement, the compliance payment, and the SSC has become more alert and vigilant. That's why in the month of April, the collection has surged compared to rest of the month. But having said that, of course, India has a robust economy and it's a huge in household consumption. The kind of electronics and mobile phone and drone and defense, which we are producing in India, because of this oil surge also, the import which we are forced to buy, it also has contributed in the huge surge in this month. But that does not mean that it's continuously we are going to see, of course, the India economy growth rising, there's no doubt about it. But at the same time, because of 2-3 factors, the annual compliance and year-end settlement, the huge consumption we are having, the GST robustness in the form of e-invoicing, the matching concept and the UPI payment system which we have, all these factors are contributing in the huge surge in this GST.
2: Okay. So, Yogendra, what Ranjit just said about the four factors, particularly the consumption and compliance and the UPI payment, how much of this increase is due to real economic growth versus inflation-led higher tax realization?
5: First of all, I would like to make a statement that we have a reason to cheer also, and at the same time, we have a reason to be concerned as well. Now, I would like to elaborate on both of them. When I say that we have a reason to cheer, then it means that definitely, as Ranjit Ji rightly said, that the objectives of the government to transform the economy from an informal to formal one, we can see the results taking place on the ground. Now, in terms of the stats, India has registered 2.43 lakh crore in terms of the April GST, which is an increase of 8.7% if we look at an year-on-year increase. Now, when I say that it's also a cause of concern, then we have to also see that if we look at the growth rate on an year-on-year basis, we have to also see that the collection of GST on account of the imports, it has surged by 25.8% year on year. So what I'm trying to suggest is that in terms of the increase in GST, the major proportion is on account of the import cost, which is primarily on account of the import of oil that India does. And why I say reason for concern, it is on account of the fact that one, that there is, an increased consumption of oil in the country,

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभरता भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
0: परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो 115 अरब डॉलर था, वो 2030 तक संभावना है कि 270 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये है कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग 8 अरब डॉलर के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक 16 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को, और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
1: जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है, और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
0: जी,
1: चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
0: बिल्कुल।
1: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है, वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारा सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही हैं। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास। तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे। सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास, उसके बाद ये चीजें बढ़ी। तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर, और भारतीय उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, इन लोगों ने मिलकर उस समय एक मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उस पर संज्ञान तो लिया, पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की। धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 शीर्ष जो देश है चिकित्सा पर्यटन के, उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए, इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आपसे बताऊं, तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति ये है कि तकरीबन तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है, इन सबके लगभग सभी जगह पे इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर इन लोग ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका स्वीकार्यता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
0: बिल्कुल।
1: आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेके उपचार तक सबसे बेहतर ये व्यवस्था।

0: परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में। एक तो होता है डायग्नोस, एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है, जैसा कि आपने बात की, वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है। चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया, भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें कि होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं। तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
1: बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह ये भी है, देखिए, स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं। और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है। आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है। आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हमको हर तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे। चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है। ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई। उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बातें। तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए। और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्स हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात
0: बिल्कुल
1: करने के लिए उन देशों से वो करा। तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की
0: बिल्कुल
1: व्यवस्था कर रहे हैं।
0: निश्चित तौर पर। और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने भी अस्पतालों, डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25 से 26,000 के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं। और डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ऊपर है, जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे भारत का जो
1: बिल्कुल
0: पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है, और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है, जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम की और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा?
1: जी, देखिए, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें
0: बिल्कुल
1: आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है। और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10, शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। उसकी वजह, हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है। देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का। जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में हैं और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री ऐसी हैं, यहाँ के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो
0: जी
1: मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी, मैंने देखा था ये, दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए हैं और उनको हमने वो सब चीजें दी हैं, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
0: और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को

0: बढ़ावा देने के लिहाज से या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी एक घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिसमें कि रिहैबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है। और साथ ही सरकार ने जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है।
1: बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान भरा और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की, और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है। सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी, मतलब 2030 तो मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहां सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3 से 4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का, मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
0: और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म
1: बिल्कुल
0: भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज़्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
1: देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ, कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब
0: जी
1: भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: किराए पे दिए
0: बिल्कुल
1: जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं,
0: रहते
1: बकायदा सेफली हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं, उनका खाना पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह, तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा हो रहा
0: इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन
1: है।
0: चलाया हुआ है कि
1: राइट,
0: भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ
1: जी
0: अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके
1: बिल्कुल
0: लौटें।
1: बिल्कुल
0: तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी साझा की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: मंथन।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि चाहे वे इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीगे के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शशिलता वीरक की आवाज में चंद गजलें। पहली गजल के अशार लिखे हैं कुमार बाराबंकी ने। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुनी सुश्री शशि लता

विरक की आवाज में गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया गया राग यमन। विलंबित गत रचना और द्रुत गत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री मनोज कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया गया राग यमन। विलंबित गत रचना और द्रुत गत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये

0: हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components.
2: The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnav said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnav said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam, TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. The Election Commission has categorically dismissed as baseless and false the allegations made by Trinamool Congress candidate and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee regarding the vote counting in Bhabanipur Assembly constituency. In a statement issued by the District Election Officer of South Kolkata, it was clarified that the entire counting process was conducted strictly in line with the Commission's rules and regulations. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to three Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Addressing the media after his meeting with his Jamaican Foreign Minister Carmina Johnson-Smith and other cabinet members. India has retained its position at the top of the ICC Men's T20 ranking, showcasing their dominance in the cricket world. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और रात्रि के 11:10 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ सविता। बात करेंगे आज कुछ ऐसे नायाब अभिनेताओं की जिन्होंने फिल्मी फलक पर जब से कदम रखा तब से उन्होंने हमेशा अपने आप को एक अलग ही मुकाम पर पाया। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनकी लोकप्रियता का आलम ये रहा कि उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े पहनने के स्टाइल को कॉपी किया जाने लगा, डायलॉग डिलीवरी को कॉपी किया जाने लगा। उन्हीं में से कुछ अभिनेताओं के बारे में आज बात करेंगे और उनके पहले फिल्म के गीतों को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम एक ऐसे हीरो के साथ जिसे हीमैन कहा जाता है, और हीमैन के जो बेटे हैं वो बहुत ही प्यारे से लेकिन

लगता है चेहरे से मानो कितने सौम्य हैं, लेकिन जब फिल्मी फलक पर आते हैं तो अपने किरदारों से लोगों को रोमांचित तो करते ही हैं, साथ ही साथ सबको हैरान भी कर देते हैं। जो चेहरे से भाव से इतना शांत लगता है, वो इतना उग्र व्यवहार कैसे कर सकता है। फिल्में देखने के बाद उनको वाकई कई लोगों ने ये सोचा कि ये वही है जिसे हम देख रहे हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं। अब चलिए बातों को ज़्यादा उलझाते नहीं हैं, अब बात करते हैं हम अजय सिंह देओल की, जिन्हें आप और हम सनी देओल के नाम से जानते हैं। सनी देओल जिन्होंने फिल्मी फलक पर 1982 में कदम रखा। उनकी डेब्यू मूवी थी अमृता सिंह के साथ, फिल्म बेताब। तो चलिए जब बात आई है बेताब फिल्म की, तो इस गीत से बेहतर शायद ही कोई और गीत हो सकता है।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गीत फिल्म बेताब से। बात हो रही है उन अभिनेताओं की जिन्होंने फिल्म फलक पर कदम रखा और ऐसा कदम रखा कि उनके सभी मुरीद हो गए, उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। उन्हीं में से एक रहे जयकिशन काकू भाई सराफ, जिन्हें आप और हम जैकी श्रॉफ के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन अदाकार और एक बहुत ही बेहतर मॉडल। उन्होंने फिल्मी फलक पर जब कदम रखा तो वो साल था साल 1983। वैसे इससे पहले साल 1982 में उन्होंने फिल्म स्वामी दादा में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें सही पहचान मिली और पूरी फिल्म में उनके किरदार को एक बड़ी लोकप्रियता मिली। वो फिल्म थी सुभाष घई की फिल्म हीरो, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रही और 1983 में ये फिल्म आई। तो चलिए, अब गीत तो सुनना बनता ही है इस फिल्म का, और इस फिल्म का सबसे बेहतरीन गीत मेरे हिसाब से यही

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में ये गीत सुना आपने, और फिल्म आप जानते हैं, फिल्म है हीरो। और अब अगले हीरो की तरफ पढ़ते हैं। अगला हीरो है हमारा विजय सिंह देओल। अब आप इस नाम से समझ ही गए होंगे कि जब हमने अजय सिंह देओल की बात की थी, वो सनी देओल निकले, तो विजय सिंह देओल ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे बॉबी देओल ही होंगे। बिल्कुल सही पहचाना है आपने भी, अगर यही जज किया है तो। बॉबी देओल के बारे में बस ये कहा जा सकता है कि फिल्मों में आना उनका ख्वाब रहा, और उनके लिए सबसे पहली शर्त उनके पिता ने यानी धर्मेंद्र जी ने रखी कि आप सबसे पहले तो जो है वो डांस करना सीखें, दूसरी बात यह है कि आप विवाहित होने के बाद ही यानी कि शादी करने के बाद ही आप फिल्मी दुनिया में जा सकते हैं, तभी आपको परमिशन मिलेगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो इसी बात के मद्देनज़र उन्होंने जो है शादी की। और बात करें अगर उनकी फिल्म की, तो उनकी पहली फिल्म रही जो थी वो थी बरसात, और बरसात फिल्म आई साल 1995 में। इसमें इन्होंने बादल नामक किरदार को निभाया, और ये फिल्म बहुत पसंद की गई। साथ में ट्विंकल खन्ना थी, जो कि ट्विंकल खन्ना के लिए भी ये जो फिल्म थी वो डेब्यू मूवी थी, यानी उनकी भी पहली फिल्म थी, और बॉबी देओल की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म के गीत सभी ने पसंद किए, और ख़ासकर जिस गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये गीत तो आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आइए अब आगे बढ़ते हैं उस हीरो की ओर जिस हीरो ने रोमांस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। जिसने बताया कि जब आप रोमांटिक फिल्में बनाए

कुछ अलग ही रुतबा है पूरी फिल्मी दुनिया में, और फिल्मी फलक पर उन्होंने जब कदम रखा उससे पहले वो टीवी पर छा चुके थे। टीवी पर उनकी इमेज कुछ ऐसी थी कि उन्हें देखने वाले सभी जो लोग होते थे वो कहते थे कि ये पतला दुबला सा लड़का ये कैसे एक्टिंग कर पाएगा। और जब फिल्मों में उन्होंने कदम रखा तो वाकई किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन शाहरुख खान किंग खान बन जाएंगे और वो फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सितारे बन जाएंगे जिनके बिना फिल्मी दुनिया शायद अधूरी मानी जाएगी। और इन्होंने 90 के दशक में जब फिल्मों में आगाज़ किया तो इनकी सबसे पहली और चर्चित फिल्म रही वो रही फिल्म दीवाना। वैसे कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन जो पहली रिलीज्ड मूवी थी वो रही फिल्म दीवाना जो साल 1992 में आई।

अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में ये गीत सुना आपने फिल्म दीवाना से। और अब अगले हीरो को अगर ले लिया जाए तो भाई अगला हीरो ऐसा है कि वो सभी का भाई और सभी की जान कहलाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, जिन्होंने फिल्मी फलक पर कदम रखा फिल्म बीवी हो तो ऐसी से। लेकिन इस फिल्म में उनका एक सह कलाकार के रूप में एक छोटा सा किरदार था, लेकिन इसके बाद अगर कहा जाए कि उन्हें मुख्य भूमिका जो मिली वो मिली फिल्म मैंने प्यार किया, जो कि आई साल 1989 में। और इस फिल्म से उन्होंने जो था वो फिल्मी फलक पर ऐसा कदम रखा कि आज तक उन्हें पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो समय था जब वो सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। फिल्म फेयर के कई पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले और फिल्म ऐसी थी कि आज भी लोगों के जहन में ये जिंदा है और लोग आज भी इसे बेहद पसंद करते हैं।

कार्यक्रम में अब चलते चलते एक और ऐसे हीरो को ले लेते हैं जिसके बिना फिल्मी दुनिया अधूरी सी लगती है। जी हाँ, जब बात आती है लोकप्रिय अभिनेताओं की तो तीन खान एक साथ आते हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर। और आमिर खान की अगर बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई वो थी फिल्म यादों की बारात, जो कि वर्ष 1973 में आई। लेकिन असली हीरो के तौर पर उन्होंने मंसूर खान के साथ फिल्म की, जो थी फिल्म कयामत से कयामत, जो 1988 में आई। ये उनकी पहली सफल फिल्म रही और इस फिल्म में उन्हें बेस्ट अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लगे तो लगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अभिनय भी बहुत ही खूबसूरत किया और वो नवोदित कलाकारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता बन गए। इसी फिल्म में उनके साथ रही अभिनेत्री के तौर पर जूही चावला, जो कि पहले से ही फिल्मों में एक्टिव थी, लेकिन इस फिल्म से इन दोनों कलाकारों ने फिल्मी फलक में अपनी एक अलग जगह बनाई। तो इनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत का तो गीत बनता ही है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।

बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, और मंजिल तो जो है वो गीतों की भी नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन क्या करें, अब इस कारवां को थोड़ा सा तो हमें विराम देना ही होगा। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये जो गीत हम लेकर आए हैं ये भी एक ऐसा गीत है जिसमें कई नवोदित कलाकार रहे हैं, और इस फिल्म को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। फिल्म बहुत ही नई है और फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और इसका ये गीत आप सभी के लिए छोड़े जा रहे हैं। इसी गीत के साथ अब मुझे यानी सविता को दीजिए इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय मध्यरात्रि के 12 बजने को है। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट

0: रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

23 सितंबर 1915 को वजीराबाद, जो पाकिस्तान में है, में जन्मे राजा मेहदी अली खान को शायरी विरासत में मिली थी। उनकी माँ हेबे साहिबा खुद एक जानी मानी शायरा थी। बचपन में ही पिता को खोने के बाद उनकी परवरिश उनकी माँ ने की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें शायरी की बारीकियाँ किसी और ने नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल ने सिखाई थी। ये गीत आप सुनेंगे फिल्म शहीद से। आज़ादी के बाद देश प्रेम का ये जज्बा राजा साहब के कलम से निकला था।

दोस्तों, राजा साहब ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से की थी। वहीं उनकी दोस्ती सादत हसन मंटो से हुई। मंटो ने ही उन्हें बॉम्बे आने की सलाह दी और बॉम्बे आकर उन्होंने अभिनय और संवाद लेखन में भी हाथ आजमाया। लेकिन उनकी असली मंजिल थी शायरी।

श्रोताओं, अगर हिंदी संगीत के इतिहास में सबसे बेहतरीन गीतकार संगीतकार जोड़ियों की बात हो तो राजा मेहदी अली खान और मदन मोहन का नाम सबसे ऊपर आता है। इन दोनों की केमिस्ट्री ऐसी थी कि शब्द और धुन एक दूसरे के लिए बने लगते थे। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं इन्हीं की जोड़ी का ये गीत, जो कि आ रहा है फिल्म अनपढ़ से, गाया है लता मंगेशकर ने, बोल राजा मेहदी अली खान के, और संगीत मदन मोहन ने दिया है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि राजा साहब ने ही फिल्मी गीतों में आप शब्द को इतना लोकप्रिय बनाया।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं राजा मेहदी अली खान के जीवन सफर पर। श्रोताओं, राजा साहब अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर थे। उनकी पत्नी ताहिरा खानम उनके जीवन का मजबूत आधार थीं। विभाजन के समय जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे, राजा साहब ने भारत में ही रहने का फैसला किया। वो कहते थे कि मेरी मिट्टी यही है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म वो कौन थी। श्रोताओं, इस गाने के बिना भारतीय संगीत अधूरा है। मदन मोहन की धुन और राजा साहब की विरह वेदना।

दोस्तों, राधा साहब सिर्फ रोमांटिक या गमगीन गाने ही नहीं लिखते थे, उन्होंने झुमका गिरा रे जैसे मस्ती भरा गाना भी दिया और मैं प्यार कर राही हूँ जैसा चुलबुला गीत भी। उन्होंने ओपी नैयर, सी रामचंद्र और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया।

1960 का दशक राजा साहब के लिए स्वर्णिम काल था। अनपढ़ वो कौन थी, मेरा साया और नीला आकाश जैसी फिल्मों ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी शायरी में उर्दू की मिठास और आम आदमी की भाषा का खूबसूरत मेल था। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया से।

दोस्तों, राजा साहब को वो माफ कीजिएगा, व्यावसायिक पुरस्कार जैसे फिल्म फेयर उतने नहीं मिले जितने के वो हकदार थे, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में उनका स्थान सर्वोच्च है। उनकी रचनाओं को आज भी रिमेक्स और कव वर्जन के जरिए नई पीढ़ी सुन रही है। उनके दीवान, अंदाजे बयां और मिजराब आज भी साहित्य प्रेमियों की पहली पसंद है।

दोस्तों, 29 जुलाई 1966 को राजा मेहदी अली खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो महज 50 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो खजाना हमें दिया है वो सदियों तक गूंजता रहेगा। उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक अपनी शर्तों पर जिया और हमेशा एक राजा की तरह शब्दों पर राज किया। इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म वो कौन थी से, ये गीत उनके जीवन के फलसफे को दर्शाता है।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म वो कौन थी से, और आवाज़ लता मंगेशकर की थी। दोस्तों, आज हमने याद किया उस शायर को जिसके गीत हमारी खामोशियों की आवाज़ है, राजा मेहदी अली खान। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए अन्य कार्यक्रम AIR न्यूज़ लाइव 24x7 चैनल पर।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: रात्रि के 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 26-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
3: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं, वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
2: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
3: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
2: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिल

0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fiber, to factory, to fashion, to forage, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with the semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnav said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnav said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem.

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप लेंगे आनंद पुराने फिल्मी नगमों का, और अभी आपने सुना तू ही मेरी जिंदगी फिल्म से उसका टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफ़ी का स्वर था। अगला गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, फिल्म है तीसरा कौन, आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत आर डी बर्मन का है।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीन देवियां से किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाज़ों में, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसडी बर्मन ने दिया था। अगला गीत पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म उपासना से।

चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले से दो बैक टू बैक गीत। ये पहला गीत जो आप सुनेंगे उसे गाया है और संगीत आर डी बर्मन का है।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म शोले से ये गीत। संगीत आर डी बर्मन का था और बोल लिखे थे जी पी सिप्पे ने। दोस्ती पर ये गीत बहुत ही फेमस है, आप सुनते ही रहते हैं जब भी दोस्ती की बात आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म प्यार ही प्यार से मोहम्मद रफ़ी का स्वर है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म खुशबू से। संगीत आर डी बर्मन का था। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं

0: किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये पैपी गीत फिल्म कर्ज से। ये फिल्म 1980 में आई थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी गीत के साथ गीत सुनहरे पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और

0: पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। चलिए इस नॉन स्टॉप गीतों की फहरिस्त को आप तक पहुंचा रहे हैं, और शुरुआत करते हैं इस सफर की इस गीत के साथ।

पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों टिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर गजल और गीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसमें आप सुनेंगे के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं भद्रासन और अश्वथासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में, तो वहीं 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप, 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: 5 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा

जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी

स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में जाना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ज्योतिष ऐसा जिसकी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा बजाए संतूर पर राग नट भैरव।